0: मेरी तो ट्रेजेडी यही है, मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया, माँ बाप भाई यहां तक कि।
1: तुम बहुत लकी हो शेखर कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं जो खो सके। मेरी आंखों में देखो शेखर।
0: डरता हूं कहीं फिर से प्यार ना करने लगूं और दोबारा चोट खाने की हिम्मत।
1: मैं वादा करती हूँ शेखर कि आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। I promise you that I will never ever hurt you.

बस तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

जान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

0: इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: बुधवार 15 जुलाई रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। सुप्रभात आप सभी को। घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं और समय हुआ है अभी के लिए समाचार का।
3: आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज। आस्था से नमस्कार।
4: नमस्कार, 6 बजे की समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कुछ अहम खबरें जिन्हें हम विस्तार देंगे 6:30 बजे के समाचारों में। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। अब दूसरे सेमीफाइनल में आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। इस मुकाबले को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। मॉरिशस में कल फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। फ्लोरियाल स्थित फ्रांस के राजदूत के सरकारी निवास पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति धर्म गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और कई गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। इस दौरान दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय सभा में कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने प्लास्टिक की बोतलों पर 2 रुपये के एक्साइज ड्यूटी को लेकर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को लागू होने वाले इस टैक्स से मिलने वाली आय पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं में उपयोग की जाएगी। साथ ही सरकार ने अगले 10 वर्षों में प्लास्टिक पॉल्यूशन फ्री मॉरिशस के लिए एक रोड मैप तैयार करने की घोषणा की। आज सुबह पेलग्रैन ट्रियानो लिंक रोड का उद्घाटन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सेंट जॉन और M1 मोटरवे पर यातायात का दबाव कम होगा। उधर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ा। अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्षेत्र में ईरानी ठिकानों पर नए हमले शुरू किए हैं, जबकि ईरान ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
5: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: पूर्व से आ रहे अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान है कि आज सुबह और दोपहर बाद भी रह रहकर देश के पूर्व और सेंट्रल प्लाटू पर बरसात होगी और ऊंचाइयों पर धुंध भी छाई रहेगी। ऊंचाइयों और हवाई ढलानों पर शाम को भी मौसम कुछ खराब ही रहेगा। रात को ऊंचाइयों पर वर्षा जारी रहेगी। हवा उत्तर उत्तर पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 22 से 24, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 7:45, सूर्यास्त 5:46 पर होगा।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
6: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
7: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ye RM3 hai, Parveeza ka saath hai, Urdu tashriyat baname sab al khair lekar आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप तमाम सामीन खैरियत और आफियत से होंगे। रोशनियों, रहमतों और बरकतों से सजी इससे खूबसूरत नशरियात में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। मज़ीद सामीन, ये वो लम्हात है जब दिल ज़िक्र इलाही से मुनव्वर होते हैं, रूह को सुकून मिलता है और ईमान को ताजगी नसीब होती है। तो आइए मज़ीद सामीन, इससे रू परवर महफिल का आगाज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बाबरकत कलाम से, जो सरापा हिदायत और सरापा नूर है। बग़ौर व बाअदब समात फरमाइए तिलावत कुरान पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनों, अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनूदी तलब करने के लिए मक्के से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम तो उनको दोस्ती के पैगाम भेजते हो और वो दीन हक से जो तुम्हारे पास आया है मुनकिर हैं। और इस वजह से कि तुम अपने परवरदिगार यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुमको जलावतन करते हैं। तुम उनकी तरफ पोशीदा पोशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो और जो कुछ तुम मख्फी तौर पर और जो अलल ऐलान करते हो वो मुझे मालूम है। और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया।

अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पालें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और ईजा के लिए तुम पर हाथ भी चलाएं और जबानें भी, और ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। कयामत के दिन न तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और न औलाद। उस रोज वही तुम में फैसला करेगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है।

मुसलमानों, तुम्हें इब्राहिम और उनके रुफका की नेक सीरत को अपनाना जरूरी है। जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और उन बुतों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बेताल्लुक हैं, हम तुम्हारे माबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते, और जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओ, हम में तुम में हमेशा खुल्लम खुल्ला अदावत और दुश्मनी रहेगी। हाँ, इब्राहिम ने अपने बाप से यह जरूर कहा था कि मैं आपके लिए मगफिरत मांगूंगा और मैं अल्लाह के सामने आपके बारे में किसी चीज का कुछ इख्तियार नहीं रखता। ऐ हमारे परवरदिगार, तुझी पर हमारा भरोसा है और तेरी ही तरफ हम रुजू करते हैं और तेरे ही हुजूर में हमें लौट कर आना है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको काफिरों के जरिए फितने में न डालना, और ऐ हमारे परवरदिगार, हमें मुआफ फरमा, बेशक तू गालिब है, हिकमत वाला है। तुम मुसलमानों को, यानी जो कोई अल्लाह के सामने जाने और रोजे आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो, उसे उन लोगों की नेक सीरत अपनानी चाहिए, और जो रूगरदानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हम्द-ओ-सना है।

अजब नहीं कि अल्लाह तुम में और उन लोगों में जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे, और अल्लाह कादिर है और अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सुलूक करने से अल्लाह तुमको मना नहीं करता। अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है।

अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। तो जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे वही जालिम हैं।

मोमिनों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आएं तो उनकी आजमाइश कर लो, और अल्लाह तो उनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको मालूम हो कि वो मोमिन हैं, तो उनको कुफ्फार के पास वापस न भेजो, कि न ये उनको हलाल है और न वो इनको हलाल है, और जो कुछ उन्होंने इन पर खर्च किया हो वो उनको दे दो, और तुम पर कुछ गुना नहीं कि इन औरतों को मेहर देकर इनसे निकाह कर लो, और काफिर औरतों के साथ ताल्लुकात निकाह बाकी न रखो, यानी उन्हें कुफ्फार को वापस दे दो, और जो कुछ तुमने उन पर खर्च किया हो तुम उनसे तलब कर लो, और जो कुछ उन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें। ये अल्लाह का हुक्म है जो तुम में फैसला किए देता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है।

और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई तुम्हारे हाथ से निकलकर काफिरों के पास चली जाए और उसका मेहर वसूल न हुआ हो, फिर तुम उनसे जंग करो और उनसे तुमको गनीमत हाथ लगे, तो जिनकी बीवियां चली गई हैं उनको इस माल में से इतना दे दो जितना उन्होंने खर्च किया था, और अल्लाह से जिस पर तुम ईमान लाए हो डरते रहो।

0: मोमिनों, उन लोगों से जिन पर अल्लाह गुस्से हुआ है दोस्ती न करो, क्योंकि जिस तरह काफिरों को मुर्दों के जी उठने की उम्मीद नहीं, इसी तरह इन लोगों को भी आखिरत के आने की उम्मीद नहीं।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। सामीने कराम, दिलों को मुनव्वर कर देने वाली तिलावत कलाम इलाही

अभी हमें नसीब हुई है। अल्लाह ताला अपने पाक कलाम की बरकत से हमारे दिलों को नूर ईमान, हमारी जबानों को जिक्र इलाही और हमारी जिंदगियों को अमल साले से आरास्ता फरमाए। आमीन। मज़ीद सामीन, कुरान मजीद सिर्फ तिलावत के लिए नहीं बल्कि हिदायत, बसीरत और ज़िंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई का सर चश्मा है। खुश नसीब है वो दिल जो इसकी आवाज़ को सुनते ही नहीं बल्कि इसके पैगामात को अपनी ज़िंदगी का चिराग भी बनाते हैं। वो ज़ात जो हर तारीफ से बुलंद, हर नेमत की अता करने वाली, हर उम्मीद का सहारा और हर दिल की पुकार सुनने वाली है। समात फरमाइए एक नहायत दिलावेज हम दीवार ताला। समात फरमाइए।

0: कायनात की हर सुबह उसी के हुक्म से रोशन होती हैं, हर शाम उसी के इज़्न से सुकून पाती हैं। हवाओं की सरगोशियों में, बारिश की बूंदों में, फूलों की महक में और दिल की हर धड़कन में उसी की कुदरत के जलवे नुमायाँ हैं। मस्जिद सामीन, गुज़िश्ता हफ्ते से आप हमारे साथ तारीख़ करबला के उन पुरदर्द और रूह फरसा वाक़ियात को समाअत फरमा रहे हैं जो मैदान करबला के बाद पेश आए। वो वाक़ियात जिनमें तलवारों की गूंज तो थम गई मगर सब्र, इस्तिकामत और हक़ की सदा हमेशा के लिए तारीख़ का हिस्सा बन गई। तो आइए मौज़ी सामीन, आज की महफिल में भी हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आइंदा मज़ीद दो हफ़्तों तक करबला के बाद पेश आने वाले उन अहम वाक़ियात का तज़करा जारी रखेंगे। आइए सामीन, समाअत फरमाइए आज का बयान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्मान बिन मोहम्मद ने मदीने पहुँचते ही अहले मदीना से एक ग्रुप को यजीद की जानिब रवाना किया ताकि वो यजीद की इससे बातचीत करें और उसकी खिलाफत को तस्लीम यानी एक्सेप्ट करें। इस ग्रुप में सहाबी रसूल हज़रत हंजला के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन हंजला रदी अल्लाह तु भी मौजूद थे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तु की ज़ात मुबारक यजीद की आज़ादियों के लिए बहुत बड़ी रुकावट थी। आपकी शहादत के बाद वो बिल्कुल ही बेलगाम हो गया था और हर किस्म की बुराइयों का बाजार गर्म हो गया था। जिना हो, होमोसेक्सुअलिटी हो, हरामकारी हो, भाई बहन का निकाह, सूद, शराबखोरी वगैरह ये सब ओपनली राइज हो गया था। यहाँ तक के लोगों में नमाज की पाबंदी तक उठ गई थी। जब अहले मदीना का ये ग्रुप यजीद के पास गया और उन्होंने वहाँ यजीद की गैर शरई मामलात देखे तो मदीने वापस आकर उन्होंने लोगों के सामने यजीद की ऐसी ऐसी बुराइयाँ बयान की कि उनकी अक्ल हैरान रो गई। चुनाचे उन्होंने जो कुछ वहाँ देखा उसमें से ये भी था कि यजीद शराब नोशी, गाना गाने वालियों से फोहश और गाना सुनने और फालतू कामों में लगा रहता था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हराम खोरी, बहन भाई का निकाह, ये सब कामों में ये लोग इन्वॉल्व थे। फिर इसी ग्रुप ने मदीने वालों से कहा कि हम इन तमाम खुराफात को देख कर इसे खलीफा नहीं मान सकते और तुम लोगों से भी हमारा यही कहना है, यजीद बेयत के काबिल नहीं है। इस ग्रुप के लीडर हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, लिहाजा आपने अहले मदीना से फरमाया कि अल्लाह की कसम हमने यजीद की मुखालिफत उस वक्त इख्तियार की जब हमको यकीन हो गया कि इसकी हरकतों की वजह से अब हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। इसी ग्रुप के एक और मेंबर मुनजिर बिन जुबैर ने कसम खाकर कहा कि मुझे यजीद ने 100,000 दिरहम दिए हैं और मेरे साथ एहसान भी किया है लेकिन मैं इस वजह से सच्चाई का साथ नहीं छोड़ सकता। इस ग्रुप से यजीद के बारे में ये कलिमात सुनने के बाद और यजीद के घटिया कामों की जाहिर हो जाने के बाद अहले मदीना ने इसको खलीफा मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और इसके बाद

उस्मान बिन मोहम्मद को जिसको यजीद की जानिब से गवर्नर मुकर्रर किया गया था उसको अहले मदीना ने मदीने से निकाल कर अब्दुल्ला बिन हंजला रदी अल्लाह तआला के हाथ पर बेयत कर ली और उधर मक्के में लोगों ने हजरत इब्न जुबैर के हाथों बेयत कर ली थी जब यजीद को इस सब मामले की खबर पहुंची तो वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने मुस्लिम बिन उकबा की लीडरशिप में 20,000 का लश्कर मक्के और मदीने पर अटैक करने के लिए भेजा यजीद ने उसको हुक्म दिया कि मदीने के लोगों को 3 दिन तक की मोहलत देना मान जाए तो वेल एंड गुड वरना उनसे जंग करना और जब तुम इन्हें शिकस्त दे दो तो 3 दिन तक मदीने में लूट मारी मचाना वहां का माल रुपया हथियार और गल्ला ये सब तुम्हारी आर्मी का है ये इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद मुस्लिम बिन उकबा 20,000 की आर्मी के साथ मदीने में दाखिल हुआ उसने मदीने वालों को मुखातिब करके कहा कि ऐ अहले मदीना हमारा खलीफा यजीद का ये ख्याल है कि तुम लोग असल हो तुम्हारा खून बहाना मुझे गवारा नहीं तुम्हारे लिए मैं 3 दिन की मुद्दत मुकर्रर कर रहा हूँ तुम में से जो कोई बाज आ जाएगा और हमारी तरफ आ जाएगा हम उसका उजर कबूल कर लेंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे और फिर मक्के की तरफ मुतवज्जे होंगे और अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो ये समझ लो कि हम तुमको पहले ही बता चुके हैं कि हम क्या करेंगे 3 दिन गुजर गए तो मुस्लिम ने कहा ऐ अहले मदीना 3 दिन गुजर गए हैं बताओ तुम्हें क्या मंजूर है हमसे सुलह करना चाहते हो या लड़ना चाहते हो अहले मदीना ने जवाब दिया ऐ दुश्मन खुदा अगर तुम लोग वहां जाने का इरादा रखते हो तो हम तुमको बिना जंग किए नहीं जाने देंगे क्या तुम्हें इसलिए छोड़ दें कि तुम खाने काबा पर हमला करो वहां के रहने वालों को खौफ और हिरास में डालो वहां बेदीनों वाली हरकतें करो बैतुल्लाह की बेहुर्मती करो नहीं नहीं अल्लाह की कसम हमसे ये नहीं होगा मुस्लिम बिन उकबा ने जब मदीने वालों का डिसीजन सुन लिया तो वो जंग करने के लिए आगे बढ़ा जंग का सिलसिला शुरू हुआ उसने अपने चंद सिपाहियों को हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला रदी अल्लाह तआला के मुकाबले में भेजा आपने असहाब को साथ लेकर यजीदी सवारों पर हमला किया यह हमला इतना शानदार था कि सब सवार भाग खड़े हुए और भागते भागते वो मुस्लिम के पास पहुंचे मुस्लिम ये देखकर अपने खास सिपाहियों को लेकर उठ खड़ा हुआ और उसने सवारों को ऐसा ललकारा कि वो सब दोबारा जंग की तरफ पलट पड़े और फिर बड़ी दिलेरी से लड़ने लगे इस दौरान फजल बिन अब्बास जो हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के पोतों में से थे ये 20 सवारों को साथ लिए हजरत अब्दुल्ला के साथ आकर मिले और उन्होंने बड़ी खूबी और महारत के साथ बहुत शदीद जंग की हजरत अब्दुल्ला से उन्होंने कहा कि आपके साथ जितने भी सवार हैं सबको हुक्म दें कि वो मेरे साथ आकर ठहरे और जब मैं अटैक करूं तो वो भी अटैक करें मैं आज मुस्लिम तक पहुंचे बगैर दम नहीं लूंगा या तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा या खुद शहीद हो जाऊंगा हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला ने आपके कहने के मुताबिक चंद सिपाही आपके साथ कर दिए फिर आपने उन सिपाहियों के साथ उन यजीदियों पर अटैक किया और वो अटैक इतना जोरदार था इतना लाजवाब था कि वो सब के सब स्कैटर्ड हो गए आपने अपने असहाब से कहा तुमने देख लिया ये नालायक लोग कैसे भाग रहे हैं इन पर फिर हमला करो ताकि मैं इनके सरदार को देखकर उसको मौत के घाट उतार दूं फिर आपने शामियों पर ऐसा हमला किया कि शामियों का फौजी दस्ता मुस्लिम को पैदल फौजियों में छोड़कर स्कैटर्ड हो गया मुस्लिम के गिर्द अब 500 सिपाही थे जो घुटने टेके हुए बिरछियां इन लोगों की तरफ ताने खड़े थे यहां हजरत फजल को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपने मुस्लिम के एक रूमी सिपाही को देखकर समझे कि ये मुस्लिम बिन उकबा है और आपने उसके सर पर बहुत ही खतरनाक वार किया जिससे उसका सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और वो मर गया उसके गिरते ही आपने खुशी में नारा लगाया कि ये समझ कर कि मैंने मुस्लिम को मार दिया है पीछे से मुस्लिम ने आपको आवाज लगाई और एक गंदी गाली देकर कहा कि मैं अभी नहीं मरा मरने वाला मेरा सिपाही है आपने दोबारा हमला किया और सिपाहियों के साथ मुस्लिम की कुर्सी और तख्त की तरफ बढ़े आखिरकार आप उसके तख्त तक पहुंचने में कामयाब हो गए शिद्दत जज्बात से आपका चेहरा सुर्ख हो रहा था आप तलवार उठाकर उस पर वार करने ही वाले थे कि वो जोर से चिल्लाने लगा कि सिपाहियों कहाँ हो ये सुर्ख चेहरे वाला मुझे मार डालेगा इसको रोको और मुझे इससे बचाओ मुस्लिम की आवाज़ सुनकर उसके सिपाही उसकी तरफ मुतवज्जे हुए पे दर पे आप पर वार करना शुरू कर दिए और वो वार इतने शरीर थे कि आप उनकी ताब ना लाकर ज़मीन पर गिर पड़े और आपकी शहादत हो गई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आपकी शहादत के बाद मुस्लिम के सब सिपाही हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला की तरफ बढ़े और आपके करीब पहुँच गए शामियों में से इब्ने नुमीर जिसका नाम लेकर यजीद ने मुस्लिम को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इसे अपने साथ लेकर जाना ये अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला के करीब पहुंचा फिर अहले मदीना पर तीरों की बारिश बरसने लगी हजरत

अब्दुल्ला ने अहले मदीना से कहा कि आखिर कब तक तीर खाते रहोगे? ये इसलिए कहा क्योंकि वो हमले से रुके हुए थे। आपने कहा, जिसे जन्नत में जल्दी जाना हो वो मेरे साथ इस अलम के साथ हो ले। ये सुनते ही जितने जाबाज वहां पर थे वो सब उठ खड़े हुए। आपने कहा, अपने परवरदिगार की बारगाह इलाही में चलो, अल्लाह की कसम मुझे उम्मीद है बस एक लम्हे की देर है कि तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएंगी। ये सुनकर सब के सब जंग पर आमादा हो गए। कुछ देर तक घुमसान लड़ाई हुई। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह उन्होंने अपने बेटों को एक एक करके मैदान में भेजा, सब उनकी आंखों के सामने शहीद हो गए। वो खुद शेर पढ़ते जाते और तलवार से गर्दने उड़ाए जा रहे थे। इसी तरह अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते आप भी यजीदियों के हाथ शहीद हो गए। हिस्ट्री में इस जंग को वाकए हर्रा के नाम से जाना जाता है। इस वाकये में यजीदियों ने मदीने मुनव्वरा में वो तूफान बदतमीजी बरपा किया जिसकी तसव्वुर से रूह कांप उठे। कत्लो गारत गिरी और तरह तरह के मजालिम का बाजार उन्होंने गर्म किया। लोगों के घरों को लूट लिया, 700 सहाबाए कराम को बेगुनाह शहीद किया और ताबाईन, हाफिज कुरान वगैरह कुल मिलाकर 10,000 से ज्यादा लोग शहीद किए गए। लड़कों को कैद कर लिया गया, ख्वातीन की बेहुरमती की गई। रोजाए मुबारका मिंबर शरीफ के दरमियान जिस जगह के बारे में हदीस में आया है कि ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, यहाँ पर घोड़े बांधे और इनकी लीद और पेशाब मिंबर अथर पर पड़े। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में लोग नमाज ना पढ़ सके। सिर्फ सईद बिन मुसैब रदी अल्लाह अन्हु जो बड़े ताबईन में से थे वो मजनून बनकर वहां हाजिर रहे। आखिर में उन जालिमों ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया मगर फिर दीवाना समझकर छोड़ दिया। सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि हर्रा की रातों में कि जिस वक्त यजीदियों ने हमला किया था मेरे सिवा दूसरा कोई शख्स मस्जिद नबवी शरीफ में ना रह सका। अहले शाम जब मस्जिद में आते तो कहते कि दीवाना इस मकाम पर क्या कर रहा है और मैं नमाज का कोई वक्त ऐसा ना गुजारता जब मैं अजान इकामत की आवाज़ मस्जिद नबवी में ना सुनता। यानी रूहानी तौर पर वो अजान और नमाज की आवाज़ें सुन रहे थे। फिर मैं उसी अजान इकामत से नमाज अदा करता। यजीदियों की लूट मारी, गर्म बाजारी और गुंडागर्दी का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबी हैं, जब यजीदी फौज उनके मकान में घुसी और कुछ ना पाया तो उन्होंने आपकी दाढ़ी मुबारक के सब बाल उखाड़ लिए। इसी तरह उस खबीस लश्कर ने एक नौजवान को पकड़ लिया, उसकी माँ फरियाद करती आई तो उस लड़के की माँ के सामने उस लड़के को शहीद कर दिया और उसका सर उसकी माँ की गोद में दे दिया और कहा, तो अपने जिंदा रहने को गनीमत नहीं समझती कि अपने बेटे को लेने चली आई है। जब मुस्लिम बदकार ने अहले मदीना को ज़बरदस्ती यजीद पलीत की बेयत और इताअत पर मजबूर किया तो एक शख्स जो कबीले कुरैश में से था उसने बेयत के वक्त ये कहा कि मैं तरीका इताअत पर बेयत करता हूँ, मासियत पर नहीं। यानी अच्छे कामों में यजीद की बात मानूंगा, गुनाह के कामों में नहीं मानूंगा। तो मुस्लिम ने उसको कत्ल का हुक्म दे दिया। जब ये जालिम मदीने मुनव्वरा में कत्ल व गारत गिरी करने के बाद मक्का मुकर्रमा की तरफ मुतवज्जे हुआ ताकि वहाँ अब्दुल्ला बिन जुबैर और उन तमाम लोगों का खात्मा करे जो यजीद के खिलाफ इत्तेफाकन रास्ते में, उस पर फालिज का अटैक हुआ और ये बदबख्त उसी फालिज के जेर असर फौरन ही मर गया। फिर इसकी जगह यजीद के हुक्म के मुताबिक हुसैन बिन नुमैर लश्कर का लीडर बना और हजारों अहले मदीना का नाहक खून बहाने वाला मुस्लिम बिन उकबा को उन्होंने वहीं पर दफन कर दिया और आगे बढ़ गए। मुस्लिम अभी मक्के के रास्ते में ही था कि उसे मौत आ गई। मरते वक्त उसने हुसैन बिन नुमैर को बुलाकर उससे कहा कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कभी तुझे इस लश्कर का कमांडर नहीं बनाता, लेकिन तुझे हमारे खलीफा यजीद ने कमांडर मुकर्रर कर दिया है और खलीफा का हुक्म मैं टाल नहीं सकता, लिहाजा 4 बातें तुझे बता रहा हूँ, उन्हें याद रखना। पहली बात, मक्के के लिए जल्दी रवाना हो। दूसरी बात, जंग को स्टार्ट करने में लेट मत करना। तीसरी बात, खबरें लीक ना हो, खबरों को छुपाना। और चौथी और आखिरी बात, के कुरैश में से किसी की बात ना सुनना। हुसैन बिन नुमैर को ये इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो मर गया और उसे वहीं रास्ते में किसी मकाम पर दफन कर दिया गया। मुस्लिम की मौत के फौरन बाद हुसैन बिन नुमैर लश्कर यजीद के साथ हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह अन्हु से लड़ने के लिए मक्के की तरफ रवाना हुआ। यहाँ तमाम अहले मक्का और अहले हिजाज इनसे बेयत कर चुके थे और मदीने की सब लोग भी इनकी तरफ चले आए थे। नजदा बिन आमिर भी अपने लोगों के साथ लेकर उनको खाना काबा को बचाने के लिए उनके पास आ मिला था। नाजरीन, यजीद

यूं का इतना बड़ा लश्कर जब अटैक करने के लिए मक्के पहुंचा तो उन्हें देखकर कुछ लोग इब्ने जुबैर रदी अल्लाहु अन्हु के पास आए और आपको यजीद के साथ सुलह करने का मशवरा दिया। यजीद ने इस जंग से पहले आपकी तरफ एक मैसेज भेजा था कि मैं एक चांदी की कड़ी, दो सोने की बेड़ियां यानी चेन्स और एक चांदी का तोक भेज रहा हूं और मैंने कसम खाई है कि तुम इन चीजों को पहनकर जरूर मेरे पास आओगे वरना मैं तुम पर लश्कर के साथ अटैक करूंगा। लोगों ने आपको मशवरा दिया कि आप इसे कपड़ों के नीचे पहनकर इसके पास चले जाएं ताकि यजीद की कसम भी पूरी हो जाए और आपके लिए सुलह का रास्ता बेहतर निकल आए। इस पर आपने जवाब दिया कि अल्लाह इसकी कसम को पूरा ना करे और फिर फरमाया मैं नाहक मुतालबे को पूरा करने के लिए मामूली सी भी नरमी इख्तियार नहीं करूंगा, यानी मैं किसी भी सूरत में इस मुतालबे को पूरा नहीं कर सकता। फिर आपने फरमाया अल्लाह की कसम मुझे इज्जत वाले मामले में तलवार का वार जिल्लत वाले मामले में कोड़ों से ज्यादा महबूब है। फिर आपने लोगों को अपनी हाथ पर बेयत करने की दावत दी और यजीद की मुखालिफत का ऐलान कर दिया। नाजरीन यहाँ पर लोग आपको हुसैन बिन नुमैर के साथ सुलह करने का मशवरा दे रहे थे और वहाँ यजीद की तरफ से हुसैन बिन नुमैर के लिए ये पैगाम था कि ए गधे के बच्चे कुरैश की धोखाबाजियों से बचकर रहना और इनके साथ सिर्फ तीरों, नेजों और घोड़ों से मुकाबला करना यानी सुलों में ना पड़ जाना। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपने भाई मुंजिर बिन जुबैर को यजीदियों से जंग करने के लिए रवाना किया। मुंजिर बिन जुबैर वाके हर्रा में भी शरीक थे, फिर इनके साथ आ मिले थे। आप रदी अल्लाह उन्होंने कुछ देर तक तो दुश्मनों के साथ बहुत शदीद की जंग की, फिर इस दौरान एक शामी ने आपको अपने साथ मुकाबले के लिए बुलाया। शामी खच्चर पर सवार था, आप उसकी तरफ बढ़े, फिर दोनों ने एक दूसरे पर अटैक किया। दोनों के वार एक दूसरे पर भारी पड़ गए जिसके रिजल्ट में दोनों बेजान होकर जमीन पर गिर गए और यूं हजरत मुंजिर बिन जुबैर रदी अल्लाह उन्हो राह हक में जिहाद करते हुए शहीद हो गए। इसके बाद अहले शाम ने बहुत सख्त हमला किया जिसकी वजह से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के लश्कर में भगदड़ मच गई। ऐसी सिचुएशन में कमांडर का बहुत अहम रोल होता है। आप अपनी सवारी पर से उतरे और लोगों को पुकारने लगे और उन्हें जंग की तरफ बुलाने लगे, उन्हें जोश दिलाने लगे। आपकी आवाज़ सुनकर असहाब दोबारा जंग की तरफ पलटे और यजीदियों से मुकाबला करने लगे। जंग का सिलसिला जारी था। हुसैन बिन नुमैर के लश्कर ने मक्के को घेर लिया और मस्जिदुल हराम पर हमला शुरू किया। उन्होंने मंजनीक से मस्जिद हराम पर आग बरसाई जिसके नतीजे में खाना काबा के पर्दे और छत में आग लग गई। मंजनीक जंग में यूज होने वाला एक किस्म का हथियार होता है। ये बिल्कुल क्रेन की तरह होता है और इसमें चीजों को दूर दूर तक फेंकने की एबिलिटी होती है। दौरे हाजिर में टैंक आपको इसकी एक अपडेटेड शक्ल कह सकते हैं। इसको आप पत्थर इतनी कसरत से फेंके गए कि हरम शरीफ का मुबारक सहन पत्थरों से भर गया और इसके हमले में मस्जिद हराम के सुतून टूट गए यानी पिलर्स टूट गए। खाना काबा की दीवारें कमजोर पड़ गईं और छत गिर गई। यजीदी पत्थर बरसाने के साथ साथ आग के गोले भी जला जला कर फेंकने लगे जिससे खाना काबा में आग लग गई, गिलाफ जल गया और वो दुम्बा जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के फिदिये में कुर्बान किया गया था उसके सींग भी तबर्रुक के तौर पर खाना काबा में महफूज थे वो भी जल गए। इस हमले की वजह से उस जंग के बाद अहले मक्का का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। ऑलमोस्ट दो महीने तक वो सख्त मुसीबत में मुब्तला रहे थे। खैर यजीदियों और अहले मक्का की जंग जारी थी, फिर अचानक एक ऐसी न्यूज़ आई जिससे जंग का पासा पलट गया। वो न्यूज़ थी यजीद के मरने की न्यूज़। जी हाँ, यजीद मर गया। सबसे पहले ये खबर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हु को मिली। न्यूज़ मिलते ही उन्होंने बुलंद आवाज से यजीदियों को पुकार कर कहा ए शामी बदबख्तों, तुम्हारा गुमराह सरदार यजीद तो हलाक हो गया तो फिर अब तुम हमसे क्यों लड़ रहे हो? शामी पहले तो ये समझे कि अब्दुल्ला बिन जुबैर की ये कोई चाल है, आपकी ये वॉर स्ट्रेटजी का पार्ट है। लेकिन तीसरे दिन जब उन्हें साबित बिन कैस नामी शख्स ने कूफा से आकर यजीद के मरने की खबर सुनाई तब उन्हें यकीन हो गया कि वाकई उनका सरदार मर गया है। अब इनके हौसले पस्त हो गए और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की फौज के हौसले बुलंद हो गए और यूं अल्लाह पाक ने अहले मक्का से यजीदी आफत को दूर फरमा दिया। यहाँ पे कुछ स्टॉप करके आपको कुछ बातें यजीद की भयानक मौत के मुतालिक बताते हैं। यजीद अपनी मौत से पहले एक बहुत ही खतरनाक और अजियत देने वाली बीमारी में मुब्तला हो गया था। पेट के दर्द और इंटेस्टाइन के जख्मों की तकलीफ की वजह से वो ऐसे तड़पता था जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। आखिरी वक्त में जब उसे अपनी मौत का यकीन हो गया तो उसने अपने बड़े बेटे
मुआविया बिन यजीद को अपने पास बुलाया और सल्तनत के बारे में

इंस्ट्रक्शंस देने लगा कि उसे यजीद के बाद कैसे सल्तनत के मामला संभालने हैं। वो भी स्टार्ट ही हुआ था कि उसके बेटे ने नहायत ही जिल्लत और हकारत के साथ सल्तनत की ऑफर ठुकराते हुए यजीद से ये कहा कि जिस तख्त व ताज पर आले रसूल के खून के धब्बे हों मैं उसे हरगिज कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे महरूम रखे जिसकी बुनियादें नवासे रसूल के खून पर रखी गई हों। यजीद अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तड़प गया और शदीद गम और दर्द से अपने बिस्तर पर पांव पटकने लगा। मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और उसमें कीड़े पड़ गए। तकलीफ की शिद्दत से वो खिंजीर की तरह चीखा करता था। पानी का कतरा हल्स से नीचे उतरने के बाद उसे सुई की तरह चुभने लगता था। उस पर अजीब किस्म का अल्लाह का कहर नाजिल हुआ था कि वो पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी चीखता ही था। किसी सूरत उसे चैन और सुकून नहीं मिल रहा था और कैसे मिलता। बिलाखिर इसी दर्द की शिद्दत में तड़प तड़प कर उसकी जान निकली और मरने के बाद उसकी लाश में से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उसके करीब जाना मुश्किल हो रहा था। यजीद के मरने की खबर शामियों तक पहुंच गई थी जिससे वो स्कैटर्ड हो गए थे, बिखर गए थे। हुसैन बिन नुमैर भी भाग निकला। यजीद के मौत के बाद मरवान बिन हकम ने लोगों को अपने हाथ पर बैत करने का कहा। फिर जब मरवान भी मर गया तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने हाथ पर बैत करने का ऐलान किया और हज्जाज बिन यूसुफ को एक लश्कर देकर उसका अमीर मुकर्रर करके मक्का मुकर्रमा रवाना किया। हज्जाज मक्का पहुंचा तो जबले अबी कुबैस पे चढ़कर उसने वहां मंजनीक सेट की और मस्जिद हराम में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके साथियों पर पत्थर बरसाए। जिस दिन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की शहादत का दिन था उस दिन अर्ली मॉर्निंग आपने अपनी वालदा हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। उस वक्त आपकी वालदा की एज 100 साल थी और अभी तक उनका कोई दांत तक नहीं गिरा था और ना ही आंखों की बिनाई में कुछ फर्क आया था। वालदा ने आपसे पूछा, ए अब्दुल्ला, तुम्हारी जंग का क्या हुआ? आपने अर्ज की, दुश्मन फला मुकाम तक पहुंच चुका है। ये कहकर आप मुस्कुरा दिए और कहा, बेशक मौत ही में राहत और आराम है। आपकी वालदा ने कहा, ए मेरे बेटे, शायद तुमने मेरे लिए मौत की तमन्ना की है लेकिन मुझे तो उस वक्त तक नहीं मरना पसंद जब तक तुम्हारा कुछ फैसला ना हो जाए। अगर तुम चीद गए तो इससे मेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी और अगर तुम कत्ल कर दिए गए तो मैं इसे बाई से सवाब समझूंगी कि मेरा बेटा राह हक में शहीद हो गया। फिर जब आपने अपनी वालदा को अलविदा कहा तो वालदा ने आपको नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा तुम कत्ल के खौफ से अपने दीन की कोई खसलत ना छोड़ना। ये नसीहत सुनकर आप वहां से रवाना हो गए और मस्जिद में दाखिल हुए। लोगों ने आपसे अर्ज की कि क्या हमें दुश्मन से सुलह की बात नहीं करनी चाहिए? आपने फरमाया, क्या सुलह का वक्त है ये? फिर आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर दुश्मन तुम्हें उस वक्त काबे के अंदर भी पा लें तो जरूर तुम्हें ज़िबा कर देंगे। फिर आपने एक शेर पढ़ा जिसका तर्जमा कुछ यूं बनता है कि मैं जिल्लत और रुसवाई के बदले जिंदगी का खरीदार नहीं हूं और ना ही मौत के डर से सीढ़ी पर चढ़ने वाला हूं। आपने अपने साथियों को नसीहत करते हुए फरमाया, जिस तरह तुम्हारे चेहरे गुस्से से भरे हुए हैं इसी तरह तुम्हारी तलवारें भी गुस्से की आग उगलें। किसी की तलवार ना टूटने पाए कि वो फिर वो औरत की तरह हाथों से अपना दिफा करने लगे। अल्लाह की कसम, जब भी किसी लश्कर से मेरा सामना हुआ है तो मैं हमेशा पहली सफ में रहा। फिर आपने शामियों पर हमला कर दिया। सबसे पहले असफद नामी आदमी ने आपका मुकाबला किया। आपने तलवार के एक ही वार में उसकी टांग काट दी। इसी तरह मुसलसल आप शामियों पर हमला करते रहे और उन्हें मजे से दूर भगाते रहे और साथ साथ ये फरमाते रहे कि काश कोई ऐसा शख्स भी हम पल्ला होता कि मैं उसके लिए काफी होता। तारीखी किताबों में आता है कि मस्जिद की छत पर आपके कुछ मददगार चढ़े हुए थे जो दुश्मनों पर ईंटें बरसा रहे थे। किसी दौरान इत्तेफाक से एक ईंट आपके सर के दरमियान आ लगी जिससे आपका सर फट गया और आप ठहर गए और फरमाने लगे, हम वो लोग नहीं कि पीठ फेरने की वजह से हमारी एड़ियों पर खून गिरता हो बल्कि हम वो हैं जो सीना सिपर होने की वजह से हमारे कदमों पर खून टपकता है। लेकिन इन जख्म की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से आपने ढाल होकर जमीन पर तशरीफ लिया है। दुश्मनों को मौका मिल गया चुनाचे उन्होंने आगे बढ़कर तलवार से एक जोरदार वार करके आपका सर मुबारक तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शामियों ने सिर्फ इस पर आपको शहीद करने पर ही नहीं रुके बल्कि आपके जिस्म मुबारक को सूली पर लटका दिया गया। हजरत याला तैमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की शहादत के 3 दिन बाद

0: कायम मुकर्रमा हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि अभी तक आपकी लाश मुबारक सूली पर थी। आपकी वालदा लाश मुबारक के पास आई और हज्जाज बिन यूसुफ से कहा, क्या अभी तक इस शह सवार के उतरने का वक्त नहीं आया? हज्जाज बोला, ये मुनाफिक है माजल्ला। आपकी वालदा हजरत असमा रदी अल्लाह उन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम ये मुनाफिक नहीं था, बल्कि ये तो रोज़ादार इबादत गुजार और नेकोकार था। हज्जाज ने कहा, है बुढ़िया वापस चली जा, तेरी अकल जाइल हो गई है। आपने फरमाया, नहीं मेरी अकल जाइल नहीं हुई है, क्योंकि जब से मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है मेरी अकल जाइल नहीं हुई है। आपने इरशाद फरमाया था कि कबीला सकीफ से एक झूठा और लोगों का कत्ले आम करने वाला एक शख्स जाहिर होगा, बस छूटे शख्स को हम देख चुके हैं और रहा लोगों का कत्ले आम करने वाला तो वो तो तू है। आपने ये रिवायत तो शायद सुन रखी हो कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा करवा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो फरमाया, अब्दुल्ला ये खून ले जाओ और ऐसी जगह महफूज कराओ जहाँ कोई ना देखे। आप फरमाते हैं, बाहर जाकर मैंने ये सारा खून खुद पी लिया। जब मैं वापस आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि अब्दुल्ला खून कहाँ महफूज किया? मैंने अर्ज की, हुजूर ऐसी जगह पर जहाँ कोई नहीं देख सकता। आपने इरशाद फरमाया, शायद तुमने इसे पी लिया है। मैंने अर्ज की, जी ऐसा ही है। आपने फरमाया, तुम्हें खून पीने का किसने कहा था? खराबी है तेरे लिए लोगों से और उनके लिए तुझ से। इस हदीस पाक की शरह में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि खराबी है तेरे लिए लोगों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन वर्ड से मुराद यही है कि आपकी शहादत के बाद आपको सूली पर चढ़ाया गया, यह आपके लिए हज्जाज वगैरह की तरफ से खराबी है, और लोगों के लिए तुझ से इससे मुराद ये है कि जो आपके कातिलों ने आपको शहीद करके और काबतुल्लाह की बेहुरमती का जो बहुत बड़ा गुनाह अपने सर लिया है वो उन लोगों के लिए खराबी है। आप बहुत नेक और इबादत गुजार थे। एक जगह आपका जिक्र खैर छिड़ा तो आपकी वालदा हजरत असमा ने फरमाया कि इनकी रातें बकसरत कयाम में गुजरती और दिन रोजों में कटते थे, जिसकी वजह से इन्हें मस्जिद का कबूतर कहा जाता था। आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: सामईन अजीज, ये सिर्फ तारीख के औराक नहीं बल्कि ऐसे असबाक हैं जो इंसान को जुल्म के मुकाबले में हक पर कायम रहने, सब्र इख्तियार करने और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखने का हौसला अता करते हैं। ये और एम फ्री है, पर वीज़ा का साथ है। उर्दू नशरियात सब अल खैर दिन के 7 बजे तक। शामिल मोहतरम, करबला का दर्द सिर्फ एक ख़ानदान का गम नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक ऐसा एहसास है जो दिल को झंझोर देता है। जब हम इन वाक़यात को सुनते हैं तो मकसद सिर्फ आँखों को अश्कबार करना नहीं बल्कि अपने दिलों को बेदार करना, अपने किरदार का मुहासिबा करना और ये सोचना भी है अगर हक और बातिल का इम्तिहान आज हमारे सामने आए तो हमारा कदम किस सिमत उठेगा।

शामिल मोहतरम, इन अलमनाक वाकयात का तस्करा सुनने से दिल गमगीन हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह इस हकीकत के सामने झुक जाती है कि अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किस अजीम सब्र और इस्तेकामत का मुजाहिरा फरमाया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाए, हमें क़ुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुमा और उन तमाम सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में हमेशा कायम रखे। तमाम अहले ईमान की मग़फ़िरत फरमाए, बीमारों को कामिल शिफा अता करे, आमीन। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे करबला के बाद के वाकयात के इसी सिलसिले के एक और अहम और सबक आमोज़ बयान के साथ। अपनी दुआओं में याद रखें, तकनीकी मदद अंजू की रही है, मशकूर और ममनून है हम। परवीज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।

रसिको यार तहाता साथ सा अप्रतिम कार्यक्रम सालू स्थिविया कहीं अप्रतिम गाने नहीं अन्य रसिको असम हल्ले जाते कि जूनियर गाने में दे कई तरी विशेष स्थात अन्य जूनी गाने में से फक्त सूर नहीं तर आयुष्यते सुंदर आठवनीं से जब लेली पेटिया ही तर इस साला पुनः या सूरेल कालात अपन हरवुया

આવો અમારી સાથે हमारी साथ है हैपनिंग राइट ओवर हियर रेडियो मनोरंजन नेहरू पर. इट्स ऑलरेडी 10:11. भाई तू साथ है हशे तो ए सफर सुंदर हशे. ए सफर जेमा आपणे एक बीजानो हाथ पकड़ीने चालीशू. क्यारेक अटकीशू, क्यारेक तू मने संभाळजे अने क्यारेक हूँ तने संभाळी लईश.

नमस्कार श्रोताओ, एमबीसी रेडियो पर आप सबका अभिवादन है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और एमफ्री रेडियो, और आप इस समय सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में साथ देने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर। जी हाँ श्रोताओ, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दिन के 11:30 बजे तक। श्रोताओ, भक्ति वो दीपक है जो अंधेरों को नहीं दिल के अहंकार को मिटा देता है। जिस हृदय में प्रभु का नाम बसता है उस जीवन में हर कठिन राह भी आसान लगती है। और भक्ति में शक्ति श्रद्धा में जीत है, और प्रभु की कृपा में हर दुख का अंत है।

श्रोताओं, जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा तब शुरू होती है जब कदम दुनिया की तरफ नहीं प्रभु की तरफ बढ़ते हैं। भक्ति हमें जीना सिखाती है, क्योंकि जो प्रभु पर भरोसा कर लेता है वो परिस्थितियों से डरना छोड़ देता है। और जीवन की असली जीत धन या शोहरत में नहीं है, बल्कि उस मन में है जो हर हाल में प्रभु का धन्यवाद करता है। और भक्ति का अर्थ वैसे तो है कि सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं, बल्कि हर दिन किसी का दिल ना तोड़ना भी है।

श्रोतो कहते हैं जहाँ अहंकार शुरू होता है वही ज्ञान और प्रेम अपना रास्ता बदल लेते हैं। अहंकार इंसान को इतना ऊंचा उठा देता है कि वो अपनी ही जड़ों को देखना भूल जाती है और झुकने वाला पेड़ हमेशा फल देता है और करने वाला अक्सर टूट जाता है।

तो चलिए श्रोताओ, 11:21 हुए हैं और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त हो चला। भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप लोगों ने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। ओशा को दीजिए अनुमति। हमारी मुलाकात होगी आज दोपहर 2:30 आपके पसंद प्रोग्राम में। तब तक आप हंसते मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन।

0: जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था। नमस्कार।
1: नमस्कार, 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। जून महीने में मॉरीशस आने वाली पर्यटकों की संख्या में 8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि पर्यटन जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया का कहना है कि इससे चिंता की जरूरत नहीं है। उनके अनुसार जनवरी से जून महीने तक कुल पर्यटकों की संख्या में 1.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो ये दर्शाती है कि मॉरीशस की मांग अब भी मजबूत बनी हुई है। उनका मानना है कि जून महीने की गिरावट के पीछे मुख्य कारण

0: फीफा वर्ल्ड कप और मध्य पूर्व में जारी संघर्ष है जिनका असर पर्यटन सेक्टर पर पड़ा है। बात करते हैं मूल ढांचा के बारे में। यातायात को सुगम बनाने और जाम कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई कई सड़क परियोजनाओं में से एक पेलग्रैंड ट्रियानो लिंक रोड का उद्घाटन आज किया जा रहा है। राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश इस नई सड़क का उद्घाटन करने वाले हैं। इससे सैंजों और M1 मोटरवे पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है। इसके बाद मंत्री फिकोफ्लैक बाईपास परियोजना का भी निरीक्षण करने वाले हैं। लगभग 4.8 किलोमीटर लंबी ये सड़क जावियर को पीएफओ से जोड़ेगी। इसमें कस्कावेल और बुसोंज के बीच पाल्मा रोड B2 तक एक नया मार्ग भी शामिल होगा। इस सड़क परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1 बिलियन रुपए की बताई जाती है। विश्व कप फाइनल का टिकट अब स्पेन के नाम हो गया है। डालास में खेले गए सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर शानदार अंदाज में अपनी दावेदारी पेश की। पूरे मुकाबले में स्पेन ने गेंद पर शानदार नियंत्रण बनाए रखा। मजबूत रक्षा और तेज आक्रमण के दम पर फ्रांस को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। अब सबकी नजरें फाइनल पर टिकी हुई हैं, जहां स्पेन विश्व चैंपियन बनने से सिर्फ एक जीत दूर है। तो विश्व कप के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर उत्साह चरम पर। फुटबॉल प्रेमी इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी की अपील अदालत में आज लंदन में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। ब्रिटेन की लेबर सरकार ने 31 मार्च के उस फैसले को रद्द करने की अपील की है, जिसमें मिसले मोंदारें सहित 6 शगोसियन को पेरिस बानोस में रहने की अनुमति दी गई थी। ये सभी 16 फरवरी को इल जिक्वें पहुंचे थे। ब्रिटेन का कहना है कि उन्हें वहां स्थायी रूप से रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। वहीं संबंधित शगोसियन का कहना है कि ये फैसला उनके पैतृक द्वीपों पर लौटने के अधिकार की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये सुनवाई सार्वजनिक होगी और मॉरिशस के समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगी। विदेश स्तर पर स्पेन के दक्षिणी क्षेत्र में लगी भीषण जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई है। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 7 ब्रिटिश नागरिक शामिल हैं। तेजी से फैली आग के कारण लगभग 2500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। महंत कबीर एवेन्यू बंटिया वाकवा में 85 साल के 85 साल के देवव्रत सुगुन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मानान के नाम से अधिक जानते थे और वे पहले डिसिप्लिन हेड मास्टर रह चुके हैं। उनकी अर्थी आज शाम के 4 बजे उनकी पत्नी इंदिरा सुगुन के मकान बंतिया वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: समय स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल 12:05 होने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक विशेष सूचना सुनते हैं। ये विशेष सूचना सीबी द्वारा सूचित किया जाता है सभी ग्राहकों को कि मरम्मत कार्यों की वजह से और निवारक रखरखाव कार्य के संदर्भ में सर अनिरुद्ध जागनाथ यानी साज हॉस्पिटल फ्लाक में गुरुवार 16 जुलाई को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान डीजल जनरेटर से सीमित बिजली ही मिल पाएगी, इसलिए अस्पताल की सामान्य सेवाओं पर कुछ असर पड़ेगा और नतीजतन इस दौरान रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी विभागों की सेवाएं केवल इमरजेंसी मामलों के

0: लिए ही उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय और वेलनेस द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई थी और असुविधाओं के लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चलें।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

सुहाना सफर सुहाना सफर कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। ये रेडियो मनोरंजन का प्रसारण है, माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना अभी से लेकर दिन के 2 बजे तक है। जी हाँ, पुराने गीतों का ये सफर है जहाँ पर आप दिल से अगर हमारा साथ देंगे तो ये सफर और भी सुहाना और भी लाजवाब हो जाएगा। तो क्यों ना इस सफ़र को साथ मिलके बेहतरीन गीतों के साथ सजाए। वैसे हम आपको बता दें कि आज का ये जो प्रोग्राम है थोड़ा सा हटकर होगा, थोड़ा सा खास होगा, क्योंकि हम ये प्रोग्राम एक श्रद्धांजलि देंगे प्राण साहब को। जी हाँ, प्राण साहब जिन्होंने हमारे बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में कई सारे ऐसे रोल किए, और ख़ासकर प्राण साहब जाने जाते थे विलन रोल के लिए, नेगेटिव रोल के लिए। तो उन्हीं से, उन्हीं के जो फिल्म जिन फिल्मों में वे नजर आए हैं, उन फिल्मों के कुछ ऐसे बेहतरीन गाने आज के इस सेगमेंट में हमने चुने हैं। आशा करते हैं कि हमारा ये सिलेक्शन भी आपको पसंद आएगा, और बेशक अगर आपके मन में भी कोई है गाना जो फिल्मों से रिलेटेड है, या फिर हम कह सकते हैं उन फिल्मों से रिलेटेड है जिसमें प्राण साहब नज़र आए हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी कोशिश जारी रहेगी कि हम आपके पसंद गीतों को बस आज के इस लिस्ट में शामिल कर सकें। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे अभी थोड़ी ही देर में। जी हाँ, प्राण साहब के फिल्मों के गीत, पर उससे पहले ये एक लाजवाब सा गाना है, और ये है फिल्म आपकी परछाइयाँ, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में रखा हुआ ये अगला गाना।

जी हाँ, सुहाना सफ़र है और जैसे हमने आपको बताया कि आज का सुहाना सफ़र कुछ हटकर होगा क्योंकि आज हमने एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट रखा है जहाँ पर हम बात करेंगे प्राण साहब की। जी हाँ, प्राण साहब जो पुराने ज़माने में फिल्मों के खलनायक के रोल में आया करते थे, पर हालांकि वे नेगेटिव रोल बहुत सारे किया करते थे, पर सच कहे तो वे दिल के बहुत ही दिलदार एक्टर रहे हैं और उनकी कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने विलन के रोल में आकर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इस रोल को उन्होंने अपना 100% दिया और बहुत ही बखूबी रूप से उन्होंने अपने रोल्स को निभाया है। 1940s से उन्होंने शुरू की थी अपने किरदार की जर्नी और उन्होंने बहुत सारे विलन के रोल किए, साथ ही साथ उन्होंने हीरो के भी रोल किए। बहुत ही फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल्स में भी उन्होंने हिस्सा लिया और लाजवाब उनकी एक्टिंग ने भाई बहुत सारे लोगों के दिलों में घर कर दिया। और 362 यानी 362 फिल्मों ने में उन्होंने बिल्कुल अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि 1942 में आई थी फिल्म खानदान, इस फिल्म में उन्होंने लीड रोल किया था। उसके बाद

बाद आई थी फिल्म पिलपिली साहब जो 1954 में आई और उसके बाद आई हलाकू. शायद आपको याद होगा फिल्म हलाकू में भी उन्होंने बहुत ही मज़ेदार भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में हलाकू यानी हुलेगू खान सुल्तान हुलेगू खान का जो किरदार था वो उन्होंने निभाया था जो कि एक सुल्तान और इस फिल्म में उनके साथ नजर आई थी मीना कुमारी जिन्होंने नीलोफर

बिल्कुल अजीत साहब इस रोल में उन्होंने परवेज की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में शंकर जयकिशन का बहुत ही लाजवाब सा संगीत निर्देशन रहा। तो चलिए इसी फिल्म का एक प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं और लाजवाब आज का ये सिलेक्शन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज के ये गाने, हमारे जो सिलेक्टेड गाने हैं, वो आपको बेशक पसंद आएंगे।

जी हाँ, 12:25 हो चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं प्राण साहब की कुछ ऐसी लाजवाब मूवीज के बारे में। बिल्कुल 12 जुलाई को उनका जन्मदिन था और चलिए श्रद्धांजलि के तौर पर प्राण साहब की कुछ ऐसी लाजवाब फिल्मों से कुछ ऐसे लाजवाब गाने हम चुन लाए हैं। और ये जो पहला गाना हमने चलाया फिल्म हल्लाकू से लिया हुआ, मीना कुमारी इनके ऑपोजिट नजर आई थी इस फिल्म में। वैसे 1958 में भी एक लाजवाब मूवी आई थी मधुमती, और मधुमती फिल्म के भी गाने जो थे वो बड़े ही हटकर बड़े ही लाजवाब थे। और साथ ही साथ इस फिल्म में उनकी जो भूमिका थी, प्राण साहब की भूमिका एक अमीर रईस लैंड ओनर और

उनका नाम इस फिल्म में था राजा उग्र नारायण, और सच में उन्होंने बहुत ही उग्रवादी होकर इस फिल्म की जो एक्ट्रेस रही वैजयंती माला पर बहुत जुम ढाए, और बिल्कुल इस फिल्म के मेन हीरो थे दिलीप कुमार साहब। वैसे इस फिल्म के गाने भाई बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब। तो चलिए इस फिल्म के कुछ ऐसे लाजवाब गीतों का भी हम लुफ्त उठाते चले मज़ेदार गीतों के इस सफ़र में। चलिए मुकेश और लता जी की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना आपके नाम करते हैं।

भाई कुछ भी कह लो, प्राण साहब जिस फिल्म में नजर आए थे उस फिल्म के गाने लाजवाब थे, और बिल्कुल भले वो विलन रोल में नजर आए पर फिर भी उन फिल्मों के जो गीत थे, जिस तरह की अदाकारी उन्होंने की थी फिल्मों में, वो काबिले तारीफ थी। और इसी के साथ चलिए हम आज इस कार्यक्रम में आप लोगों के नाम भी शामिल करते जाएंगे। यहाँ पर फुलवंती जी हमारे साथ वाकवा से जुड़ चुकी हैं और हमेशा अपने परिवार के साथ वे जुड़ी रहती हैं, और लालमाटी से सुनीता जी भी हमारा साथ दे रही हैं। ज़रूर अगर आपने जिस गाने की फरमाइश की है, प्राण साहब इस फिल्म में नज़र आए थे, इस फिल्म के गीत को भी अभी थोड़ी ही देर में हम चलाएंगे, पर बिल्कुल लाजवाब गीतों का ये सेगमेंट हमने सजाया है एज़ ट्रिब्यूट टू प्राण साहब। वैसे आपको बताते चले, 1960s के दौर में आई थी एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, और बिल्कुल इस फिल्म में उन्होंने राका की भूमिका निभाई थी और खूंखार डाकू यानी एक विलन का रोल उन्होंने किया था। राज कपूर साहब इस फिल्म में नजर आए थे, केवल वे फिल्म में नजर नहीं आए थे, वे इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, और साथ ही साथ इस क्लासिक फिल्म में प्राण के इस शानदार अभिनय को पूरे भारतीय सिनेमा के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा सराहा गया। खलनायक का जो उनका किरदार था वो लोगों को बेहद बेहद पसंद आया। भाई फिल्म में प्राण के लुक और उनके किरदार की कहानी जानने के लिए हमने भाई कोशिश तो बहुत की कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए, पर कहते हैं ना कि उस ज़माने में कोई ऐसा जरिया था नहीं, पर फिर भी कुछ लाजवाब गानों के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम ज़रूर सजा रहे हैं। हालांकि ये गाना भी राज कपूर साहब पर फिल्माया गया है, पर इस फिल्म में डेफिनेटली प्राण साहब नज़र आए थे एज द विलन रोल राका की भूमिका में।

1964 में आई थी मूवी कश्मीर की कली, और जिसका गीत आपने अभी अभी सुना मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी इस गीत में हमें सुनाई दिए, और बिल्कुल प्राण साहब इस फिल्म में नज़र आए थे मोहन सेठ के किरदार में। इस फिल्म में उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभाई थी जो लड़कियों के मतलब जो फूल बेचने वाली लड़कियाँ होती हैं उनके सरदार, उनके लीडर थे। और चंपा इस फिल्म में नजर आई थी, जी हाँ डेब्यू रोल था शर्मिला टैगोर का। और इस फिल्म की जो भूमिका मोहन सेठ की भूमिका जो प्राण साहब ने निभाई थी, वो इस फिल्म को एक अलग ही मोड़ देती थी, एक अलग ही ट्विस्ट था रस्टिक और बिल्कुल एक कॉमिक तरीका, और जिस तरह के वो सिगरेट पकड़ के पीते थे, आई मीन जिस तरह का उनका किरदार था काबिले तारीफ, और बिल्कुल बहुत ही लाजवाब सा। ये हम आपको ये भी बताते चले कि उनका जो किरदार था, जिस तरह की टोपी उन्होंने पहनी थी और जो यूपी का जो एक्सेंट उन्होंने अपनाया था, कुल्लू की जो टोपी थी, ट्रेडिशनल कुल्लू की जो टोपी उन्होंने पहनी थी, और साथ ही साथ जिस प्रकार से वो बीड़ी को हाथ में दबाए, जिस तरह से वो हंसते थे, जिस तरह से वो बात करते थे, उस ज़माने में भी एक्टर्स लोगों के लिए ये अभिनय करना आसान नहीं था, पर फिर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने इस नेगेटिव रोल को निभाया। चलिए, वैसे गायत्री जी ने इस गीत की फरमाइश की थी, अगर हो सके तो बिल्कुल कश्मीर की कली का ये गाना। चलिए, हमने आपके लिए ये गाना चलाया और आपको बेहद पसंद आया। आप पिचित वेजरे से हमारा साथ दे रही हैं, बस यूं ही साथ दीजिएगा, साथ देने से ही तो ज़िंदगी का ये सफ़र और भी सुहाना लगता है। वैसे यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं सुनीता जी जो हैं लाल माटी से, और उन्होंने गीत की फरमाइश की परवाना। तो आइए, परवाना की जब हम बात करते हैं तो परवाना फिल्म का ये गाना भी हम आपके नाम करेंगे, और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब नज़र आए थे, साथ नज़र आए थे शत्रु साहब।

और इसमें बिल्कुल हालांकि इसमें प्राण साहब तो थे नहीं, पर चलिए आपने इस गीत की फरमाइश की है और हमने ये गाना ढूंढ भी लिया है और एक यादगार पल इस गीत के द्वारा, और फिर हम वापस आते हैं प्राण साहब के कुछ लाजवाब गीतों के साथ, आपका दिल भी खुश करते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म परवाना का ये गाना आपके नाम।

सुहाना सफर और बिल्कुल 12:55 हो चुके हैं और यहाँ पर लाजवाब से हमारे जो श्रोता हैं वो हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमारी जो बुद्धि है उसे पॉलिश करते रहते हैं आपके पसंदीदा गीत। और मैं सच कहूँ हमारे जितने भी लिसनर्स हैं हमसे बिल्कुल 2 कदम आगे हैं। और आज के इस फिल्म में हमने, आज के इस सेगमेंट में हमने प्राण साहब को ट्रिब्यूट देने का सोचा है, तो प्राण साहब की कुछ लाजवाब फिल्मों के गाने हमारे लिस्ट में तो वैसे ही शामिल थे, पर आपने जिन गीतों की फरमाइश की है हम जरूर उन गीतों को यहां पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहां पर रंभा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्विट्जरलैंड से, कहती हैं क्या लाजवाब सिलेक्शन है, थैंक यू सो मच डार्लिंग। और आपके लिए भी हम जरूर चलाना चाहेंगे ये अगला तराना, ये अगला गीत जो है फिल्म उपकार से लिया हुआ गाना, और ये गाना बहुत कम चलता है, मन्नाडे साहब की आवाज में है, कुछ धीमा सा गाना है पर सफर सुहाना है, तो आपके दिल को खुश करना ये हमारा काम है। तो चलिए इस गीत को एंजॉय करते हैं और यही गाना हमें जोड़ेगा हमारी अगली कड़ी के साथ, यानी 1 बजे के समाचारों के साथ, और फिर सुहाना सफर के इस सफर को हम बेशक जा

0: 94.96 98.2। आप सुन रहे हैं RM3।
1: घड़ी मिला लीजिए, समय दोपहर के ठीक 1 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।
2: नमस्कार निर्मनी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। जून महीने में पर्यटकों के 89,989 आगमन पिछले साल के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जून 2025 में 97,000 से अधिक पर्यटक आए थे। इसका अर्थ ये है कि 8% से अधिक की एक महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन पर्यटन मंत्रालय के जूनियर मंत्री सिडनी पियर इस स्थिति को इतने नकारात्मक नज़रिए से नहीं देखते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि इस साल जनवरी से जून तक कुल मिलाकर पर्यटकों के आगमन में 1.5% की वृद्धि हुई है। सिडनी पियर के अनुसार मॉरिशस के लिए मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। उन्होंने पिछले महीने के इस कमज़ोर प्रदर्शन का श्रेय दो ऐसे कारकों को दिया है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, विश्व कप और मध्य पूर्व का संघर्ष, एक ऐसा संघर्ष जो फिलहाल रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, और उनके अनुसार पर्यटन क्षेत्र को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सिडनी पियर ने यह भी बताया कि मॉरिशस के लिए इथियोपियन एयरलाइंस की उड़ानें US अफ्रीका बिजनेस समिट के संदर्भ में तय की गई थी। ये समझौता फिलहाल सितंबर महीने तक के लिए है, लेकिन उनके अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे आगे बढ़ाया जाएगा। आज की मुख्य खबर

0: खबरों में से एक ये है, फ्रांस की टीम विश्व कप से बाहर हो गई है। कल रात खेले गए मुकाबले में उसे स्पेन के हाथों 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस की टीम अपने राष्ट्र दिवस यानी 14 जुलाई के ही दिन टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इसी दिन मॉरिशस में स्थित फ्रांसीसी दूतावास द्वारा हर साल की तरह बास्टिल डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर इस ऐतिहासिक दिन को याद किया गया। कल रात फ्लोरियाल स्थित अपने आवास पर एक स्वागत भोज के साथ राजदूत फ्रेडेरिक बोंटन ने इस अवसर को यादगार बनाया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इसमें उपस्थित थे। अपने संबोधन में फ्रेडेरिक बोंटन ने अपने देश और मॉरिशस के बीच के उत्कृष्ट संबंधों की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री को 10 और 11 नवंबर को होने वाले पेरिस पीस फोरम में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया। आज की अन्य मुख्य खबर ये है कि लंदन में ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी की अपील अदालत आज बुधवार को एक निर्णायक सुनवाई करेगी। ब्रिटिश लेबर सरकार 31 मार्च को दिए गए उस फैसले को रद्द करने की मांग कर रही है जिसने मिस लेमोदाहें सहित 6 शागोस निवासियों को शागोस द्वीप समूह के पेरोसबानुस में रहने की अनुमति दी थी। वे पिछले 16 फरवरी को इल्जुक्वें पर पहुंचे थे। सरकार का मानना है कि उनके पास स्थायी रूप से का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी ओर संबंधित शागोस निवासी इस फैसले का बचाव कर रहे हैं जिससे वे अपनी पैतृक भूमि पर लौटने के अधिकार के लिए जारी संघर्ष में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानते हैं। ये सार्वजनिक सुनवाई मॉरिशस के समय अनुसार दिन के 1:30 बजे शुरू होगी। और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान बातचीत के लिए वापस नहीं आता है तो वे अगले सप्ताह ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों पर हमला करेंगे। ट्रंप ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली सभी मालवाहक शिपिंग पर 20% शुल्क लगाने की धमकी को वापस ले लिया, लेकिन ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी फिर से शुरू कर दी है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। महंत कबीर एवेन्यू बंतेवाकुआ में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री देवव्रत सगन, जो मानन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले डिसिप्लिन हेडमास्टर थे। उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा सगन के घर महंत कबीर एवेन्यू बंतेवाकुआ से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन विस आफ्टरनून एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: इस समय स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल 1:05 होने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए ये विशेष सूचना सुनते हैं। आम जनता को सूचित किया जाता है कि सीईबी ने बिजली सप्लाई की कटौती नियोजित निवारक रखरखाव कार्य के संदर्भ में सर अनिरुद्ध जागनाथ यानी साज हॉस्पिटल फ्लक में गुरुवार 16 जुलाई को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी निवारक रखरखाव कार्य के दौरान डीजल जनरेटर से सीमित बिजली ही मिल पाएगी, इसलिए अस्पताल की सामान्य सेवाओं पर थोड़ा असर पड़ेगा। नतीजतन इस दौरान रेडियोलॉजी और लैबोरेटरी विभागों की सेवाएं केवल इमरजेंसी मामलों के लिए ही उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है और आपकी समझदारी के लिए अपेक्षा करता है। ये सूचना स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। चलिए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
5: सुहाना
3: खाना सफर खाना सफर
4: रेडियो मनोरंजन की लहरों पर जी हां 12 बजे से 2 बजे का सुहाना सफर का ये लाजवाब सफर आज हमने सजाया है जी हां प्राण साहब की फिल्मों के गीतों के साथ

और बहुत ही मजेदार बहुत ही लाजवाब सा ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है ये जानकर हमें बेहद खुशी हो रही है। बेशक आपके मैसेजेस हमेशा हमको मिलते रहे हैं 5250-6200 पर और 4028070 पर आपके फ़ोन कॉल्स हमेशा आते रहे हैं। तो जारी रखिए आपके फ़ोन कॉल्स, जारी रखिए आपके मैसेजेस। वैसे यहाँ पर हम ज़रूर नाम जोड़ना चाहेंगे अभी थोड़ी ही देर में इस गीत के बाद। और आज का ये जो अगला गाना है फिल्म जंगल में मंगल से लिया हुआ गीत, और ये एक बहुत ही रोमांटिक मूवी रही और इस फिल्म में नजर आए थे प्राण साहब एक नहीं पर दो दो यानी डबल रोल में नजर आए थे। 1972 की ये फिल्म और इस फिल्म में किरण कुमार, रीना रॉय और साथ नजर आए थे प्राण साहब। तो चलिए इसी फिल्म का एक लाजवाब सा गाना आपको सुनाते हैं किशोर कुमार साहब की आवाज में। अगर आपने इस गीत को वीडियो में या फिल्म में देखा होगा तो आपने देखा होगा वो नशीली आंखें प्राण साहब की, जिस तरह से आंखों ही आंखों में इशारे होते हैं। आए हाय

और पश्चिम का ये गाना महेंद्र कपूर साहब की आवाज में और इस फिल्म में मनोज कुमार साहब भी नजर आए थे। लाजवाब उनका परफॉर्मेंस, लाजवाब ये गाना बहुत ही मशहूर सा गाना और बिल्कुल हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने इस गीत की फरमाइश की। थैंक यू सो मच इस सिलेक्शन के लिए और बिल्कुल सुहाना सफर का ये सफर जारी रखते हैं। उमा जी क्योपिप से जुड़ चुकी हैं, विद्या जी इस वक्त लाहौजा से साथ दे रही हैं और हरीश भैया हमारे साथ बुब्बासन से जुड़े हुए हैं बहुत ही प्यार से। अनीता जी भी साथ दे रही हैं फ्लिक ऑफ फ्लाक से। सुदेवी जी हमारा साथ दे रही हैं मौका से। माधुरी जी का भी मैसेज आ पहुँचा है, बहुत बहुत ही प्यार आपको भी। बाबू अनतवा जी बिल्कुल आप तो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो इस शो को कभी मिस नहीं करते। भाई यही तो प्यार है आपका, यही तो हमें हिम्मत देता है कि आपके लिए लाजवाब से लाजवाब प्रोग्राम्स कैसे हम सजाएं। इसके लिए हमें भी थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है। यहाँ पर फोन जुस्साक से उमा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, काटोबोन से केश भी हमारा साथ दे रही हैं और जीवंती जी भी बिलविद्या से जुड़ी हुई हैं। कहती है अगर हो सके तो जंजीर का गाना। अरे भैया ये गाना तो इनका, भाई कहते हैं ना कि प्राण साहब का, तो ये आइकॉनिक सॉन्ग था और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब नज़र आए थे मन्ना डे के साथ। मन्ना डे की आवाज़ में ये गाना है, अभी थोड़ी ही देर में हम ये बजाएंगे। बिल्कुल जीवंती जी आपके लिए, आपके सभी दोस्तों के लिए और सभी लक्ष्मण परिवार के लिए ये गाना हम ज़रूर डेडिकेट करेंगे। यही गाना मांगा था सोहन साहब ने L'espérance très bouchée से। ज़रूर सोहन जी हमारा बस हमारा साथ दीजिएगा डेफिनेटली। इस गाने को हम अभी थोड़ी ही देर में चलाने जा रहे हैं। और वैसे किसी ने हमसे कहा कि जिस देश में गंगा बहती है का एक और बहुत ही लाजवाब सा गाना है जहां पर प्राण साहब ढोल बजाते हैं और राज कपूर साहब डफली पर उनका साथ देते हैं और क्या मज़ेदार सा ये गाना। तो चलिए अगर आपने इस गीत का जिक्र किया ही है तो ज़रूर इस गीत के साथ आपकी यादों को और भी ताज़ा करते हैं।

0: ये था फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। जी हाँ, मुकेश साहब, लता मंगेशकर और साथ दिया था मन्ना डे साहब ने। गीता दत्त भी इस गीत में शामिल हुई थी, साथ नजर आए थे। साथ इस गीत में आवाज थी महेंद्र कपूर साहब की भी। और चलिए इसी के साथ, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने जंजीर फिल्म के गीत की फरमाइश की है, तो जरूर आपके नाम हम करेंगे ये अगला गीत।
1: RL Free Radio Radio Radio
0: चलिए इसी गीत के साथ हम जरूर नाम जोड़ना चाहेंगे सीता जी का, जो इस वक्त हमारे साथ पॉइंट लास्का से भी जुड़ चुकी हैं और बेहद गानों को पसंद कर रही हैं।

आज का जो कार्यक्रम है वो हम बिल्कुल एक श्रद्धांजलि के तौर पर गाने चला रहे हैं. प्राण साहब, एक लेजेंडरी एक्टर, और बिल्कुल 1968 के दौर में मूवी आई थी ब्रह्मचारी, और इस फिल्म में भी प्राण साहब की जो भूमिका रही वो थी एक बहुत ही अमीर जादे की, रवि खन्ना. जी हाँ, उनका नाम था इस फिल्म में. हालांकि इस फिल्म में शमी कपूर साहब भी नजर आए थे और साथ नजर आई थी मुमताज, बहुत ही लाजवाब सी ये फिल्म. बिल्कुल इस फिल्म में हालांकि मुमताज जी का जो गाना था वो एक डिस्को पर, मतलब एक गाना था बहुत ही लाजवाब सा, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, ज्ञान बिहारी जी, जो अपनी प्यारी पत्नी सबिता और उनकी साली साहिबा है गीता, साथ है संजीव, सुनील, रानी, शीतल और सभी रेडियो मनोरंजन के श्रोताओं के लिए उन्होंने एक गीत की फरमाइश की है जो ब्रह्मचारी मूवी से लिया गया था. जी हाँ, इस फिल्म में साथ नजर आई थी शमी कपूर के साथ थी राजश्री. बहुत ही लाजवाब मूवी रही और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये जैसे एक अनाथालय में ब्रह्मचारी जो थे, मतलब जो हमारे शमी साहब थे, उन्होंने बच्चों को पाला पोसा और बहुत ही प्यार से इस फिल्म को सजाया था, और बहुत ही मज़ेदार सा ये किरदार रहा प्राण साहब का, इसमें एकदम हटकर उनका रोल रहा. तो इस फिल्म के इस अगले गीत को हम आज के इस सेगमेंट में शामिल करते हैं. आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की. वैसे मोहम्मद रफ़ी साहब और ये आवाज़ शमी साहब पर, आय हाय क्या सूट करती है. जैसे मुकेश की आवाज़ सूट करती है राज कपूर साहब को.

चलिए सुहाना सफर, ये सफर जारी है. और वैसे आपको ये भी बताते चले, एक फिल्म आई थी राम और श्याम, 1967 के दौर की मूवी रही. और इस फिल्म में प्राण साहब ने एक आइकॉनिक विलन की भूमिका यानी गजेंद्र का रोल निभाया था. और बिल्कुल एक क्रूर दुर्व्यवहार करने वाले जालिम जीजा का रोल उन्होंने इस फिल्म में निभाया था, जहां पर डबल रोल में नजर आए थे दिलीप कुमार साहब. और जिस पर वे ये क्रूरता बरसा रहे थे वो बहुत ही शांत स्वभाव वाले राम पर उनको दवाई दे देकर उनके साथ इतनी बुरी बदसलूकी उन्होंने की थी ताकि वो उसकी जायदाद को हड़प सके. शायद आपको याद आ गया होगा वो सीन. और फिर बाजी पलटती है और श्याम की एंट्री होती है, जहां पर श्याम ने वही दुर्व्यवहार किया गजेंद्र के साथ और मजा चखाया उनकी ही हरकतों का. तो चलिए इसी फिल्म का ये अगला गाना आपके नाम करते हैं मोहम्मद रफी साहब के आवाज में रखा हुआ.

वैसे तो बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं, ऐसे गाने हैं जिनमें प्राण साहब नज़र आए हैं और प्राण साहब की जितनी भी भूमिकाएं रही हैं बहुत ही लाजवाब। और यहाँ पर हमारे साथ हमारी प्यारी सी मराठी अनाउंसर सीताबाई धर्मिया भी जुड़ चुकी हैं, जो गानों को बेहद बेहद पसंद कर रही हैं और उन्होंने भी गानों को बेहद एंजॉय किया है। तो चलिए इसी के साथ एक और लाजवाब सा गाना हम अभी थोड़ी ही देर में उनके नाम करेंगे। और बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर सरिता जी काठोबोन से जुड़ चुकी है, साथ जुड़ी हैं नानी, मामा सुन, मामा इंदिरा, मामा कविता, सामा और वीरामा परिवार के साथ। तो चलिए बहुत बहुत प्यार आपको भी हम कहेंगे। और बेशक प्राण साहब बिल्कुल एक फिल्म में नजर आए थे और फिल्म थी विक्टोरिया नंबर 203। इस फिल्म में प्राण की भूमिका रही राणा के रोल में और क्या चोर की भूमिका निभाई थी इस फिल्म में, 1972 के दौर की ये मूवी। और वैसे उनका नाम था राणा और उनके जो पार्टनर इन क्राइम थे अशोक कुमार साहब जिनका नाम था राजा, और दोनों ने क्या कॉमिक टाइमिंग अपनाई थी, क्या केमिस्ट्री रही, लाजवाब सा ये गाना भी हमें कहीं ना कहीं हंसाता ही है। तो चलिए इस गीत को आपके नाम करते हैं किशोर कुमार और महेंद्र कपूर साहब की आवाज में रखा हुआ ये गीत।

listening to RM3 Radio Manoranjan. चलिए इसी के साथ जाने का समय हो चला है और आखिरी गाना रहेगा 1970s के दौर की फिल्म जॉनी मेरा नाम प्राण. द लेजेंडरी एक्टर को आज हमने दी एक श्रद्धांजलि उन्हीं के फिल्मों के गीतों के साथ. और प्राण साहब जॉनी मेरा नाम में नजर आए थे मोहन और मोती, एक ही इंसान पर दो रोल. और चलिए इसी के साथ इस फिल्म में उन्होंने भूमिका निभाई थी सोहन के भैया की. सोहन थे देवानंद साहब. और फिलहाल दोनों भाइयों की ये कहानी रही जॉनी मेरा नाम. तो चलिए इसी फिल्म के इस गीत के साथ

आज के इस कार्यक्रम को यहीं फुल स्टॉप लगाएंगे। आशा करते हैं ये सेगमेंट स्पेशल रहा होगा, लाजवाब रहा होगा और आपको हमारे गानों का सिलेक्शन पसंद आया होगा। वैसे आप लोगों का भी साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और आज का दिन आपके लिए बिल्कुल इन गीतों की रंगीनियत की तरह रहे। तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, अभी थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम धरोहर के सरोवर और ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा अरविंद बिसेसर द्वारा। और इसी के साथ चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: घड़ी मिला लीजिए, समय दोपहर की ठीक 2 बजे है और इसी के साथ आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।
2: सभी सुनने वालों को नमस्कार। जून में मॉरिशस में 89,989 पर्यटक पहुंचे, जो जून 2025 की तुलना में 8% से अधिक की गिरावट है। हालांकि जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया ने कहा कि स्थिति चिंताजनक नहीं है, क्योंकि जनवरी से जून 2026 के दौरान कुल पर्यटक आगमन में 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। उनके अनुसार विश्व कप और मध्य पूर्व के संघर्ष ने जून के आंकड़ों को प्रभावित किया, जबकि मॉरिशस की पर्यटन मांग अब भी मजबूत बनी हुई है। उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि इथियोपियन एयरलाइंस के अतिरिक्त उड़ानों का समझौता सितंबर के बाद भी जारी रहेगा। फ्रांस की फुटबॉल टीम 14 जुलाई अपने राष्ट्रीय दिवस पर स्पेन से 2-0 की हार के साथ विश्व कप से बाहर हो गई। वहीं मॉरिशस में बास्टिल डे के अवसर पर फ्रांसीसी राजदूत फ्रेडेरिक बोंटन ने फ्लोरियाल स्थित अपने आवास पर स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हुए। राजदूत ने दोनों देशों के मजबूत संबंधों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री को 10 और 11 नवंबर को होने वाले पेरिस पीस फोरम में आमंत्रित किया। अटलांटा में अर्जेंटीना का सामना आखिरकार विश्व कप में इंग्लैंड से होगा। एक तरफ मौजूदा विश्व चैंपियन है तो दूसरी तरफ टोमास चुशेल के नेतृत्व वाली वो टीम है जो लगभग 60 वर्षों के इंतजार को खत्म करने का सपना देख रही है। फाइनल में जगह बनाने की जंग जारी है और इतिहास शायद एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। और विदेश में कोंगो में इबोला के पुष्ट मामलों की संख्या 2011 तक पहुंच गई है, जिसमें 754 मौतें शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये रिकॉर्ड पर अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला प्रकोप है। कोंगो के स्वास्थ्य मंत्रालय

0: के आंकड़ों के अनुसार कुल 753 लोग अभी भी आइसोलेशन या अस्पतालों में हैं, जबकि अब तक 366 लोग ठीक हो चुके हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: घड़ी मिला लीजिए, समय दोपहर के ठीक 2:03 हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं ये विशेष सूचना। आम जनता को सूचित किया जाता है कि सीईबी ने बिजली सप्लाई की कटौती की नियोजित निवारक रखरखाव कार्य के संदर्भ में सर अनिरुद्ध जागनाथ यानी साज हॉस्पिटल फ्लैक में गुरुवार 16 जुलाई को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान डीजल जनरेटर से सीमित बिजली ही मिल पाएगी, इसीलिए अस्पताल की सामान्य सेवाओं पर असर पड़ेगा। नतीजतन इस दौरान रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी विभागों की सेवाएं केवल इमरजेंसी मामलों के लिए ही उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है और आपकी समझदारी की अपेक्षा रखता है। ये विज्ञप्ति स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आगे का कार्यक्रम धरोहर के सरोवर प्रस्तुत करता है डॉक्टर अरविंद बिसेसर।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
6: RM3 Radio.
7: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से, तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
8: नमस्ते, धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में तो लोग के स्वागत करत है जा हमें अरविंद और उस साथ में संजू हमी के साथ दुवत हुआ नाच के कार्यक्रम तैयार करे में। आज के कार्यक्रम में तो लोग के सबसे पहले वो सूचना दुवत है जा कि महात्मा गांधी संस्थान और एमबीसी साथ साथ में आज तनिकुन भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन पर एगो जानकारी दो अब जा कि भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन हाल ही में बैठका जो नेका लोग बैठका में भोजपुरी के पढ़ाई करे लन जा ओ लोग खातिर एगो कविता वाचन और कहानी पठन प्रतियोगिता आयोजित करल गल। तो शनिवार के 10 बजे से लेकर 12 बजे ले एकर पुरस्कार वितरण समारोह हुई और एकर में उस सब लड़का लोग के सम्मानित करल जाए। पहल का हला भोजपुरी के ऐसे लोग प्रतियोगिता आयोजित करल बाल लड़का लोग खातिर, काहे कि अभी जब बैठका में भोजपुरी पढ़ावल जात बा तो चाहे ना प्रोत्साहित करे के लड़का लोग के और अध्यापक लोग के, तो एकर में लगभग 50 गो ऐसा आवेदन आ बा जेकर में लड़का लोग कविता पढ़ले हुन जा, जेकर में कहानी पढ़ले हुन जा। हम सोचा था आज ई कार्यक्रम में एक दुगो तो लोग सुनाई थी, पर कहे कि अभी एक पुरस्कार वितरण हो शनिवार के, तो अबरी बुधवार के तो लोग बताब जा, पर बधाई दो अब जा उस सब अध्यापक लोग के जिन अपन लड़का लोग के तैयार कर लन जा, और बधाई दो अब जा उस सब लड़का लोग के भी छोटा छोटा लड़का लोग जो लोग भोजपुरी तो बोले लन जा नहीं बहुत, पर हिम्मत कर लन जा भोजपुरी बोलन जा और सुन के अंक अच्छा लगल, कहे कि गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से इ लड़का लोग के भोजपुरी बोले के मौका मिलत बा। तो हम संजू से बात करते थे कि काहे नहीं हम यो ई मंच खोली ल जा, ई जो

0: ना हमी के कार्यक्रम है धरोहर के सरोवर मंच खुलब जा कि आप जे कोनो कहानी जाने ला कोनो किस्सा जाने ला कोनो कविता जाने ला या फिर अपन लैका लोग के सब सिखा के बोलिया हमनी के हमने जा परी महात्मा गांधी संस्थान में सकब जा उलो के रिकॉर्ड करके रेडियो कार्यक्रम में उलो के बताई तो इसने लैका लोग के जब मंच देव अब जा तो सब कार्यक्रम चली तो न्योता देर होते जा तू लोग के हम संगे संपर्क करिए कोनो कहानी कोनो किस्सा कोनो लुकोक्ति कुछ भी हो हमनी ई कार्यक्रम के जरिए जनता के सुनाब जा हमनी के ई धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में तो इसने आज के कार्यक्रम में हमनी एक दुगो कहानी सुनब जा एक दो कविता सुनब जा साथ साथ में अभी शादी के मौसम बा तो हमी के सहयोगी जय गणेश दाव सिंह तैयार कर ले होवन गीत तिलक गीत शादी गीत सब तैयार करके रख ले होवन तो उस सब भी हम लोग के सुनाब जा तो भूलिए नहीं आज के हम के कार्यक्रम ई जुन है धरोहर के सरोवर ई महात्मा गांधी संस्थान और MBC के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत करल जात बा तरीके राजा संजू हमें खातिर कौन गीत तैयार करके रख ले हुआ एगो गीत सुनब जाए कर बात कार्यक्रम के आगे बढ़ा जा
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: सनी और मनी। एगो हंस रहल, ओकर दूगो बच्चा रहल, एगो करिया और एगो उजर। तीनों एगो तालाब किनारे रहत रलन सन। करियक्का बच्चा के नाम रहल सनी, उजरका के नाम रहल मनी। मनी नीमन रहल, वो अपन माँ के बात सुने। सनी झीट रहल, वो अपन माँ के बात नहीं सुने। दूर तालाब में कमल के सुंदर सुंदर फूल खिलर रहल, कोनो लाल तो कोनो नीला। तीनों हंस उ कमल के देख के बहुत खुशी होत रहलन सा। मनी और सनी कमल के फूल लेवे चाहत रहलन सा। एक दिन मनी बोला सनी से,
1: ए सनी, हम ललका कमल ले।
0: तब सनी जवाब दिलक,
2: नीलका कमल हमर है।
0: दोनों कमल तुरे जालन सा। माँ उलो के देख के रोके चाहेला। माँ बोलक,
3: हे लड़का लोग, वो कमल के भीरी नहीं जाया सा, हुआ जान के खतरा बा।
0: दोनों लड़का माँ के बात सुन ले लन सा। वो लोग कुआ नहीं गए लन सा। बाकी सनी के मन नहीं मन लग। दूसर दिन सनी लुकैते लुकैते कमल के भीतर गल। एगो बहेलिया तो इही ताक में रहल। ओ छत से सनी के गर्दन पकड़ ले। सनी तो लगल छटपटाई। बहेलिया खुशी के मारे लगल हसे। सनी के जान छुटल जात रहल। मनी सनी के आवाज सुनके माँ के बुलाई लग। दोनों कमल के भीरी हाली से गैलन सा। उ लोग मिलके अपन चोंच से बहेलिया के लगलन से काटे। बहेलिया के लगल घाव उ लगल चिलाई। बहेलिया सनी के गर्दन छोड़ देलक। उ लगल भागे। तीनों हंस खुशी खुशी अपन घर लौट जालन सा। ई घटना के बाद सनी भी अपन माँ के बात सुने लगल।

0: इही खातिर बोलल जाला जाला बड़ा लोग के बाद हमेशा चाहे सुने सुने सुने सुने सुने
1: RM3 Radio.

सनी और मनी ये वो कहानी है, पंचतंत्र से ही कहानी है। और ये कहानी में बहुत सीख मिलेला कि जब बड़ा आदमी लोग कोनो चीज बोलेला तो ढीत नहीं जहाँ करेगे, चालक लोग की बात सुने के कहे कि जब बात नहीं सुनब तो आगे जाके सब पछताई। तो माँ बाप के अध्यापक लोग के बात चाहेला सुने के ई कहानी में ई सीख देवल गल बा। तो ई कहानी हमारे देखे में ग्रेड वन नहीं तो ग्रेड टू के जो पुस्तक बनल बा भोजपुरी के ओकर में ई बा सनी और मनी। चला कार्यक्रम के आगे बढ़ाई ला जा एगो गीत संगीत।

0: मरीज के इलाज करी, ई त डॉक्टर बनी, ई हवाई जहाज चलाई, ई त पायलट बनी, ई कविता लिखी, ई त कवि बनी, ई सब्जी रोपी, ई त खेतीहर बनी।
1: ताकी ताकी पूरिया।

0: रेडियो
1: तो कार्यक्रम खासतौर पर देखला लैका लोक पर आधारित गीत लैका लोक पर आधारित खेल ओका बोका सुनला तो ऐसा ढेर खेल रहा नहीं पारंपरिक खेल जो एक समय लैका लोग खेलत हल संजू यादव ई सब कोनो खेल जो खेल हुआ लमागेल संजू बथवन गुली डंडा जैसे खेल हुआ हाँ वो जान थो कुछ से बनाता है गुड़ी डंडा कुछ से कौन लकड़ी वो एगो सब लकड़ी से नहीं बने वो खास लकड़ी से बने कुछ बोला जाओ का जिकर से पहले कांवर बनाओ थे लंजा लालवेस बंबू से नहीं बंबू से नहीं हमी के जो श्रोता लोग भी उन लोग के याद हुई हमको घाँची लौकत हमी के नदी डम्बो रहा घाँची जोन में जोन होकर जोन लकड़ी रहल ओकरा छिलल जात रहल ऐसे छिलल जात रहल तो उ हलुक है उतना भारी नहीं है तो ओकर ओकर से बनत रहल कहे कि हौ जोन मरबत दूर सकी जाए हौ निमन उ खेल रहल और रहल कानेट के खेल कानेट फिर लुकाई के जाके लुका जा कुछ बन जाओगे कुकलुके कुकासिये हाँ अगर याद बा कुकासिये जैसे बोले जा जैसे लुका छुपी ये धला कोई से उधला उगाद रही उधला उजाए खोजे अब तो गिनी धला 20-25 ले गिनी जब 20-25 ले सब के छान जाके लुका जाएगी और जी पहल का हला पकड़ाए तो सबकी खोज के आने तब जो पहल का पकड़ा उ गौद रही जो ले जा तो कोई जाना कुछ करे ऐसे कैसे वो गिनती करत बा तो वो अपन घरे चल जाए अपन घरे चल जाए चा पी ही ये खोजते बा बेचारा खोजते बा कबू नहीं मिली संजू बता के इखला इसने वो कुछ कर रहा पेड़ को ऊपर चढ़ कर रहा बेचारा नीचे खोजते बा ऊपर नहीं देखला ऊपर पेड़ के ऊपर रहा तो ये सब खेल रहल नहीं बहुत ऐसा निमन निमन खेल जो हमी के भोजपुरी संस्कृति में हमी के लैका लोग खेलत रहन जा हमियो के अपन बचपन याद चलाल एगो पुस्तक महात्मा गांधी संस्थान में ट्रेडिशनल सिंगिंग गेम्स यानी वो सब खेल जो गागा के लैका लोग खेलत रहन जा ओकर में है ये एगो ओका बुका रहल घुर घुर रानी इतना इतना पानी ये कबर वो गीत रही खोजब सको ना दिन घुर घुर रानी रानी हमर रानी घुर घुर रानी इतना इतना इतना पानी तो वो खेल में जब बोली इतना पानी इतना हजाले पानी हो जाले पानी तो जब बोली मान ला कि घुटना ले पानी पेट ले पानी गला ले पानी तब अंत में बोली डूब गए रानी तो खेल के माध्यम से लैका लोग के बताओ समझा कि हम के शरीर के अलग अलग अंग जैसे गला कोची है पेट कोची है ठेवना कोची है हाथ कोची है आंख कोची है तो बॉडी पार्ट जैसे वो सब सिखावत समझा चलो एगो गीत सुनब जा भी
0: RM3 रेडियो

0: खेल गान खेल गीत गा गा के हमनी के पूर्वज लोग लैका लोग के पढ़ावत रलन जा ई भी लैका लोग के विकास खातिर एगो माध्यम रहल और ई माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है।
1: उस समय में वही गीतवा हमने सुन के बड़ा लोग से हुए हमनी के खेले के एगो अथी रहल माध्यम रहल हमनी के खेले के सुने के वो गीत गा के लम्बा रही गीतवा बाकी हमने सुन के सीख ले इमे गीत रहेला अथी राजा रानी के खिस्सा रहेला जैसे वो घेरा डाल के खेले के उमें कोई के पकड़े के उमें जीत रहे बतावल जाला कि कुमाजा ओकर माध्यम से वो गीतवो सीखे और ओकर से वो सीखे कि ओकर जीत कैसे हुई कैसे हर एक उपाय एक कुछ जाए कि कैसे उमें से निकल के उचल जाए वो कैसे बच जाए तो उमें हो जैसे घुर घुर रानी रहल उमें सीखा तली सा कि कैसे रानी के घेर ले ले रहल दुश्मन लोग कैसे ओके खेल के कैसे ओके बचा के ओके लेके चल जा तली सा तो कुमार जी इसे बहुत और बहुत खुशी रहे लड़का लोग है गीत।

यही एगो गीत रहल कि कुमार जल लैका लोग खेली अच्छा खूब मिल के रहतलन सा खूब हंसी ठठा करतलन सा खूब अच्छा से लोग छोटा लैका बड़ा लैका सब मिल के खिलतलन सा।

0: RM3 Radio.
1: तेलुगु पारंपरिक भोजपुरी लोकगीत शादी पर बरियार हो जनकपुर के गलिया में भीड़ बरियार हो पर छली सासू अम्मा ई गौरव झा संचिता बनर्जी देवरानी जेठानी ये सब गेले हुआ भोजपुरी विवाह गीत 2024 के हैं। तो जैसे बोलनी जा शुरू में अभी शादी के समय बा तो अभी शनिवार के रविवार के संजू बोला थोड़ा निम्ने से कच्चू पूरी मिली खाई के नहीं तो संजू अबरियाला जब जेबे तो निमन से दिखे जब इमली घोटाए हो जब सब जन विधि होला ठीक बा ना निमन से दिखे और हम आके बोलिए संजू जालन निमन से दिखे कैमरे के नजर से देखे लन तो हमें क्या बोले लन के ऐसे होला ऐसे होला ऐसे होला ऐसे होला तो हमें सीखी ला जा हम के सहयोगी जय गणेश दाव सिंह एक दुगो ब्याह गीत विवाह गीत पर कुछ बोलियन और वो गीत सुनियन तो चला उनका सुन लिया।
2: आज मॉरिशस के विवाह गीत पर बात करब। मॉरिशस के विवाह गीत हियाओं के विवाह संबंधी विधिवन पर आधारित बातें। विवाह के गीत वर रक्षा से लेकर के चौथारी तक के विधि व्यवहार से संबंधित बातें। अलग अलग कर्मों में अलग अलग शैली के गीत प्रचलित बातें। इस प्रकार मॉरिशस में तिलक चढ़ाने के दिन से लेकर के मारो मंडप के गीत हरीश हरदी माटी को राय उपटन सोहाग कन्यादान भवर घुमाय लावा मुराय सिंदूर बहुराय कोहबर विदाई आदि विविध गीत प्रचलित बातें। विवाह संस्कार की ऋतु आने पर विवाह के कई दिन पूर्व ही मातृशक्ति विवाह के गीत गाने आरंभ शुरू कर देवेलन। गांव में ये प्रथा बाटे कि जिनकर घर में विवाह बाटे ओ घर की तथा ओ गांव की नारी शक्ति एक जगह एकत्री होकर के विवाह गीत गायन जाओ। वर के यहाँ वर पक्ष के गीत गावल जाए। ये प्रकार तिलक बेटा ब्याह परछावन द्वार पूजा आदि वर पक्ष वालों के यहाँ गाने जाने जितने भी गीत बाटे सोहाग कन्यादान बेटी ब्याह विदाई आदि कन्या पक्ष के गीत के यहाँ गावल जाए। विवाह के गीतवन में हिंदू समाज के सजीव चित्रण मिलेला। ग्रामीण लोगन के जीवन उनकर आचार विचार रहन सहन खान पान वेशभूषा मिलने जुलने उठने बैठने सेवा सत्कार आदि बटवन के वर्णन होवेला। विवाह गीत वर्णनात्मक होवेला तथा इनकर में विवाह संबंधी सभी विधिवन के वर्णन होवेला। लौकिक विधिवन में जैसे एगो चित्र खींचल गेल बा उदाहरण

मोशेस के विवाह गीत हियाओं के विवाह संबंधी विधिवन पर आधारित बातें, विवाह के गीत वर रक्षा से लेकर के चौथारी तक के विधि व्यवहार से संबंधित बातें, अलग अलग कर्मों में अलग अलग शैली के गीत प्रचलित बातें। इस प्रकार मोशेस में तिलक चढ़ाने के दिन से लेकर के मारो मंडप के गीत, हरीश हरदी, माटी को राय, उपटन सोहाग, कन्यादान, भवर घुमाय, लावा मुराय, सिंदूर बहुराय, कोहबर विदाई आदि विविध गीत प्रचलित बातें।

विवाह संस्कार की ऋतु आने पर विवाह के कई दिन पूर्व ही मातृशक्ति विवाह के गीत गाने आरंभ शुरू कर देवेलन। गांव में ये प्रथा बाटे कि जिनकर घर में विवाह बाटे उ घर की तथा उ गांव की नारी शक्ति एक जगह एकत्री होकर के विवाह गीत गायन जाओ। वर के यहाँ वर पक्ष के गीत गावल जाए। इस प्रकार तिलक, बेटा ब्याह, परछावन, द्वार पूजा आदि वर पक्ष वालों के यहाँ गाने जाने जितने भी गीत बाटी सोहाग, कन्यादान, बेटी ब्याह, विदाई आदि कन्या पक्ष के गीत के यहाँ गावल जाए। विवाह के गीतवन में हिंदू समाज के सजीव चित्रण मिलेला। ग्रामीण लोगन के जीवन, उनकर आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मिलने जुलने, उठने बैठने, सेवा सत्कार आदि बटवन के वर्णन होवेला। विवाह गीत वर्णनात्मक होवेला तथा इनकर में विवाह संबंधी सभी विधिवन के वर्णन होवेला। लौकिक विधिवन में जैसे एगो चित्र खींचल गेल बा, उदाहरण क्विरिन जे हरदी उपराजेला दादा बेसाहेला हो, दादा जे हरदी चढ़ावेला नातिन के सुहावेला हो।

अतः हल्दी विधि के साथ साथ उस समाज के एगो पहलू पर काफी प्रकाश पड़ेला और उसने झूमर में लोकजन के वस्त्राभूषण श्रृंगार गहने जेवरात खान पान मनोरंजन प्रशासन आदि बटवन के समावेश होवेला। भोजपुरी विवाह गीत को मात्र सुनला से ही विवाह संबंधी विधि विधान के समावेश सुंदर दृश्य आँखों में घूम आवेला। उदाहरण के तौर पर द्वार पूजा के ई दृश्य देख कन्या के घरवर आल हवन द्वार पर उ खड़ा हवन सास सोने की थाली लेकर के कपूर जला करके वर के आरती उतारत हवन नारी शक्ति मंगलाचरण गावत हवन जा गावहु मंगल चार जी वर ब्याह न्याय।

0: RM3 Radio.
1: शादी के गीत ई सब गीत के फिर से बना के महात्मा गांधी संस्थान में एक रिकॉर्ड कर रहा गल ई सब गीत शादी के दिन हल्दी के दिन परछावन गीत तिलक गीत हल्दी गीत ई सब बाइकर में बड़ी निमन से प्रस्तुत कले हुन। तो हम ये कार्यक्रम भेजा पर समाप्त होता पर जाए से पहले शादी के बात होता तो लोग के बोले रजा कि जितना कोई जितना घर में शादी होत बा सब कोई की बधाई शुभकामनाएं और इसने निमन से विधि विधान करबा जैसे हमी के पुरखन लोग बतैले हुआ जा हमी के धरोहर के सरोवर में हमने सीखे आ ले जा कि सब विधि निमन से पूरा करब सब कुछ मंगल हुई इसने सोच के हमने आगे जाब जा। संजू के बहुत बहुत धन्यवाद के कार्यक्रम के प्रस्तुत करी में हमने के सहयोग दिलन साथ साथ में उनका बोलब कि अभी शादी में जाए तो हमें आके बोले के कोची नवा दिख ले बा ताकि हमने भी सकर चतुर के बोले अबरी सप्ताह कौन ची नवा सीखनी जा इस सब में। चलो नमस्ते।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं विधिमा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। इस सरकार ने वो सब कुछ नष्ट कर दिया है जो हमने मिलकर बनाया था, ये शब्द जोली जोंगा ने आज सुबह एमएसएम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहे। ये प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा कल राष्ट्रसभा में पेंशन सुधार के बचाव में दिए गए बयान के जवाब में आई है। विपक्ष नेता द्वारा पूछे गए पीएनक्यू का उत्तर देते हुए नवीन राम गुलाम ने स्पष्ट किया कि सरकार इस सुधार पर पीछे नहीं हटेगी। ये निर्णय लगातार प्रतिक्रियाओं को जन्म दे रहा है। आज सुबह सेंट्रल बिल्डिंग में जोली जोंगा ने सरकार पर 2024 के आम चुनावों से पहले किए गए अपने वादों से मुकर जाने का आरोप लगाया। उनके अनुसार चुनावी अभियान के दौरान वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 21,000 रुपये तक करने के वादे किए गए थे। उनका ये भी तर्क है कि जनवरी 2025 में पेश किए गए सरकारी कार्यक्रम में पेंशन सुधार का कोई उल्लेख नहीं था और वे इसे जनता की अपेक्षाओं के विपरीत एक बड़ा बदलाव मानते हैं। विपक्ष नेता ने इसे मॉरिशस के नागरिकों के साथ एक बड़ा विश्वासघात करार दिया है। 48 घंटों से भी कम समय में ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक के तहत पुलिस ने 334 लोगों को गिरफ्तार किया है कल। और इस बुधवार को सुबह 3 बजे से 8 बजे के बीच नॉर्दर्न डिवीजन, मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ और साउदर्न डिवीजन ने पुलिस की विभिन्न इकाइयों के सहयोग से अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस की इन कार्रवाइयों से कई कुख्यात अपराधियों, चोरों और अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार ये पूरी तरह से एक सफल अभियान रहा। सौजन्य जयेश गंगादीन का भविष्य कल तय हो जाएगा। जमानत के लिए उनकी याचिका पर फैसला पोटली जिला अदालत में सुनाया जाएगा। कल मामले की सुनवाई के

0: दौरान बंदरगाह की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात इस पुलिस अधिकारी ने खुद को निर्दोष बताया। उन पर 94.4 मिलियन रुपए मूल्य की ड्रग्स बरामदगी के मामले में न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने का अस्थायी आरोप है। और विदेश में भारत के तमिलनाडु राज्य में जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग के संयंत्र में भट्टी में विस्फोट के बाद आग लग गई, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। धातु रिसाइकलिंग कंपनी ने नुकसान का आकलन करने के लिए प्रभावित अनुभाग में परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। महत कबीर एवेन्यू बनते अवाकुआ में 85 साल के 85 years old के श्री देवव्रत सगन, जो मानान नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले डिसिप्लिन हेडमास्टर थे। उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा सगन के घर महत कबीर एवेन्यू बनते अवाकुआ से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रोमेशन विस आफ्टरनून एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio, TV, NBC Radio, TV, Center, 95.5, North, South, 95.6, East, West, 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: बुधवार 15 जुलाई आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर मैं हूँ रत्ना आ पहुंची हूँ आपका साथ देने के लिए आज के इस कार्यक्रम को लेकर। आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक है इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे जो मनाया जाएगा 24 जुलाई को और इसी पर आधारित आज का ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दाऊशंकर पोंगे बसावन जी, एक बार फिर आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर जी।
1: नमस्ते।
0: और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे पर, जो बहुत ही लाजवाब सा टॉपिक है और इस दिलचस्प टॉपिक में खुद की केयर कैसे करनी है इस पर हम बात को जारी रखेंगे। तो आइए आज के इस पहले सवाल के साथ जुड़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्व देखभाल दिवस क्यों मनाया जाता है।
1: सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये लोगों को याद दिलाता है कि जब हम दिखाते हैं हमारे सेहत के यहाँ हमको का ध्यान करते हैं, वो सिर्फ डॉक्टर को दिखाना के यहाँ नहीं है, कि जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी जहाँ डॉक्टर देखते हैं कि जिम्मेदारी नहीं है वो, बल्कि एक व्यक्ति का अपनी जिम्मेदारी भी है
0: खुद के प्रति।
1: अगर हम देखते हैं आज के फास्ट पेस लाइफ में हम अपनी जॉब, बिजनेस, फैमिली और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी रहते हैं, तो हम अपने हेल्थ को छोड़ देते हैं। हम उसका
0: ध्यान उतना
1: प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो जब हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के पीछे जाते हैं, भागते हैं।
0: बिल्कुल।
1: पर ये ध्यान रखना, हमारे सेल्फ केयर जो बोलते हैं, ये डॉक्टर के लिए या हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है, ये बल्कि हर खुद का जिम्मेदार है। इसीलिए सेल्फ केयर डे हमें ये मैसेज देता है कि हेल्थ को प्रायोरिटी
0: देना,
1: बनाइए, हेल्दी खाना खाइए, एक्टिव रहिए, अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस को काबू में रखिए, जरूरत पे हेल्थ चेकअप, रेगुलर हेल्थ चेकअप पर
0: करना
1: भी
0: बहुत जरूरी है,
1: जाइए।
0: तो डॉक्टर जी, ये जो 24th of July है, ये सेल्फ डे के लिए घोषित किया गया है, तो इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे आजकल तो सभी लोग, ज्यादातर हम ये नहीं कहते कि कोई हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देता, लेकिन बहुत उतना ज़्यादा हम दे नहीं पाते, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा एंगेज रहना पड़ता है कामों में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
1: इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत सी मैसेज है। जैसे 24/7 का मतलब 24 जुलाई, ओके, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 24/7। तो कुछ लोग सोचते हैं कि संडे को ये दिन है व्यायाम करने के लिए या कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, तो ये सेल्फ केयर डे है, और मंडे टू
0: सैटरडे तक काम करते रहो, मंडे टू फ्राइडे काम करो, सैटरडे पार्टी करो और संडे फिर थोड़ा व्यायाम करो, ओके।
1: तो ये लोग सोचते हैं कि ये संडे, पर ये नहीं है, ऐसे नहीं है, क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज है जो सिर्फ एक दिन का इम्पोर्टेंस नहीं है, वो 24/7 होना चाहिए। तो इसीलिए 24

0: जुलाई को ये
1: दिन मनाया
0: जाता है।
1: ओके, यानी सेल्फ केयर का मतलब जैसे आपने कहा कि स्वस्थ रहना, हेल्दी खाना खाना, पौष्टिक आहार लेना, समय पर नींद लेना और साथ ही साथ व्यायाम करना, ये सारी चीज़ें सेल्फ केयर में आती हैं। और आज के समय में ये हम दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, दूसरी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि हम अपनी सेहत का ध्यान करना भूल जाते हैं। और जैसे आपने शुरू में कहा कि जब हेल्थ बिगड़ती है तब लोग डॉक्टर के पीछे भागते हैं और ये सोचते हैं कि डॉक्टर या हेल्थ केयर सेंटर्स की ये जिम्मेदारी है कि अब वो हमारा हेल्थ ठीक करे। बिल्कुल हेल्थ ठीक करने के लिए डॉक्टर्स हैं, पर हमारा जो हेल्थ खराब होता है उसमें बिल्कुल हमारा ही कहीं ना कहीं हाथ होता है। ये समझना बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे जो 24 जुलाई को मनाया जाएगा, जैसे डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया, 24/7 24 घंटे सातों दिन हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। तो चलिए पहले स्वयं खुद रखें स्वस्थ और फिर तभी दूसरों को हम स्वस्थ रख पाएंगे। डॉक्टर जी, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि हम कभी कभी दूसरों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं पर खुद के स्वास्थ्य को नहीं देखते।
0: मैं कहूँगा इस बात में 100% सच्चाई है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब हम एयरप्लेन में जाते हैं तो वहाँ क्रू मेंबर है ना, तो वो जब हवाई जहाज में बैठते हैं तब क्रू मेंबर आते हैं, हमको बोलते हैं कि ओके अपना ऑक्सीजन मास्क पहले अपना पहनो, फिर दूसरों के मदद कीजिए। तो ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर मैं खुद हेल्दी नहीं रहूँगा तो मैं कैसे, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, कैसे पेशेंट को देखूँगा। अगर एक माँ खुद हेल्दी नहीं है तो वो कैसे बच्चों का ख्याल रखेगी। अगर एक टीचर खुद मेंटली एग्जॉस्टेड है तो वो कैसे स्टूडेंट को इंस्पायर करेगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो इसलिए ख्याल रखना स्वास्थ्य नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है।
1: तो डॉक्टर जी, जब हम खुद के देखभाल की बात करते हैं तो कई बार हम अंदर ही अंदर हमें एक ऐसी गिल्ट फीलिंग आती है कि सेल्फ केयर करना कहीं सेल्फिशनेस तो नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। सेल्फिश होना और सेल्फ केयर करना दो अलग सी बात है। सेल्फिश, एक इंसान सिर्फ अपने पर दिखता है, अपने पर सोचता है, पर सेल्फ केयर करना करने वाले व्यक्ति अपनी हेल्थ का ध्यान इसलिए रखता है ताकि वो अपने फैमिली, अपने काम और समाज के लिए भी बेहतर तरीके से योगदान दे सके। अगर आप हर रोज 20 या 30 मिनट वॉक करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं या अच्छी नींद लेते हैं 7-8 घंटा, तो आप किसी से कुछ छीन रहे हैं? नहीं,
1: बिल्कुल नहीं।
0: तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अपना सेल्फ केयर जो करते हैं वो सेल्फिश हैं। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, सेल्फ केयर इज सेल्फ रिस्पेक्ट।
1: ये बहुत बड़ी बात आपने कही डॉक्टर जी। और जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं और खुद की बात करते हैं तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेल्फ केयर की बात भी आती है। तो डॉक्टर जी, इस पर थोड़ा सा आप खुलासा कर सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक यानी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सेल्फ केयर में क्या अंतर है?
0: बहुत अच्छा सवाल। अक्सर लोग सिर्फ हेल्थ को सिर्फ बॉडी से जोड़ते हैं, लेकिन असल में हेल्थ तीन हिस्सों में बांटते हैं, पहले फिजिकल, दूसरे मेंटल और इमोशनल। ओके, तो हम पहले फिजिकल में कुछ बात करते हैं। तो हेल्दी खाना खाना 7-8 घंटे

0: देखे नींद लेना और हर रोज 20 या 30 मिनट वॉक पर जाना, ये फिजिकल हेल्थ है। जब हम मेंटल हेल्थ पर आते हैं तो इसका मतलब दिमाग को हेल्दी रखना। जैसे देखते हैं आजकल के ज़माने में स्ट्रेस ज़्यादा होता है।
1: बिल्कुल
0: स्ट्रेस जब हम देखते हैं, हम काम पर जाते हैं, यो पहले से ही जल्दी में जाते हैं क्योंकि देर हो गया।
1: बिल्कुल, हड़बड़ी में दिन शुरू होता है।
0: तो ये एक स्ट्रेस शुरू होता है
1: जी
0: इधर शुरू से, दिन के शुरुआत से ही।
1: बिल्कुल
0: फिर जब हम ऑफिस या काम में जाते हैं, जो पियर्स हैं हमारे, तो वो भी थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा। काम में स्ट्रेस है, खाना नहीं खाते टाइम पर, ये भी एक स्ट्रेस हमारी ऑर्गन पर डालते हैं, हमारे
1: बिल्कुल
0: स्टोमक पर डालते हैं। तो ये सब प्रेशर पहले से मेंटल हेल्थ से शुरू होता है।
1: बिल्कुल
0: और हम अगर हम तीसरे को देखते हैं, वो इमोशनल सेल्फ केयर। अगर आप उदास हो, परेशान हो या गुस्से में हो, तो ये सब एक क्लाउड बनाते हैं हमारे जजमेंट पर, हमारे इंटेलेक्ट पर। तो ये क्लाउड जब बनाता है तो हम ठीक से सोच नहीं पाते। तो ये इमोशनल हेल्थ है। तो जब इमोशन, तीनों
1: कनेक्टेड है
0: कनेक्टेड हैं,
1: बिल्कुल
0: जब इमोशन को देखते हैं तो इमोशन वो हमारे इंटेलेक्ट को क्लाउड करते हैं,
1: जी
0: जो हमारे मेंटल हेल्थ है।
1: बिल्कुल सही
0: अगर जब मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो हम फिजिकली कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी नींद नहीं आता है
1: हाँ बिल्कुल
0: या जो मन नहीं करता है कुछ करने का, तो
1: ले
0: ये
1: हमेशा लेजीनेस फील होगा।
0: लेजीनेस फील होता है। तो ये तीनों मिलकर एक इंसान को हेल्दी बनाता है और भी उसको अनहेल्दी भी बना सकता है।
1: बिल्कुल
0: तो ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं को देखने के लिए, जैसे कि इमोशन, एंगर,
1: एंग्जाइटी, ये सारी
0: एंजाइटी,
1: चीजें
0: ये सारी चीज़ें हमको देखना चाहिए कि हम कैसे उसको काबू में रख सकें।
1: बिल्कुल, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर आप मेंटली कहीं पर भी डिस्टर्ब होते हैं तो उसका फिजिकल पर भी असर पड़ता है और डेफिनेटली आपके इमोशंस भी डगमगाते हैं। जो भी आप डिसीजंस लेते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गलत डिसीजन हमेशा हेस्टीली आप लेते हैं, या कई बार हम इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी। और जैसे आजकल साइकोसोमैटिक डिजीज़ का ज़माना है जहाँ पर हमारे मानसिक और भावनात्मक फीलिंग्स या भावनात्मक जो हमारी एस्पेक्ट्स है उस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे पर, जहाँ पर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ये सारी चीज़ें इंसान को किस तरह से हेल्दी भी रखती हैं, अगर ना किया जाए कोई सेल्फ केयर तो किस तरह से नुकसान भी पहुंचाती हैं, इसी पर आज का ये कार्यक्रम आधारित है। हमारे साथ बने रहिए, आज हमारे साथ डॉक्टर बसावन हैं। चलिए इस कार्यक्रम को एक गीत के ब्रेक के साथ जोड़ते हैं, थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं आज की चर्चा कार्यक्रम को लेकर।

0: की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखते हैं। जी हाँ, आज की चर्चा का कार्यक्रम जो आज का ये टॉपिक है इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे 24/7 यानी 24 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन। और बिल्कुल सेहतमंद रहना ये हमारा जन्मसिद्ध हक है, लेकिन आज हम सब कुछ करते हैं हमारे सेहत को छोड़कर, यानी सेहत पर हम अपना फोकस बिल्कुल नहीं रख पाते और जब हेल्थ खराब हो जाती है तब जाकर कहीं दिमाग की घंटी बजती है कि अब टाइम आ गया है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल करना है। पर अगर आप डे वन से यानी पहले से ही अगर आप अपनी सेहत का ख्याल करना करने की आदत रखें तो बीमार पड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी पर छोटी छोटी बातें जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं। और जैसे कि हम जानते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा निवेश करता है, पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमें पूरी तरह से ख्याल रखना है। और आज डॉक्टर बसावन हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर जी से आइए जानते हैं। डॉक्टर जी, अगर हम डेली रूटीन की बात करें, आज हर कोई इंसान भाग दौड़ में लगा हुआ है, रेस में लगा हुआ है, तो 5 मिनट का सेल्फ केयर रूटीन अगर हमें बनाना है जस्ट फॉर 5 मिनट्स, तो कैसे तैयार करें?
1: देखो, लोग अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं कहूँगा कि अगर 5 मिनट हैं तो वही से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट के लिए हम रिलैक्स करते हैं। कैसे रिलैक्स करना है? तो धीरे धीरे सांस अंदर लेना है और उससे धीरे सांस बाहर लेना है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये 1 मिनट से कीजिए। तो ये इससे क्या होता है, इससे बॉडी रिलैक्स हो जाते हैं। फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, जैसे हमारे कंधों के, नेक के, हमारे घुटनों, नीज के,

0: तो थोड़ा सा मूव कीजिए, जैसे आप ऑफिस में जो जो भी ऑफिस में काम करते हैं वो ज़्यादातर बैठे ही रहते हैं
1: जी,
0: तो क्या करना चाहिए, ये थोड़ा स्ट्रेचिंग एक एक घंटे के बाद आपने जो भी है कुर्सी पर बैठा तो कुर्सी से
1: उठिए
0: थोड़ा मूव कीजिए। उसके बाद वाटर पानी, हम जब देखते हैं पेशेंट को तो ये होता है कि हर कोई कम पानी पीते हैं आजकल के ज़माने में,
1: भूल जाते हैं।
0: तो ये एक हमको सेल्फ केयर में एक ये 5 मिनट में जो भी थोड़ा मूव कीजिए, पहले से अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं, फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग, फिर एक ग्लास और एक पानी, और फिर जब हम देखते हैं वो मोबाइल हैं, सोशल मीडिया या फेसबुक या स्क्रोलिंग करते हैं, 5 मिनट मिला हमको, 5 मिनट मिला ये रिलैक्स करने के लिए, बल्कि हम क्या करते हैं सोशल मीडिया पर जाते हैं,
1: मतलब अनवांटेड इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं,
0: तो ये अनवांटेड इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को काम करते हैं,
1: बिल्कुल डिस्टर्ब करता है,
0: जी। तो ये सब जब ये 5 मिनट हम लेते हैं हमारे लिए
1: जी,
0: हर रोज जब काम में हैं जो भी हम करते हैं ये 5 मिनट से शुरू होता है
1: जी, बिल्कुल।
0: इसमें एक जैसे मंत्र है, जब हम ये पॉजिटिव बात करते हैं, जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे अंदर से, तो कहूँगा कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगा,
1: ये एक मंत्र है, मंत्र के तौर पर इसे रिपीट करना है।
0: तो ये जब हम कहते हैं हमसे तो क्या होता है, अगर लंच में जो ऑफिस में काम करते हैं लंच पर जाते हैं और थोड़ा ऑयली फूड खाएंगे, वो नहीं खाएंगे क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए,
1: मतलब आपको कहीं ना कहीं वो याद दिलाता है कि क्या आपके शरीर के लिए अच्छा है, क्या आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। यानी ये बार बार आपने दिमाग को ये मंत्र रटते रहना है कि मैं अपने हेल्थ का ख्याल रखूँगा या रखूँगी। तो ये एक मंत्र जो डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल हर कोई ये मंत्र जाप कर सकता है कि मैं अपने शरीर का पूरा ध्यान रखूँगा या पूरा ध्यान रखूँगी। ये बार बार आपके शरीर को आपको याद दिलाना है, क्योंकि दिमाग बहुत ही चंचल है और वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है। कई बार हम कहते हैं ना कि हम टेम्प्ट हो जाते हैं, हमारे सामने वही कोई लगा दे थाली और लाजवाब उसमें हो व्यंजन, तो खाने का मन तो हर किसी को करता है, पर ये बात हमेशा याद रखना है कि ये हमारे लिए सेहतमंद है या नहीं। हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल कोई भी अच्छा स्वादिष्ट खाना ना खाएं, लेकिन आपके शरीर को पौष्टिक आहार की ज़्यादा आवश्यकता है। स्वादिष्ट तो चलो कुछ मिनट के लिए होता है, लेकिन फिर उसके बाद आपके बॉडीज़ में कितनी कैलोरीज आप इनपुट करते हैं ये भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए जब हम हाइड्रेटेड रहने की बात करते हैं तो डॉक्टर जी, सेल्फ केयर में हाइड्रेटेड रहना, मूव करना, मेडिटेट करना, क्या ये इतना सा काफ़ी रहता है हेल्दी रखने के लिए अपने आप को?
0: ये तीनों जो आपने बोला भी, हाइड्रेटेड रहना, मूवमेंट करना और मेडिटेशन, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं पर काफ़ी नहीं है। हेल्थ एक पजल जैसा है
1: जी,
0: जो एक पीस मिसिंग हो तो पजल पूरा नहीं होता।
1: सही बात।
0: तो हाइड्रेशन ज़रूरी है, हमारे बॉडी के 60% वाटर हैं, तो हमको पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब हम चलते हैं सांस लेते हैं तो ये सब पानी जाता है,
1: बिल्कुल,
0: तो हमको पानी रिप्लेस करना चाहिए, ये पहले हाइड्रेशन के लिए। दूसरे मूवमेंट के लिए, हमारे बॉडी चलने के लिए बनती है, और अगर हम पूरा दिन

0: सिर्फ बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, तो ये एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाता है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये अगर पूरा दिन हम ऐसे करते हैं तो एक चीज पक्का, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्टेरोल, दिल का बीमारी, ये सब हो सकता है। तो इसलिए मूव करना ज़रूरी है। मेडिटेशन भी ज़रूरी है क्योंकि वो स्ट्रेस को कम करता है, हमारे लक्ष्य को दिखाता है, ऑब्जेक्टिव को,
1: जैसे आप बता रहे थे क्लाउडीनेस जो हमारा फॉर्म हो जाता है उसे वो क्लियर करता है।
0: हाँ।
1: तो बिल्कुल सोचने की जो क्षमता है वो क्लियर होती है, फोकस रहने में हमें वो सहायता करता है जी। तो डॉक्टर जी, जब हम बात करते हैं एक्सरसाइजिंग की, खाने की, आराम करने की, तो ज़्यादातर लोग जो हम नॉर्मल आम इंसान जो है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या इग्नोर करता है, सबसे ज़्यादा मतलब किस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जिसके कारण हमारा जो हेल्थ है उस पर दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है?
0: मुझे लगता है कि समय में सबसे ज़्यादा नींद, स्लीप को हम इग्नोर करते हैं। लोग सोचते हैं कि काम करना, तो जब हम सोते हैं तो काम कम करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो क्या करते हैं, हम अपने नींद घट लेते हैं और काम को ज्यादा करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: महिलाओं
1: बिल्कुल
0: हर रोज सुबह से शाम तक
1: बहुत, मैं समझती हूँ हर घर की ये समस्या है कि महिलाएं सबसे पहले उठती हैं और सबसे लास्ट जाती हैं सोने के लिए।
0: तो जब हम देखते हैं एक तरफ जापानीज बोलते हैं 8-8-8,
1: ओके,
0: 8 घंटा सोना,
1: हाँ,
0: 8 घंटा अपना काम करना और 8 घंटा बाकी है।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: वो 8 घंटा में अपना हर दिन का जैसे नहाते हैं, ब्रश करते हैं, जो भी हमारे सेल्फ का कुकर जैसे खाना पकाते हैं, वो सब वो 8 घंटे में होता है। तो इस 8 घंटे में थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक्सरसाइज करे, या ये सही है। पर रिसर्च बताती हैं जो नींद है, अगर हम उसे कम या इग्नोर करते हैं तो वो पहले इम्यूनिटी को कम कर देता है, दूसरे वो मेमोरी को
1: घटाता
0: है, तीसरे ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि आप सिर्फ काम कर रहे हो। तो ये तीनों के लिए अगर हम नींद अच्छे से लेते हैं तो वो मेमोरी को इम्प्रूव करेगा, स्ट्रेस कम करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेगा, मूड खराब नहीं होगा, जैसे खिचखिचाना, ऐसे
1: चिड़चिड़ापन।
0: हाँ, तो हमेशा मैं कहता हूँ कि स्लीप लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसको इग्नोर
1: नहीं करना चाहिए। और मैं समझती हूँ जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी में भी रिपेयरिंग चलती है, हमारे बॉडी में भी रिजुविनेशन होता है, यानी जो भी जो सेल्स है जो बहुत थक गए हैं एक तरह से उन्हें आराम मिलता है। जिस तरह से हमारी जो गाड़ी होती है एक टाइम के बाद उसे सर्विसिंग पर भेजना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये जो स्लीप है, ये जो नींद है, ये एक तरह की सर्विसिंग है जो हमारे शरीर को बिल्कुल 8 घंटे उसको मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिलती तो सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं शुरू होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और जैसे हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, डॉक्टर जी बता रहे थे कि हम हमेशा बहाना बनाते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो डॉक्टर जी इसका तोड़ कैसे निकाला जाए? जैसे आप बता रहे हो कि टाइम नहीं है, सेल्फ केयर के लिए आप बता रहे थे 5 मिनट का तो हमें लगभग करना ही है, अगर हमें बीमार नहीं पड़ना है तो अगर आप एटलीस्ट 5 मिनट हर 1 घंटे या हर 2 घंटे में 5 मिनट अगर आप अपने आप को देना शुरू करेंगे, वो 5 मिनट का रिलैक्सेशन

वो 5 मिनट का, यानी पानी पीना, उस टाइम के अंदर आप अपना जैसे वॉशरूम जाना वगैरह जो भी आप कार्य करते हैं 1 या 2 घंटे के अंतराल में, तो ये 5 मिनट आप अपने आप को डेडिकेट कीजिए, मोबाइल को दूर रखें, ये सारी चीज़ें सेल्फ केयर में गिनी जाती हैं। आज का ये कार्यक्रम इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्व देखभाल दिवस पर आधारित रखा गया है। तो चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए।

0: की चर्चा को कार्यक्रम को जारी रखते हैं। इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे पर आधारित आज का ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्व देखभाल दिवस। डॉक्टर बसावन आज हमारे साथ है। डॉक्टर जी, आज का जो दुनिया, आज की जो दुनिया है, आज का जो समय है, वो तनाव से भरा हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि तनाव सिर्फ बड़े लोगों को है, तनाव बच्चों को भी है, तनाव जो वृद्ध लोग हैं उनको भी है, तनाव सभी ओर है। तो तनाव को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं
1: आज के समय में? तनाव यानी स्ट्रेस लगभग हर इंसान के जिंदगी का भाग हो गया है। थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल है, लेकिन

0: जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, लंबा चलता है, तब वो हमारी हेल्थ को नुकसान करता है। तो ये स्ट्रेस जब हम देखते हैं, हमने अभी कहा था कि हम जब काम पर जाते हैं, शुरू दिन से ही 10 मिनट के बाद घर निकला तो 10 मिनट का लेट हो गया,
1: हाँ।
0: तो स्ट्रेस वहीं पर शुरू होते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल।

0: तो ये स्ट्रेस जब हम देखते हैं, हमने अभी कहा था कि हम जब काम पर जाते हैं शुरू दिन से ही 10 मिनट के बाद घर निकला तो 10 मिनट का लेट हो गया,
1: हाँ।
0: तो स्ट्रेस वहीं पर शुरू होते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: पर वापस आते हैं तो एक्सरसाइज भी किया,
1: बिल्कुल,
0: तो फिजिकल
1: मेंटल भी
0: हो गया,
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जी यहाँ पर इशारा है कि एक फोन कॉल है, हम हेडसेट लगा लेते हैं ताकि हम अपने कॉलर को सुन पाएं, उनका क्या सवाल है आइए जानते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते जी, आपका स्वागत है
2: और डॉक्टर जी को भी नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते,
2: और बहुत धन्यवाद उनको।
1: हाँ जी,
2: तो मैं भी कुछ जोड़ना चाहता हूँ।
1: हाँ जी,
2: जबकि एक परिवार में 4 लोग रहते हैं तो और 3 लोग घर के काम में हाथ, 3 लोग घर के काम कुछ नहीं करती, सिर्फ एक ही व्यक्ति पर सब काम छोड़ देती है करने के लिए, तो वो उनको तब तो वो सो नहीं पाते, स्ट्रेस और वो बीमार हो जाते, और उनकी जितनी कला भी है भजन या संगीत सब छूट जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारा परिवार हमारा धन है, हमें अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहिए। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। बिल्कुल सहमत हैं हम आपकी बात से, क्योंकि मैं समझती हूँ यहाँ पर कई बार जब हम घर के कामों की बात करते हैं और बर्डन केवल एक पर आ जाता है, तो जैसे हमने शुरुआत में कहा कि इसमें एक इंसान सेल्फ केयर कैसे करे, क्योंकि उसे सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर जी?
0: जब ये हम देखते हैं तो जब एक इंसान सारा काम करता है तो कौन सा शिकार होता है उसको?
1: सही बात,
0: उसको बर्नआउट का शिकार होता है, जो अभी
1: भाई जी ने कहा जी।
0: एक इंसान वो सारा काम करता है और 3
1: आराम से
0: बैठते हैं, तो पहले वो एक इंसान पर स्ट्रेस हो जाता है,
1: ट्रू,
0: मेंटली और इमोशनल थकान हो जाता है,
1: बिल्कुल।
0: तो फिर उसको कुछ करने में उसको उसका मन नहीं है, कुछ कोई भी काम है जो घर का है या बाहर का है जो भी है, उसको ये काम का
1: एक जैसे जोश होता है, खुशी होती है, वो नहीं है।
0: फिर चिड़चिड़ापन बन जाता है,
1: सही बात,
0: कभी कभी फिर नींद भी घट जाता है क्योंकि वो सोच में रहता है, तो ये सब उसको काबू में रखने के लिए ये एनवायरनमेंट के बाहर जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? वॉक, उस एनवायरनमेंट के बाहर जाइए और वॉक कीजिए। जब वॉक करोगे तो कुछ हमारे इंटेलेक्ट भी काम करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: हमारे जो फिजिकल हैं वो भी रिलैक्स, जो हमारे शरीर हैं वो भी रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि जब हम घर पर जाएंगे तो वहाँ पर ये चिड़चिड़ापन, ये स्ट्रेस का, ये गुस्सा का की फीलिंग,
1: यानी उस माहौल से बाहर निकलना है,
0: माहौल
1: उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलिए, थोड़ी देर के लिए वॉकिंग कीजिए। हो सकता है कि उस सिचुएशन को एट दैट टाइम हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी हमें साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, कपड़े घड़ी करने, बहुत सारे काम होते हैं घर के, बहुत सारे कामकाज होते हैं, पर उसमें से भी थोड़ा सा टाइम निकालिए और निकलिए उसमें से बाहर, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, और रिलैक्स करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये जैसे डॉक्टर जी ने बताया कम शब्दों में कि सेल्फ केयर करना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में, अपनी लिस्ट में पहला होना चाहिए, और जैसे शुरुआत में हमने बताया कि खुद का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। दूसरों का ख्याल तो हम रखते ही हैं, पर अपने आप को बहुत ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे पाते। और जब महिलाओं की भी बात करते हैं तो महिलाओं पर ये ज़्यादा पड़ता है प्रभाव, क्योंकि महिलाएं हैं जो सबसे पहले उठती हैं, बच्चों का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, काम पर भी जाना, पति का ख्याल रखना, और साथ ही साथ समाज में कई ऐसे रिश्ते हैं जो वो निभाती हैं। तो क्या महिला के लिए, जैसे अभी आपने बताया कि ये प्रभाव बहुत उन पर असर पड़ता है, इसीलिए जैसे डॉक्टर जी ने हमें समझाया कि थोड़ा समय निकालिए केवल आपके लिए, कम से कम 30 मिनट्स

0: दिन का आप अपने लिए खुद के लिए निकालिए। तो डॉक्टर जी, क्या सेल्फ केयर में काउंसलिंग जैसी चीज हेल्प करती है?
1: काउंसलिंग जब हम देखते हैं
0: हाँ,
1: तो ये एक बुरी बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई जाते हैं काउंसलिंग के लिए तो वो पागल है।
0: बिल्कुल
1: तो नहीं। साइकोलॉजिस्ट जैसे हमें डायबिटीज हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हाथ टूट गया तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के यहाँ जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अगर आई का कुछ प्रॉब्लम है, आँख का कुछ प्रॉब्लम है, तो हम आई स्पेशलिस्ट
0: के पास जाते हैं।
1: तो वैसे ही हमारे मेंटल हेल्थ के लिए एक स्पेशलिस्ट है, वो है साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिक। अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ये एक बात नहीं है कि ये
0: दिमागी तौर पर उनको कोई बहुत समस्या है,
1: एक टाबू की तरह है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो ये टाबू हमको तोड़ना है, क्योंकि अगर मेंटली थक चुके हो, एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग देता है तो ये आपको सही कर देता है।
0: बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलती है कि हमें क्या करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर को हम हैंडल नहीं कर पाते और ऐसी हालात में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो नहीं होना चाहिए। और जहां पर अगर हम किसी एक व्यक्ति का या एक डॉक्टर का एक सहायता लेते हैं, जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि अभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर काउंसलिंग करवाना, ये भी कोई गलत बात नहीं है। खुद की सेल्फ केयर कैसे करनी है, अगर आपको कोई अच्छे से गाइड करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और बिल्कुल एक और ऐसा महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर जी, आज के समय में हम जब सेल्फ केयर की बात करते हैं तो कोई हमें ये भी कहेगा कि ओहो, अब अलग से खर्च करना पड़ेगा सेल्फ केयर के लिए, मतलब अब कोई हेल्दी खाने के लिए हमें अलग से खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि आज बाजार में आप जाके देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक से बहुत ज्यादा अच्छा है, हो सकता है हमारे बजट को एक्सीड करे। तो डॉक्टर जी, ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या सेल्फ केयर करने के लिए हमें अलग से कोई बजट बनाना जरूरी हो जाता है?
1: अलग से नहीं, क्योंकि जब हम सोचते हैं सेल्फ केयर, वो स्पा या हॉलीडे पर जाना, उसका ये मतलब नहीं है। सेल्फ केयर का भाग है जब सुबह हम जागते हैं वो फ्रेश हवा में वो करना,
0: इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते।
1: डीप ब्रीफिंग करना, पैसे नहीं लगते। योगा सीखना, योगा कीजिए, पैसे नहीं लगते।
0: बिल्कुल।
1: अगर नींद लेना है तो वो भी पैसे नहीं लगते।
0: सही बात।
1: तो पानी पीना है, फैमिली के साथ बैठ के
0: क्वालिटी टाइम,
1: या दोस्तों के साथ, पैसे नहीं लगते हैं।
0: सही बात। स्माइल करना, हंसना, अंदर अच्छा फील करने के लिए, इसके लिए भी पैसे नहीं लगते।
1: तो मैं कहूंगा सेल्फ केयर के लिए पैसे से ज्यादा नियत और डिसिप्लिन चाहिए।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: रोज के छोटे छोटे स्टेप अगर हम हेल्दी हैबिट्स डालते हैं तो ये एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर एक घर जैसा है जो हम इसमें रहते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जो लाइफ टाइम का है, तो इस घर को हमको
0: किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हमारा जो शरीर है वो मंदिर की तरह है। और जैसे हम मंदिर को गंदा नहीं रखते, मंदिर को दूषित नहीं करते, मंदिर में कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं करते, हमारे शरीर को भी हमें वैसे ही रखना है। तो डॉक्टर जी, आज के इस कार्यक्रम के लगभग समाप्ति तक हम आ पहुंचे हैं, तो हम आप हमारे श्रोताओं को इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे?
1: और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तीनों आपको संभालना है, पहले फिजिकल हेल्थ, दूसरे मेंटल हेल्थ और तीसरे इमोशनल हेल्थ। जब हमने अभी बातचीत की कैसे उनको हम क्या क्या कर सकते हैं उनको एक

0: अच्छी, जैसे हम देखते हैं हमारे बॉडी को सर्विसिंग चाहिए, जैसे एक गाड़ी को सर्विसिंग चाहिए, हमारी बॉडी को भी एक सर्विसिंग चाहिए, ये है सेल्फ केयर। तो ये तीनों जो हमने बात किए पहले, ध्यान रखिए, हर रोज थोड़ा वॉक करिए, व्यायाम अच्छी तरह से करिए, खाना अच्छी तरह से खाइए, थोड़ा ऑयली ये सब जो अच्छा नहीं है आप जानते हैं, उसको सिर्फ रिफ्लेक्ट करना है, और हर रोज का डिसिप्लिन में छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो ये हेल्दी हैबिट हमको डालना है। जब आप स्वस्थ होते हैं तभी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं और अपनों का सहारा बन सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इसी संदेश से मैं आपको विदा लेता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, और सच में आज का जो टॉपिक रहा अंतर्राष्ट्रीय स्व देखभाल दिवस, तो आप अपने सेहत के मालिक हैं, आपको अपनी देखभाल खुद करनी है, थोड़ी जिम्मेदारी, और बिल्कुल हर कोई जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बस ये रिवीजन करते रहना बहुत आवश्यक है। रोज़ अपने आप को ये याद दिलाना कि स्वस्थ रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है और मैं स्वस्थ रहूँगा या मैं स्वस्थ रहूँगी, क्योंकि मैं अगर बीमार हो गई तो मेरे बाद जो है उनका देखभाल, उनकी देखभाल कौन करेगा। और अगर आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं तो बेशक आपके बाद जितने भी लोग हैं वो आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बल दे रहा है, और आज देखा गया है कि हर एक सेंटर में, हर एक गाँव में आपने देखा है सेंटर्स में योगा के क्लासेस, जुम्बा के क्लासेस और ऐसे कई सारे क्लासेस चलाए जाते हैं, वे भी निशुल्क तौर पर, जहां पर आप जाकर सीख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अपने लिए एक समय निकाल सकते हैं। बेशक आप इसको प्रावधान दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसी के साथ हमारी टेक्निकल टीम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को धन्यवाद, और सबसे पहले बिल्कुल धन्यवाद देंगे डॉक्टर बसावन को। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देंगे और फिर मिलेंगे एक अगले कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, रत्ना को दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें विदिमा से आपको नमस्कार
1: नमस्कार परी सभी सुनने वालों को नमस्कार इस सरकार ने वो सब कुछ नष्ट कर दिया है जो हमने मिलकर बनाया था ये शब्द जोरी शोंगा ने आज सुबह एमएसएम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहे ये प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम द्वारा कल राज्यसभा में पेंशन सुधार के बचाव में दिए गए बयान के जवाब में आई है विपक्ष नेता द्वारा पूछे गए पीएनक्यू का उत्तर देते हुए नवीन राम गुलाम ने स्पष्ट किया कि सरकार इस सुधार पर पीछे नहीं हटेगी 48 घंटों से भी कम समय में ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक के तहत पुलिस ने 334 लोगों को गिरफ्तार किया है कल और इस बुधवार को सुबह 3 बजे से 8 बजे के बीच नॉर्थन डिवीजन मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ और साउथर्न डिवीजन ने पुलिस की विभिन्न इकाइयों के सहयोग से अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की सौजन्त जयेश गंगादीन का भविष्य कल तय हो जाएगा जमानत के लिए उनकी याचिका पर फैसला पोटी जिला अदालत में सुनाया जाएगा कल मामले की सुनवाई के दौरान बंदरगाह के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात इस पुलिस अधिकारी ने खुद को निर्दोष बताया उन पर 94.4 मिलियन रुपये मूल्य की ड्रग्स बरामदगी के मामले में न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने का अस्थायी आरोप है और विदेश में स्पेन के अब तक के सबसे घातक जंगलों में लगी आग के 7 पीड़ित ब्रिटिश नागरिक थे जंगल की ये आग जिसने फ्रांस को भी बुरी तरह तबाह कर दिया है पिछले गुरुवार को उस समय भड़की जब पश्चिमी यूरोप के कई हिस्से 6 सप्ताह में अपनी तीसरी भीषण गर्मी की चपेट में थे तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए आपके ध्यान के लिए धन्यवाद नमस्कार
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: RM3 Radio, Radio, Radio.
4: घड़ी मिला लीजिएगा इस समय शाम के 4:02 हुए हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन और प्रोग्राम है दिल से मिले दिल

0: Continuous music. Music. RM3.
1: जहाँ दोस्तों दिल से मिले दिल प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं और अब शुरू होता है ये प्रोग्राम जो चलेगा शाम 5 बजे तक और सुरीले गीतों दिल को छू लेने वाले शायरी और कुछ ज़रूरी घोषणाओं का जो साथी अपने काम से लौट रहे हैं उनके सफ़र को और भी खुशनुमा बनाने के लिए हम हैं आपके साथ।
2: से मिले दिल
1: और कुछ ऐसे साथी हैं जो इस समय घर बैठे या किचन में बिजी होते हुए रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो हमें सुन रहे हैं, तो ये पहली भेंट आप सबके नाम हम करते हैं।

जहाँ दोस्तों दिन भर की थकान को मुस्कान में बदल लीजिएगा, घर की दहलीज पर कदम रखते ही सारे गम भूल जाइए और रिश्तों की गर्माहट ही जिंदगी की असली दौलत है, तो अपने सपनों के साथ हर शाम को खास बनाइएगा।

0: ज्यादा सफर खूबसूरत होता है और जब साथ अपनों की दुआओं का होता है, हर शाम नई उम्मीद लेकर आए हैं और यही दिल से दिल की सच्ची दुआ होती है। तो चलिए अभिजीत को सुनने के बाद अब एक प्यारा सा दो गाना सुनते हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की मिली जुली आवाजों में।
1: Continuous music. Music. Music. Music. Music.

जी हाँ दोस्तों, दिल से मिले दिल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 94.96 MHz 98.2 मेगाहर्ट्ज पर। और इस वक्त शाम के 4:17 हुए हैं। और हाँ, कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं आपके लिए दोस्तों। तो इस समय आप सफर पे हो, कृपया सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का जरूर पालन करें। और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। और बेशक घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ कुछ समय जरूर बिताएं। और इस समय हमारे साथ आशा जानू हैं, जो कोतेश की हैं। उनके समस्त परिवार यानी कि जानू परिवार वालों के एक अगली भेंट हम सुनवाना चाहेंगे। और वैसे इन दिनों आशा कुछ अस्वस्थ हैं, पर यही हम कहेंगे कि वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएं।

0: listening, RM Free Radio. Radio.
1: जहाँ दोस्तों पुराने गाने का तो जवाब ही नहीं, पुराने गाने इतने अच्छे हैं कि इसे सुनते ही मन मतमस्त हो जाते हैं। तो ऐसा गाना सुनकर दिल भर जाता है और आंखें भी नम हो जाती हैं।

जहाँ दोस्तों ऑल इज गोल्ड पुरानी अच्छी है। महान गायक मुकेश चंद्र माथुर को कोटि कोटि प्रणाम और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मधुर गीत को सुनते ही दिल में हलचल होने लगती है। वाह क्या समय था, काश वापस आ जाए। जी हाँ, साथ देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ अनुराधा और आपका साथ दूंगी शाम 5 बजे तक। और ये अगली भेंट आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम जो अभी समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन पर, और ये प्यारी सी आवाज़ है सुरेश वाडकर की।

0: जहाँ दोस्तों चारों ओर सर्द हर्द सर्द ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े हैं रेडियो मनोरंजन पर। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं और आप इन सब सारे गीतों से प्यार हो गए हैं, है ना?
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

जहाँ दोस्तों दिल से मिले दिल प्रोग्राम में आप सबका दोबारा स्वागत हम करते हैं और इन गीतों को आप पसंद आ रही हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पर सिर्फ ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के मनोरंजन के लिए है। मखमली आवाज जो दिल को कितनी शिद्दत से छू लेती है, जट

अद्वितीय आवाज जगजीत सिंह। और ये जो अगला गाना है प्यारी सी लेहक के लिए, उनकी माँ उनके पापा की ओर से ये गाना प्यारी लेहक के लिए, जो इन दिनों उनके एग्जाम्स खत्म हो गई हैं और अब छुट्टियों में होने वाली है उनकी, तो बहुत खुश है, खुश मिजाज में है लेहक। तो चलिए ये गाना तुम्हारे नाम।

जहाँ दोस्तों देखते ही देखते हमारा आज का ये सफर और 15 मिनट में समाप्त होगा। बस उम्मीद है कि दिल से मिले दिल शो जो है आपके सफर और आपकी शाम को और भी सुहाना बना रही है। मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित घर पहुंचिए और अपनों के साथ हर पल का आनंद जरूर लीजिएगा।

में रहने वाली इतिशा के लिए है, जिनकी सालगिरह है। इतिशा, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी खुशियां और आपके स्वास्थ्य बनी रही, ऐसे हम कामना करते हैं। आपकी नानी, आपकी दादी, माता पिता, रिद्धि निधि सिद्धि और आप समस्त इंद्रजीत परिवारों की ओर से इतिशा को ढेर सारा प्यार है। परीक्षित को भी उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। उनके पापा को बुब्बा और कवि की ओर से, उनकी प्यारी बहन हर्षिता की ओर से परीक्षित को ढेर सारा प्यार, उनकी दादी की ओर से आशीर्वाद हैं। और ये जो अगला गाना है, आज जितने लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं उन सब के लिए शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत दिल के साथ।

जी हाँ दोस्तों, और अब समय हुआ है आपसे विदा लेने की। बस शाम के 4:55 होने को है, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आपसे को कहेंगे शुभ संध्या और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, और हमारी आपकी मुलाकात होगी कल सुबह आज की चर्चा प्रोग्राम में। अरब अनुराधा को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3 कहीं एक कहानी

0: उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयोह वदंती। अर्थात उठो जागो और श्रेष्ठ जान प्राप्त करने वाले गुरुजनों के पास जाकर परम तत्व को समझो। आत्मज्ञान का मार्ग छुरे के तीक्ष्ण धार की तरह होता है, कठिन और सूक्ष्म। ज्ञानी पुरुष इसे दुर्गम मार्ग कहते हैं। यह मंत्र हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आलस्य छोड़कर जागरूकता, अनुशासन और निरंतर प्रयास का मार्ग अपनाना चाहिए। आत्मोत्थान का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर अनकही एक कहानी नामक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। प्रोफेसर राजशेखर भी अपनी स्वरचित कहानी लेकर हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से अभिवादन करते हैं। तो देर न करते हुए चलिए सुनते हैं अनकही एक कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका हार्दिक आभार गुरु विश्वा। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर गुरु विश्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। भारत की संस्कृति ने विश्व को अनेक ऐसे महापुरुष दिए हैं जिन्होंने अपने विचारों, अपने चरित्र और अपने कर्मों से पूरी मानवता को नई दिशा दी है। ऐसे व्यक्तित्व केवल अपने युग के नहीं होते, वे आने वाली पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ऐसे ही एक युग पुरुष थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था और नरेंद्र के रूप में उनका जीवन सत्य की खोज से प्रारंभ हुआ। उन्होंने कभी अंधविश्वास को स्वीकार नहीं किया, बल्कि हर बात को तर्क, अनुभव और आत्मज्ञान की कसौटी पर परखा। गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में उन्हें जीवन का वास्तविक उद्देश्य मिला। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। युवावस्था में उन्होंने पूरे भारत

0: का भ्रमण किया, गरीबों और वंचितों का दुख देखा और यह अनुभव किया कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके जागरूक, शिक्षित और चरित्रवान युवा होते हैं। 11 सितंबर 1893 को शिकागो की विश्व धर्म महासभा में उनके शब्द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ने केवल भारत का ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व का भी गौरव बढ़ाया। हाँ श्रोतागण, आज की हमारी अनकही कहानी स्वामी विवेकानंद के जीवन की है, एक ऐसे सन्यासी की जिसने आत्मविश्वास, सेवा, राष्ट्र प्रेम और आध्यात्मिक चेतना के बल पर पूरी दुनिया को भारत का वास्तविक स्वरूप दिखाया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज अनकही एक कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक युवा सन्यासी ने अपने विचारों से करोड़ों लोगों के जीवन में नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और नई चेतना का संचार किया। स्वामी विवेकानंद। कक्षा में अध्यापक पीठ घुमाकर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे। नरेंद्र अपने मित्रों से किसी विषय पर फुसफुसाकर बात कर रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई पर भी था। अचानक मुड़ते हुए गुस्से में अध्यापक ने चिल्लाते हुए कहा, कक्षा में यह फुसफुसाहट कैसी? कौन बात कर रहा था? तुम सब खड़े हो जाओ। नरेंद्र, विवेकानंद और उसके मित्र खड़े हो जाते हैं। फिर अध्यापक कहता है, तुम में से जो भी बात कर रहा था वह सच सच सामने आए, नहीं तो सबको सजा मिलेगी। नरेंद्र दृढ़ता और विनम्रता से उस अध्यापक को उत्तर देते हैं,
1: गुरुजी, बात मैं कर रहा था, मेरे मित्र केवल सुन रहे थे, इसीलिए सजा केवल मुझे मिलनी चाहिए।
0: नरेंद्र की सत्यनिष्ठता देखकर वह अध्यापक हैरान था, लेकिन वह गुस्से में था, इसलिए उसने कड़क आवाज में कहा, नरेंद्र, तुम पढ़ाई में अच्छे हो, पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, बेंच पर खड़े हो जाओ। अध्यापक की बात सुनकर नरेंद्र बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी गलती स्वीकार कर बेंच पर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में ग्लानि नहीं बल्कि सत्य का तेज है। शाम के समय में नरेंद्र घर लौटकर उदास बैठा है। माता भुवनेश्वरी देवी उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या बात है नरेंद्र, आज तुम्हारा चेहरा बुझा सा क्यों है? क्या स्कूल में कुछ हुआ क्या?
1: माँ, आज मैंने सच बोला तो मुझे सजा मिली, क्या सच बोलने की कीमत हमेशा अपमान होती है?
0: नहीं मेरे बच्चे, नहीं। सत्य की राह पर कभी कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा सत्य का साथ देना। अगर तुम सही हो तो किसी से मत डरो।
1: माँ, एक बात और, लोग कहते हैं कि अछूतों को छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, हुक्का पानी अलग हो जाता है, ऐसा क्यों? क्या भगवान ने इंसानों में कई फर्क किए हैं?
0: ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं बेटा, यह सब समाज की बनाई बेड़ियां हैं।
1: तो फिर इन बेड़ियों को मैं नहीं मानूंगा, मैं खुद हर सत्य की परीक्षा करूंगा, चाहे समाज जो भी कहे।
0: भुवनेश्वरी देवी गर्व से अपने निडर और खोजी पुत्र को देखती हैं, जिसके भीतर सत्य जानने की व्याकुलता साफ झलक रही है। नरेंद्र अपने कुछ मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर जाते हैं। कमरे में रामकृष्ण जी चटाई पर बैठे हैं। नरेंद्र के चेहरे पर सत्य को जानने की तीव्र छटपटाहट और आंखों में संशय है। वह सीधे रामकृष्ण जी के सामने जाकर बैठ जाता है और कहता है,
1: महाराज, मैंने बड़े बड़े विद्वानों से यह प्रश्न पूछा, पर आज आपसे पूछता हूं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप मुझे उसका प्रमाण दे सकते हैं?

0: नरेंद्र की बात सुनकर रामकृष्ण के चेहरे पर एक अलौकिक और वात्सल्यपूर्ण मुस्कुराहट आ जाती है और वे मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ नरेंद्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी कहीं अधिक स्पष्ट और जीवंत रूप में मैंने ईश्वर को देखा है।
1: अच्छा, यदि ऐसा है तो आप मुझे उसका साक्षात्कार क्यों नहीं करा देती? लोग तो केवल काल्पनिक बातें ही करते हैं।
0: नरेंद्र की बात सुनकर रामकृष्ण नरेंद्र के समीप आते हैं और कहते हैं, नरेंद्र, लोग संसार के धन दौलत, मान सम्मान और रिश्तेदारों के लिए रोते हैं और आंखों से आंसुओं की नदियां बहा देते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए व्याकुल होकर कौन रोता है? यदि कोई एक दिन भी उस सच्चे दिल से ईश्वर के लिए तड़प उठे तो वह अवश्य प्रकट हो जाएगा।
1: पर महाराज, बुद्धि और तर्क के बिना किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास कैसे किया जा सकता है?
0: रामकृष्ण नरेंद्र के कंधे पर धीरे से अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र है नरेंद्र, और यही तुम्हारी शक्ति है, लेकिन सत्य केवल तर्क की सीमा में नहीं बंधता, उसे अनुभव करना पड़ता है। तुम साधारण जीव नहीं हो, तुम्हारी व्याकुलता ही इस बात का प्रमाण है। रामकृष्ण जी के स्पर्श और करुणामयी वाणी से नरेंद्र के भीतर का सारा संशय और अहंकार पिघलने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे असीम शांति का अनुभव होता है। वह बहुत ही गदगद कंठ से गुरु के चरण में झुकते हुए कहता है,
1: महाराज, मेरी खोज आज पूरी हुई, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए महाराज, अपनी शरण में ले लीजिए।
0: उस दिन के बाद समय बीतते बीतते एक दिन श्री रामकृष्ण गंभीर रूप से अस्वस्थ बिस्तर पर पड़े हैं। नरेंद्र उनके चरणों के पास बैठा है। गुरुदेव अपना हाथ नरेंद्र के सिर पर रखते हैं, जिसे नरेंद्र एक गहरे ध्यान में डूब जाता है। कुछ समय बाद जब नरेंद्र की आंखें खुलती हैं तो उसका चेहरा अलौकिक शांति से चमक रहा होता है।
1: गुरुदेव
0: रूंधे हुए गले से कहता है,
1: गुरुदेव, इस समाधि में मुझे जो आनंद मिला, मैं उसी में डूबा रहना चाहता हूँ। मुझे संसार की ओर वापस मत भेजिए, मैं हमेशा इसी परमानंद में लीन रहना चाहता हूँ, परमानंद में।
0: रामकृष्ण धीमी पर दृढ़ आवाज में कहते हैं, छी नरेंद्र, तुमसे मुझे ऐसी संकीर्ण बात की आशा नहीं थी। मैं तो सोचता था कि तुम एक विशाल वट वृक्ष बनोगे, जिसकी छाया में संसार के हजारों लाखों थके हारे लोग आकर शांति पाएंगे। क्या तुम केवल अपनी व्यक्तिगत मुक्ति की चिंता कर रहे हो?
1: गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें गुरुदेव।
0: नरेंद्र, आज मैं अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति तुम्हें सौंप रहा हूँ। अब इस शक्ति से तुम्हें लोक कल्याण करना है। जब तक तुम संसार के दुखों को दूर नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें चैन से नहीं बैठना है। श्री रामकृष्ण के महाप्रयाण यानी मर जाने के बाद सभी गुरु भाई शोक में डूबे हैं। नरेंद्र उन्हें एकत्रित करता है और उनके भीतर एक नई ऊर्जा भरता है।

0: श्री राम कृष्ण गुरु के मरने के बाद सभी शिष्य उदास बैठे हैं और उसी हताशा में शशि नाम का एक शिष्य नरेंद्र को संबोधित करते हुए कहता है, नरेंद्र गुरुदेव हमें छोड़कर चले गए, नरेंद्र अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, हम सब बिखर जाएंगे। खड़े होकर आंखों में तेज के साथ नरेंद्र सबको संबोधित करता है,
1: नहीं शशि, गुरुदेव कहीं नहीं गए हैं, वे हमारे भीतर जीवित हैं। उन्होंने जो सत्य हमें सिखाया है

0: उसे हमें पूरी दुनिया में फैलाना होगा।
1: पर हमारा मार्ग क्या होगा नरेंद्र, क्या होगा? क्या हम केवल गुफाओं में बैठकर जप तप करेंगे?
0: नहीं भाइयों, केवल अपनी मुक्ति के लिए साधना करना स्वार्थ है। हमारा ध्येय होगा आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च, अर्थात अपने मोक्ष और संसार के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करो। भूखे को अन्न देना, अज्ञानी को ज्ञान देना और पीड़ित की सेवा करना ही अब हमारी सबसे बड़ी साधना होगी। चलो हम सब मिलकर संन्यास का संकल्प लें।
1: और इस संकल्प के लिए सभी गुरु भाई जय श्री गुरु महाराज के उद्घोष के साथ नरेंद्र के पीछे खड़े हो जाते हैं और मानव सेवा का महासंकल्प का जन्म होता है। स्वामी विवेकानंद राजा के आमंत्रण पर एक राजसभा में बैठे हैं, पूरी दरबार सजी हुई है, चारों ओर ऐश्वर्य बिखरा हुआ है। राजा बड़े गर्व से स्वामी विवेकानंद को कहता है, स्वामी जी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि संसार मिथ्या है और केवल ब्रह्म ही सत्य है, फिर इस प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करना? सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं।
0: राजन, जब तक आपकी प्रजा भूखी और अशिक्षित है तब तक आपके ये ऊंचे ऊंचे दार्शनिक विचार केवल एक ढोंग है। भूखे पेट को धर्म या दर्शन नहीं बल्कि अन्न की आवश्यकता होती है। यदि आप राजा होकर अपनी प्रजा के दुखों को दूर नहीं कर सकते तो आपका यह वैभव एक अभिशाप है।
1: और इस घटना के बाद स्वामी जी कहीं और जा रहे हैं। चलते चलते थक कर एक झोपड़ी के बाहर रुकते हैं। वहाँ पर एक ग्रामीण व्यक्ति जिसका नाम रामू है वह बैठा है, जिसके चेहरे पर साफ लाचारी दिख रही है। और उसे देखते हुए विवेकानंद कहते हैं,
0: भाई, क्या इस सन्यासी को थोड़ा जल और भोजन मिल सकता है?
1: रामू डरते और हिचकिचाते हुए कहता है, महाराज, मैं एक अछूत हूं, यदि मैंने आपको छुआ हुआ या भोजन दिया तो मेरा पाप बढ़ जाएगा और आपका धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा। कृपया आप आगे जाएं, आप मेरे हाथ का कुछ भी ना खाएं, प्रभु, कुछ भी ना खाएं।
0: उठो भाई, कोई मनुष्य अछूत नहीं है, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। तुम्हारा यह संकोच समाज की अज्ञानता का परिणाम है, तुम्हारा पाप नहीं।
1: स्वामी विवेकानंद की बात सुनकर रामू के आंखों में आंसू भर आते हैं और वह रोते हुए कहता है, स्वामी जी, सदियों से लोग हमें धुतकार रहे हैं, हमारी इस गरीबी का अंत कब होगा और हमें इस छुआछूत से कब मुक्ति मिलेगी?
0: जब तक देश का पढ़ा लिखा वर्ग तुम जैसे भाइयों की उपेक्षा करेगा तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानूंगा जो तुम्हारे पैसों से पढ़कर तुम्हारा ही शोषण करता है।
1: इसी तरह स्वामी विवेकानंद कभी राजा के महलों में तो कभी गांव की कुटिया में गरीबों के घर में खाना पीना मिलना जुलना करते हुए और सभी को संस्कारित करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और एक दिन

0: स्वामी जी समुद्र में तैरकर अंतिम चट्टान पर पहुंचते हैं और वहां 3 दिनों तक गहन ध्यान में बैठ जाते हैं। एक दिन स्वयं से और रोते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं,
1: हे भारत माता, मैंने देख लिया तुम्हारा वास्तविक रूप। चारों ओर

0: देव ने मुझे क्यों रोका था। मैं केवल गुफाओं में बैठकर अपनी मुक्ति नहीं ढूंढ सकता, मुझे इन करोड़ों भूखे नंगे भाइयों के उत्थान के लिए काम करना होगा। यदि इसके लिए मुझे सात समंदर भी पार करना पड़े तो मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, और भारत की इस जान भूमि का डंका पूरी दुनिया में बजाऊंगा, पूरी दुनिया में।
1: और उसके बाद ही स्वामी जी उठते हैं। उनकी आंखों में नए भारत के पुनरुत्थान का एक महासंकल्प चमक रहा है। कुछ समय के पश्चात पूरे विश्व में शिकागो का कोलंबियन एक्सपोजिशन हॉल, जहां की विश्व धर्म सभा का आयोजन हो रहा है, मंच पर दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सजे धजे बैठे हैं। स्वामी विवेकानंद भी वहां उपस्थित हैं। उनका नाम वहां पुकारा जाता है। वे गहरे आत्मविश्वास के साथ पोडियम की ओर बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर भारतीय अध्यात्म का तेज और ओज है। वहां पर अध्यक्षता करते हुए एक व्यक्ति घंटी बजाते हुए कहता है, अब हमारे सामने भारत के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद अपने विचार रखेंगे। विवेकानंद बहुत ही गंभीर हैं और गेरुआ वस्त्र पहने उनका चेहरा दिव्य लग रहा है। वे मंच पर जाते हैं और बहुत ही सुरीली और सिंह जैसी गर्जन भरी आवाज में कहते हैं,
0: सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका।
1: यह सुनते ही पूरे शिकागो के इस हॉल में उपस्थित 7,000 दर्शक सम्मोहित होकर खड़े हो जाते हैं। पूरा सभागार 2 मिनट तक लगातार करतल ध्वनि और तालियों की गूंज से कांप उठता है। विवेकानंद के चेहरे पर एक शांत मुस्कान तैर जाती है और तभी एक विदेशी पत्रकार चौंकता हुआ अपने आप कह उठता है, अद्भुत, अद्भुत। इस युवा सन्यासी के पहले 4 शब्दों में ऐसा कौन सा जादू था जिसने पूरे हॉल को हिलाकर रख दिया। इसमें कोई औपचारिक और औपनिवेशिक दूरी नहीं, बल्कि सीधा दिल को छू लेने वाला अपनापन है। तालियों के रुकने पर आगे बोलते हुए विवेकानंद अपना भाषण प्रस्तुत करते हैं,
0: मुझे एक ऐसे धर्म का प्रतिनिधि होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों का पाठ पढ़ाया है। हम केवल सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम दुनिया के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं।
1: भाषण समाप्त होने पर चारों ओर स्वामी जी की जय जयकार हो रही है। अमेरिकी पत्रकार हाथ में डायरी लिए हुए आगे बढ़ता है और थोड़ा अहंकार मिश्रित लहजे में अंग्रेजी में संवाद शुरू करता है, हाउ आर यू स्वामी जी, हाउ डू यू लाइक आवर सिटी शिकागो। स्वामी विवेकानंद हिंदी में जवाब देते हैं,
0: मैं अच्छा हूं, आपका शहर भी बहुत ही सुंदर है।
1: यह सुनकर पत्रकार को लगा कि शायद इस भारतीय सन्यासी को बहुत अंग्रेजी नहीं आती है। उसने स्वामी जी को कमतर आंकने के लिए अपनी टूटी फूटी हिंदी में अगला सवाल पूछा, आप यहाँ अमेरिका आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने उस विदेशी पत्रकार की टूटी फूटी हिंदी सुनते ही तुरंत फर्राटेदार अंग्रेजी में जवाब दिया,
0: Well, I'm feeling absolutely wonderful here. The hospitality of the people of America and the curiosity towards spirituality is highly commendable.
1: उनकी बात सुनते ही पत्रकार हैरान रह गया और उसने अचरज से पूछा, जब मैंने आपसे अंग्रेजी में बात की तो आपने हिंदी में जवाब दिया, लेकिन जब मैंने हिंदी में पूछा तो आपने इतनी बेहतरीन अंग्रेजी में जवाब क्यों दिया। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराते हुए

0: कहते हैं,
1: जब आपने अपनी मातृभाषा अंग्रेजी में मुझे सवाल किया तो मैंने अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करते हुए उसमें उत्तर दिया, लेकिन जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में सवाल पूछा तो मैंने आपके इस आदर का जवाब देने के लिए आपकी मातृभाषा अंग्रेजी में उत्तर दिया। भाषा संवाद और एक दूसरे के सम्मान के लिए है, अहंकार प्रदर्शन के लिए नहीं। अब तक आप सोचते थे कि भारत केवल अंधविश्वासों का देश है, लेकिन आज आपने देख लिया कि सभी नदियां अंततः एक ही समुद्र में जाकर मिलती है।
2: स्वामी जी की बात सुनकर वो विदेशी पत्रकार अभिभूत हो गया। सिर झुकाते हुए उसने कहा, स्वामी जी, आपकी भाषा और विचारों की गरिमा ने मेरा भ्रम तोड़ दिया। आज आपने केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की विजय की है। और इसी के साथ उस स्वामी विवेकानंद और विदेशी पत्रकार का संवाद समाप्त हुआ।

0: पत्रकार के साथ भाषाई संवाद के बाद स्वामी विवेकानंद जब हॉल से बाहर एक सुंदर बगीचे में आए, तभी एक संभ्रांत और धनी अमेरिकी महिला एलेना स्वामी जी के ओज और रूप से अत्यधिक प्रभावित होकर उनके मार्ग में आकर खड़ी हो गई और व्याकुलता और आकर्षण में एलेना ने कहा, स्वामी जी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता और इस दिव्य स्वरूप पर मोहित हो गई हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। एलेना की बात सुनते ही विवेकानंद चौंक पड़े, पर पूरी तरह शांत होकर कहा,
1: देवी, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? मुझसे आपको क्या प्राप्त होगा?
0: मैं आपके जैसा ही एक गौरवशाली, ओजस्वी और बुद्धिमान पुत्र चाहती हूँ, और वह केवल तभी संभव है जब आप मुझसे विवाह करें।
1: देवी, इतनी छोटी सी बात के लिए विवाह की क्या आवश्यकता? आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। इस तरह आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा और मेरा सन्यास धर्म भी सुरक्षित रहेगा। हे माता, मुझे अपना पुत्र स्वीकार करें।
0: स्वामी जी की इस असीम पवित्रता और उच्च विचार को देखकर एलेना निशब्द रह जाती है और रोते हुए उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। ओह स्वामी जी, ओह, आप सचमुच साक्षात ईश्वर के रूप हैं। धन्य है भारत भूमि जिसने आप जैसे महापुरुष को जन्म दिया। स्वामी विवेकानंद हाथ जोड़कर विनम्रता से नमन करते हैं और पश्चिमी जगत में भारतीय वेदांत का विजय शंखनाद गूंज उठता है। स्वामी जी पश्चिमी देशों में वेदांत का डंका बजाकर भारत लौटे हैं। वे अपने गुरु भाइयों और शिष्यों के साथ गंभीर चर्चा कर रहे हैं। एक युवा शिष्य उनसे पूछता है, स्वामी जी, पश्चिमी लोग वेदांत के गुरु सिद्धांतों को कैसे समझ पाए? वह तो केवल जंगलों और गुफाओं में बैठकर ध्यान लगाने का विषय है ना? विवेकानंद बहुत ही गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहते हैं,
1: नहीं मेरे बच्चे, यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल रही है। वेदांत केवल जंगलों या किताबों में बंद रहने के लिए नहीं है, उसे दैनिक

0: कर्मों और व्यावहारिक जीवन में उतारना होगा, यही व्यावहारिक वेदांत है।
1: शशि भी कहता है, नरेंद्र तुम व्यावहारिक वेदांत को समाज में किस रूप में देखना चाहते हो?
0: शशि, जब तक देश में एक भी व्यक्ति भूखा और अज्ञानी है, तब तक मंदिर के पत्थरों की पूजा करना व्यर्थ है। भगवान केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर शिव रूप में निवास करते हैं। इसीलिए जीव सेवा ही शिव सेवा है। हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो आध्यात्म के साथ साथ समाज की व्यावहारिक सेवा भी करे।
1: समय बीतता गया और इस उद्घोषणा के बाद कोलकाता में 1 मई 1897 को अपने गुरु भाइयों और भक्तों की को संबोधित करते हुए स्वामी जी मंच से एक नई संस्था के उद्देश्य को घोषित करते हैं।
0: भाइयों, आज हम गुरुदेव के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर रहे हैं। हमारा मूल मंत्र होगा आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च, अर्थात अपने मोक्ष और संसार के कल्याण के लिए कार्य करो।
1: उनकी इस उद्घोषणा के बाद युवा शिष्य कहता है, स्वामी जी, इस मिशन का मुख्य कार्य क्या होगा? क्या हम केवल धर्म ग्रंथों का पाठ करेंगे?
0: नहीं, हमारा मिशन अकाल, प्लेग और महामारियों में लोगों की सेवा करना होगा। हम अस्पताल खोलेंगे, स्कूल बनाएंगे और गरीबों तक शिक्षा पहुंचाएंगे। यदि देश के दरिद्र नारायण बनकर हमारे सामने खड़े हैं, तो उनकी सेवा ही हमारा सर्वोच्च धर्म है। उठो, कमर कसो और इस महायज्ञ में अपनी आहुति दो।
1: सभी उपस्थित लोग जय श्री गुरु महाराज के जय घोष के साथ स्वामी जी के इस लोक कल्याणकारी संकल्प को सहर्ष स्वीकार करते हैं। समय का पहिया घूमता जाता है और वह भी समय आता है, 4 जुलाई 1902 की दोपहर, बेलूर मठ, गंगा तट। स्वामी विवेकानंद जी का स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से अत्यधिक परिश्रम के कारण शिथिल है, परंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक दिव्य शांति है। वे मठ के बरामदे में टहल रहे हैं, तभी चिंतित स्वर में एक युवा ब्रह्मचारी उनके पास आता है और कहता है, स्वामी जी, आप विश्राम क्यों नहीं करते? चिकित्सक ने आपको अधिक बात करने और परिश्रम करने से मना किया है। आपका यह अमूल्य जीवन इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। विवेकानंद गंगा की लहरों को देखते हुए मंद मुस्कान के साथ कहते हैं,
0: मेरे बच्चे, यह शरीर तो एक वस्त्र की भांति है। वस्त्र जब पुराना और जीर्ण हो जाए तो उसे बदल देना ही नियति है। मेरी आत्मा अब इस पिंजरे से मुक्त होने को व्याकुल है, लेकिन याद रखना, मैं चाहे संसार में इस शरीर में हूँ या न रहूँ, मेरी वाणी और मेरे विचार सदैव तुम लोगों के बीच गूंजते रहेंगे।
1: और इस गूंज वाले शब्द के बाद स्वामी जी ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। स्वामी ब्रह्मानंद और कुछ अन्य शिष्य कमरे में प्रवेश करते हैं। वातावरण में एक भारी मौन और दिव्यता का ज्ञान फैलता है। ब्रह्मानंद धीमे स्वर में कहता है, नरेंद्र, तुम्हारी आंखें इतनी अंतर्मुखी क्यों हैं? आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। विवेकानंद ध्यान से धीरे से आंखें खोलते हुए ब्रह्मानंद का हाथ थाम कर कहते हैं,
0: मेरा काम पूरा हो

0: चुका है। अब मैंने भारत के पुनरुत्थान का जो बीज बोया है, अब वह एक विशाल वट वृक्ष बनेगा। अब इस मशाल को आगे ले जाने की जिम्मेदारी देश के युवाओं की है।
1: विवेकानंद जी की बात सुनते ही ब्रह्मानंद भावुक हो जाते हैं और कह बैठते हैं, तुम्हारा संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या है नरेंद्र?
0: उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और उन ऋषियों के पास जाओ जो ज्ञान से परिपूर्ण हैं। उस ज्ञान को आत्मसात करो और मानव का कल्याण करो। यदि तुम में आत्मविश्वास है तो तुम ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को परास्त कर सकते हो। कमजोर होना ही सबसे बड़ा पाप है। वीर बनो, साहसी बनो और अपनी मातृभूमि की सेवा में सर्वस्व अर्पण कर दो, सर्वस्व अर्पण कर दो।
1: और इस महान संदेश के बाद 4 जुलाई को रात के 9 बजे स्वामी जी एक गहरी सांस लेते हैं और महासमाधि में लीन हो जाते हैं।

0: हाँ प्रिय श्रोतागण, स्वामी विवेकानंद की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास, उसका चरित्र और उसकी सेवा भावना है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि शिक्षा केवल पुस्तकें पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करने का माध्यम है। उन्होंने युवाओं को निर्भय बनने, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने और राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की खोज ही ज्ञान का पहला चरण है। मानव सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। आत्मविश्वास, अनुशासन और परिश्रम से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। युवा शक्ति यदि जागृत हो जाए तो राष्ट्र का भविष्य बदल सकता है। धर्म का वास्तविक स्वरूप मानवता, प्रेम, सेवा और विश्व बंधुत्व है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें और उसे समाज तथा राष्ट्र के कल्याण में लगा दें तो हम स्वयं भी सफल बन सकते हैं और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकते हैं। तो हमारे साथ गुरु विश्वास जी बैठे हुए हैं और हम मैं उनसे यह जानना चाहूँगा कि आप यह बताइए कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हमें किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए और सबकी सेवा करनी चाहिए, यानी ईश्वर ने जो भी वस्तु बनाई है या जो भी जीव बनाए हैं उन जीवों में, चाहे वह इंसान हो या जीव जंतु हो, सभी में ईश्वर का वास होता है। यानी हम यदि उस जीव जंतु का या लोगों का ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं और वही जो है ईश्वर से हमारा साक्षात जो है साक्षात्कार है और ईश्वर का ज्ञान वहीं प्रारंभ होता है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं?
1: जी हाँ प्रोफेसर जी, मैं एक बहुत ही सशक्त उदाहरण के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। देखिए, एक शिक्षक, एक टीचर, प्रोफेसर जब अपनी कक्षा में जाता है तो उसके सामने मान लीजिए 40-30 विद्यार्थी हैं, तो वो सभी विद्यार्थियों को एक ही दृष्टि से, एक ही नज़र से देखता है। इसीलिए बोलते हैं यूनिफॉर्म। जब हम कोई भी स्कूल में यदि हम जाएं किसी भी स्कूल में, तो वहाँ पर जो विद्यार्थी होते हैं एक ही प्रकार की पोशाक पहनते हैं, यूनिफॉर्म। तो शिक्षक जब कक्षा में प्रवेश करता है उसको सभी को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है।
0: जी।
1: और जैसे आपने बोला, हर एक के शरीर में एक आत्मा वास करती है जो शुद्ध, शाश्वत और अपरिवर्तनीय होता है।
0: जी।
1: बाद में जब हमारा स्वभाव बदलता है इत्यादि, तब कुछ लोग कपटी हो जाते हैं, कुछ लोग साधु हो जाते हैं, ये सब प्रभाव के कारण, हैबिट्स के कारण। लेकिन शिक्षक का काम यही है, जैसे स्वामी विवेकानंद तो एक बहुत बड़े शिक्षक हुए और उन्होंने बहुत सारा ज्ञान सभी लोगों में बांटा और उनके लिए सभी लोग बराबर। एक उदाहरण हमने लिया था अछूत का, याद है ना? तो उनके हाथ पकड़कर, उस अछूत का हाथ पकड़कर, कंधे पर हाथ रखकर उसकी भलाई उन्होंने की, सहायता की। तो ऐसे हमें जीना चाहिए, तब जाकर संसार का भला होगा, कल्याण होगा।
0: जी, तो ये अछूत, भेदभाव, जात पात, इसका कोई हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है। प्रेम ही एक ऐसा आधार है जिससे हम एक दूसरे दिलों को जोड़ सकते हैं।
1: भेदभाव से पड़े होकर, उससे ऊपर उठकर हमें कर्म करना चाहिए
0: और मानवता के बारे में सोचना चाहिए। तो हाँ श्रोतागण, कि जैसा कि हमेशा मैं आपसे मुहावरे पूछता हूँ, इस बार के जो मुहावरे हैं वे खाने पीने की चीज़ों पर हैं। तो ऊँट के मुंह में जीरा, पेट में चूहे कूदना, फिर से सुन लीजिए। पहला है

0: है ऊंट के मुंह में जीरा, दूसरा है पेट में चूहे कूदना। इसका अर्थ आप खोजिएगा और इसका अर्थ और उस पर लिखी हुई कहानी गुरु बिस्वा अगले कार्यक्रम में सुनाएंगे। पिछली बार जो आपसे मुहावरे पूछे गए थे वे आँख पर थे और पहला था आँख का तारा होना, जिसका अर्थ गुरु बिस्वा अभी बताएंगे।
1: उसका अर्थ है बहुत प्यारा होना, अत्यंत प्रिय होना। एक वाक्य में यदि इसका प्रयोग करेंगे तो ऐसा होगा, छोटा बच्चा अपने परिवार की आँख का तारा होता है।
0: जी, और दूसरा जो मुहावरा है आँखों में धूल झोंकना।
1: जी हाँ, इसका अर्थ है धोखा देना, चालाकी से ठग लेना। जब मान लीजिए जैसे बोलते हैं वह पुलिस की आँखों में धूल झोंक कर भाग गया। श्रोताओं, एक छोटी सी कहानी है इस पर आधारित, कृपया इसका रसास्वादन कीजिए। रमेश एक ईमानदार व्यापारी था। उसके गाँव में एक चालाक व्यक्ति लोगों को झूठे वादे करके ठगता था। वह अपनी मीठी बातों से सबकी आंखों में धूल झोंक कर धन हड़प लेता था। एक दिन उसने रमेश को भी धोखा देने का प्रयास किया, लेकिन रमेश ने समझदारी और सतर्कता से उसकी चाल पहचान ली। उसने गांव वालों को सचेत किया और उस व्यक्ति की धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया। अंततः वह ठग पकड़ा गया और लोगों का विश्वास वापस लौटा। इस घटना से सभी ने सीखा कि जीवन में केवल बाहरी दिखावे पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि विवेक और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।
0: सुंदर एवं स्वरचित कहानी सुनाने के लिए आपका हृदय से आभार गुरु बिस्वा।
1: धन्यवाद।
0: श्रोतागण, आपके लिए आमंत्रण संदेश भी है। हर महान व्यक्तित्व की सफलता के पीछे संघर्ष, अनुशासन, सेवा और अटूट आत्मविश्वास की एक प्रेरणादायक कहानी होती है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा गुरु, शिक्षक या प्रेरक व्यक्ति आया है जिसने आपके जीवन की दिशा बदल दी हो? क्या आपने कभी किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ सेवा की है या किसी कठिन परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास के बल पर सफलता प्राप्त की है? अनकही कहानी आपको आमंत्रित करता है कि आप अपनी ऐसी प्रेरक कहानियां हमें लिखकर भेजें जो सत्य, सेवा, राष्ट्रप्रेम, युवा शक्ति, शिक्षा और मानवीय मूल्यों से जुड़ी हों। आपकी चुनी हुई कहानियां हमारे रेडियो कार्यक्रम में प्रसारित की जाएंगी और आगे चलकर एक पुस्तक का हिस्सा भी बनेंगे। तो आइए, स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते हुए हम यह संकल्प लें कि हम स्वयं को सशक्त बनाएंगे, समाज की सेवा करेंगे और अपने ज्ञान तथा चरित्र से राष्ट्र के निर्माण में योगदान देंगे। अपनी रचनाएँ प्रोफेसर राजशेखर @gmail.com पर आप भेज सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपनी सोच को स्वर दीजिए, क्योंकि कौन जानता है आपकी एक प्रेरक कहानी किसी युवा के मन में आत्मविश्वास, सेवा और राष्ट्रभक्ति की नई ज्योति जगा दे। धन्यवाद, नमस्कार।
1: प्रोफेसर राज जी, इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, कहा गया है हंस श्वेतो बक श्वेतो को भेदो हंस बकयो नीर क्षीर विवेकेतु हंसो हंसो बक बको बक। अर्थात हंस और बगुला दोनों ही सफ़ेद रंग के होते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि हंस में नीर क्षीर विवेक अर्थात जल और दूध में भेद करने की क्षमता माना गया है, जबकि बगुले में यह गुण नहीं है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल बाहरी रूप या दिखावा महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि वास्तविक मूल्य विवेक सही। मनुष्य को हंस की तरह जीवन में सत्य और असत्य, उचित और अनुचित में अंतर करने की शक्ति रखनी चाहिए। यही कारण था कि महाराजा अजीत सिंह ने नरेंद्र को विवेकानंद नाम से संबोधित किया और उन्हें यह नाम दिया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद सचमुच विवेक शक्ति से संपन्न थे। प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राज को विदा दीजिए। अगले सप्ताह फिर एक ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद और नमस्कार।

0: नमस्कार, बुधवार 15 जुलाई 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक के तहत 48 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने 334 लोगों को गिरफ्तार किया है। नॉर्दर्न डिवीजन, मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ और साउदर्न डिवीजन में तड़के चलाए गए। व्यापक अभियान के दौरान कई कुख्यात अपराधी को पकड़े गए। पुलिस ने इस कार्रवाई को पूरी तरह सफल अभियान बताया। अमरीकी उप सहायक विदेश मंत्री सारा ट्रॉटमैन 19 जुलाई तक मॉरिशस के दौरे पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य अमरीका और मॉरिशस के बीच व्यापार, निवेश और व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत करना है। दौरे के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। एग्रीटेरा में 2026 की कटनी शुरू हो गई है। इस साल 6,70,000 टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले साल के 6,46,000 टन से अधिक है। इसके लिए कंपनी अपनी मशीनों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है, जिसमें 2 नई कटाई मशीनों को शामिल किया गया है, ताकि उत्पादकता और सटीक खेती को बेहतर बनाया जा सके। और विदेश में अमेरिका द्वारा सैन्य ठिकानों पर नए हमलों के जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद रखने और क्षेत्र के अन्य तेल व गैस व्यापारिक मार्गों को भी ब्लॉक करने की धमकी दी है। पेश है अब समाचार विस्तार से। 48 घंटों से भी कम समय में ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक के तहत पुलिस ने 334 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल और इस बुधवार को सुबह 3 से 8 बजे के बीच नॉर्दर्न डिवीजन, मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ और साउदर्न डिवीजन ने पुलिस की विभिन्न इकाइयों के सहयोग से अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस की इन कार्रवाइयों से कई कुख्यात अपराधियों, चोरों और अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार ये पूरी तरह से एक सफल अभियान रहा। काविंता पेसो, अदिति अवतार।
1: अबेकोम्बी स्थित मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ पुलिस मुख्यालय के प्रांगण में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुभाष धुमन उन अफसरों के साथ एक डीब्रीफिंग सत्र करते दिखे, जिन्होंने कल एक बड़े ऑपरेशन में भाग लिया था, जिसे थंडर स्ट्राइक नाम दिया गया। पोटली इलाके और देश के उत्तरी प्रांत में सुबह तड़के 3 बजे से 8 बजे के बीच कई छापे मारे गए, जिसके लिए अलग अलग इकाइयों के 72 अफसर तैनात किए गए थे। मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ ने यह अभियान नॉर्दर्न डिवीजन तथा कई अन्य इकाइयों के साथ मिलकर चलाया। इनमें सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट, डिविजनल सपोर्ट यूनिट, डिविजन क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, स्पेशल मोबाइल फोर्स, स्पेशल सपोर्टिंग यूनिट और पुलिस डॉग यूनिट शामिल रही। इस ऑपरेशन के तहत 177 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 24 लोगों को घरेलू हिंसा और बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा के मामलों के लिए।
2: Donc, dans chaque division, il y en a souvent des personnes qui wanted pour différents types d'offenses. Et que la police, dans sa

0: Dans différentes divisions, là, quand on gagne le support de manunité spécialisée, l'IPM et augmente notre capacité d'opération sur le terrain. Ça, l'IPM et accède dans différentes zones. L'IPM et retrace dans le suspect qui est recherché pendant un certain temps. Et que surtout, avec ce genre d'opération, on nous lance un signal faux qui, peu importe que ça ait été, la police est capable de faire l'opération, est capable d'arrêter dans les gens.
1: 32 को चोरी, 50 को अवैध रूप से रहने, 46 लोगों को अरेस्ट वारंट पर और 25 को अन्य अपराधों के आरोप पर हिरासत में लिया गया। डीएसपी सोहेली जालाम कहते हैं, आज सुबह 3 बजे से 8 बजे के बीच इसी प्रकार से थंडर स्ट्राइक अभियान के एक और मिशन के लिए कई इकाइयां दक्षिण में सदर्न डिवीजन की टीम की मदद के लिए सक्रिय हुई। 156 नई गिरफ्तारियां की गई, इनमें 118 वारंट के आधार पर और 38 गिरफ्तारियां चोरी, अश्लील हरकतों और पैरोल की शर्तों के उल्लंघन जैसे विभिन्न अपराधों के लिए की गई। इस तरह के ऑपरेशन से पुलिस ज्यादा तेजी और कुशल रूप से गिरफ्तारियां कर पाती हैं। ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक देश के कई अन्य इलाकों में भी जारी रहेगा। जाहिर है पुलिस की छापेमारी की तारीख और समय गुप्त रखा जाता है।
2: मिर्गी यानी एपिलेप्सी के लिए निर्धारित दवा प्रेगाबालीन का ड्रग उपयोगकर्ताओं द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। एफसीसी द्वारा की गई जांच से स्वास्थ्य मंत्रालय की दवा सेवाओं में इस दवा की आपूर्ति को लेकर कई खामियां सामने आई हैं। आयात प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर की गई इस जांच के जवाब में दवा सेवाओं के प्रमुख ने स्वीकार किया है कि वे एक पुराने कानूनी ढांचे का सामना कर रही हैं और उन्होंने दवा क्षेत्र को विनियमित करने वाले कानूनों में संशोधन की आवश्यकता जताई है। कुणाल गुजी, अदिति अवतार।
1: प्रेगाबालीन नामक दवाई का इस्तेमाल आमतौर पर मिर्गी यानी एपिलेप्सी के इलाज के लिए होता है, लेकिन अब कुछ लोग इसके नशे के असर के कारण भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। इस दवाई के आयात को लेकर एफसीसी की जांच में इसकी खरीद के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल सर्विसेज विभाग के स्तर पर कई खामियां पाई गई हैं। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज की एक्टिंग निदेशिका, जो पिछले 6 महीनों से ये पद संभाल रही हैं, वे कहती हैं इस दवाई के लिए प्रेस्क्रिप्शन की मांग होती है, जिसके लिए वे मना नहीं कर सकती। उनके अनुसार जहां एक तरफ मंत्रालय ने स्थानीय स्तर पर प्रेगाबालीन को नियमबद्ध किया है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दवाई बिना प्रेस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर उपलब्ध है। बीबी वाहिदा गोपी कहती हैं, मॉरिशस में इस दवाई के प्रेस्क्रिप्शन को लेकर गलत तरीका चलता है। एक समय पर प्रेगाबालीन प्राप्त करने के लिए प्रेस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन ये देखा गया कि नौजवान और ड्रग्स लेने वाले लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो हमें बेहतर कंट्रोल के लिए इसे डेंजरस ड्रग्स एक्ट के स्केड्यूल 3 में शामिल करना पड़ा। एक कोटा होता है जिसके तहत होलसेलर्स को ये सप्लाई किया जाता है, जिसके लिए रिटेलर्स को बदले में उचित कारण उपलब्ध कराना होता है। इस स्तर पर हमें काम करना पड़ेगा ताकि इस प्रणाली को बेहतर किया जा सके। उनका कहना है कि फार्मास्यूटिकल उत्पादों के नियंत्रण से जुड़े पुराने कानूनी ढांचे के चलते इस विभाग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याद रहे कि ये दवाई डेंजरस ड्रग्स एक्ट के अंतर्गत नियंत्रित है, लेकिन इसकी बिक्री फार्मासियों के साथ साथ सड़कों पर तस्करी के तहत की जाती है। बीबी वाहिदा गोपी कहती हैं, एमओआरए द्वारा कायम एक डेटाबेस था जो फार्मेसी बोर्ड की मदद के लिए था, ताकि सप्लायरों और निजी फार्मेसियों के स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हम तक नहीं पहुंचा है। अब हम जल्द से जल्द इसे स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि इससे कई समस्याओं का समाधान हो पाएगा। एफसीसी की जांच में रिकॉर्ड दर्ज करने, ट्रेसिंग और फॉलोअप की क्षमताओं में कमी आदि समस्याएं पाई गई हैं, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, ऑडिटिंग और रेगुलेटरी प्रक्रियाओं पर गलत असर पड़ रहा है। एफसीसी के अधिकारी इब्राहिम रोसाई कहते हैं, इसके आयात को लेकर निगरानी और नियंत्रण की बड़ी कमी पाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर मैनुअल प्रक्रियाओं पर अति निर्भरता गलत है। उनके पास जरूरी साधन मौजूद हैं, लेकिन वे सही तरीके से स्थापित नहीं हैं। हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर कायम करने की सिफारिश पेश की है, जो ये स्पष्ट बता सके कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। इस प्रणाली के कायम होने से मंत्रालय के स्तर पर कई समस्याएं सुलझाई जा सकेंगी।

0: bon problème qui est capable de lever pendant sa bonne fonction qui est non au niveau du ministère de la Santé.
1: Financial Crimes Commission इस बात पर बल दे रहा है कि उसकी सिफारिशें लागू करना कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है। जांच के तहत ये भी सामने आया है कि कस्टम्स के स्तर पर बड़ी मात्रा में फैगाबालीन जब्त की गई है।
2: अमरीकी उप सहायक विदेश मंत्री सारा ट्रॉटमैन इस सप्ताह 19 जुलाई 2026 तक मॉरिशस के दौरे पर हैं। ये दौरा अमरीका और मॉरिशस के बीच व्यावसायिक जुड़ाव को आगे बढ़ाने और हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत करने के नए अवसरों का पता लगाने के लिए हैं। इस यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। सिंचा मुतु रजनीपीकर।
3: अफ्रीकी मामलों के लिए अमेरिकी डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी सारा ट्रॉटमैन की उपस्थिति में आर्टेमिस के समझौतों का अनुसमर्थन मॉरिशस की ओर से किया जाएगा। इस तरह मॉरिशस एक शांतिपूर्ण एवं जिम्मेदार सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में अमेरिका और अन्य 69 देशों में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा सारा ट्रॉटमैन एक्विजिशन क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर में भी भाग लेंगे, जिससे कि सुरक्षा, संकट संचालन और अमेरिका तथा मॉरिशस के बीच मानवतावादी सहायता को लेकर लॉजिस्टिक सहयोग बढ़े। अपने औपचारिक दौरे के अंतर्गत अगले 6 से 9 दिसंबर 2026 के बीच लगने वाली अमेरिकी अफ्रीकी व्यावसायिक शिखर बैठक की तैयारी को लेकर भी बातचीत की जाएगी। उच्च स्तर के सरकारी उच्चाधिकारी, कंपनी संचालक तथा अमेरिकी एवं अफ्रीकी निवेशक इस शिखर बैठक में भाग लेंगे। इससे व्यावसायिक एवं निवेश संबंध मजबूत होंगे, व्यावसायिक साझेदारी तथा आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहित किए जाएंगे। अन्य अहम बात, बागाटेल में नए अमेरिकी दूतावास स्थल का दौरा।
2: एमएसएम के अध्यक्ष जूली रोंगो ने पेंशन सुधार का मुद्दा उठाते हुए पेंशन प्रणाली का मूल्यांकन करने वाली विशेषज्ञ समिति के गठन पर टिप्पणी की। उनका मानना है कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उनको सुनते हैं।
4: Mais seulement le constat qui nous fait, c'est qu'ils m'ont dit là et nous pensons qu'ils sont bizarres. Et nous avons les autres dîmes au sein de sa comité. Là, pour mener une réflexion bien en profondeur, la réforme pension et qu'il y ait l'équilibre au sein de sa comité là.
2: 2026 की कटनी शुरू हो गई है। अग्रितेरा में कटनी का काम 29 जून से शुरू हो चुका है। इस साल ग्रुप को लगभग 6,70,000 टन गन्ने के उत्पादन की उम्मीद है, जबकि पिछले सीजन में ये 6,46,000 टन था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रितेरा अपने कार्यों का आधुनिकीकरण जारी रखे हुए हैं। मौजूदा बेड़े में 2 नई कटाई मशीनें शामिल की गई हैं, जिससे उत्पादकता में सुधार और सटीक कृषि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सड़क यातायात में सुधार के उद्देश्य से 2 परियोजनाएं राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्री के एजेंडे में शामिल थीं। ट्रियानो में अजय गणेश ने 43 मिलियन रुपए की लागत से बनी नई पेलखें ट्रियानो लिंक रोड का उद्घाटन किया। इसके बाद वे फ्लिकॉन्फ्लाक गए, जहां उन्होंने 160 मिलियन रुपए की अनुमानित लागत वाली भविष्य की बायपास परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। अरब फुटबॉल की बात करते हैं। फ्रांसीसी टीम को स्पेन ने पूरी तरह से पछाड़ दिया और वे 2026 विश्व कप के सेमीफाइनल से बाहर हो गए। मंगलवार को खेले गए मैच में दबाव में दिखी फ्रांसीसी टीम लाहौजा से 2-0 से हार गई। इस प्रकार फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने से चूक गया है। मारिन रेजिजू, अरविंद बिसेसर।
5: Spain, the European champions, will play the World Cup final.
6: Dallas में स्पेन ने क्लास दिखाया और ओले ओले गाने का और मौका मिल गया। न्यूयॉर्क में भी गा सकते हैं। फैंस बहुत खुश, क्योंकि शुरुआत से ही स्पेन की टीम का दबदबा रहा और मैच का कंट्रोल ये लोग ले चुके थे। और ऐसे में लुकास जी, जो थोड़ा घबरा गया, एक पेनाल्टी कंसीड कर गया लामिन यामाल पर, और 22वें मिनट पर ओयोज़ाबाल ने कोई गलती नहीं की, 1-0 से लाहौर आगे। दूसरे भाग में उसी तरह से शुरुआत हुई जैसे पहले भाग में, वही रिदम, वही खेल में रफ्तार, और फिर से स्पेन की टीम फ्रांस पर हावी हुई। एक बहुत ही सुंदर खेल ओल्मो का, और उससे गेंद जाता है पेड्रो कोहो के पास। स्पेन की टीम 2-0 से आगे। स्पेन की टीम और एक गोल स्कोर कर सकती थी, लामिन यमाल का गोल जिससे ऑफसाइड के लिए रद्द कर दिया गया। इस मैच में फ्रांस की टीम जैसे फुटबॉल खेलना भूल गई थी और उधर उनाई साइमन को तनिक भी परेशान नहीं किया ले ब्लू ने। अब ये लोग तीसरा स्टार अपने पास नहीं रख पाएंगे, सपना चकनाचूर हो गया। मैच 2-0 स्पेन की जीत। अब रविवार को स्पेन अपना दूसरा फाइनल खेलेगा और दूसरा वर्ल्ड टाइटल जीतना चाहेगा, जबकि फ्रांस को छोटा फाइनल यानी तीसरे स्थान के लिए मैच खेलना होगा।
2: अटलांटा में अर्जेंटीना का सामना आखिरकार विश्व कप में इंग्लैंड से होगा। एक तरफ मौजूदा विश्व चैंपियन है तो दूसरी तरफ टोमास टुशेल के नेतृत्व वाली वो टीम है जो लगभग 60 वर्षों के इंतजार को खत्म करने का सपना देख रही है। फाइनल में जगह बनाने की जंग जारी है और इतिहास शायद एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है।
6: माराडोना का मशहूर हैंड ऑफ गॉड और लाजवाब गोल। मैच में टेंशन भरपूर, इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मैच होता है तो ऐसा ही होता है, क्लासिक मैच होता है इन दोनों के बीच। इस बार 2026 में कौन आएगा आगे ये देखना है। लेजेंडरी नंबर 10 अर्जेंटीना का अभी तक सपना देख रहा है कि लियोनेल मेसी फिर से वर्ल्ड चैंपियन बने और वो इतिहास में वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला है। 21 गोल स्कोर कर चुका है, यहाँ पर भी स्कोर करना चाहेगा। लेकिन अर्जेंटीना सिर्फ अपने मेसी पर निर्भर नहीं करता, और ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं। डिफेंस में क्रिस्टियन रोमेरो, लिजांड्रो मार्टिनेज, एमिलियानो मार्टिनेज जैसे डिफेंडर हैं जो किसी भी अटैक को सह सकते हैं या फिर उन्हें तोड़ सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना एक ऐतिहासिक डबल पूरा करना चाहते हैं, यानी लगातार दो साल चैंपियन बनना। ऐसा सिर्फ ब्राजील ने किया था 1962 में। उसके सामने है इंग्लैंड के द थ्री लायंस जो 60 साल बाद फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। यहाँ आने के लिए टोमास टुशेल के जवानों ने रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कोंगो को हराया, फिर मेक्सिको को, नॉर्वे को, और उनका आत्मविश्वास प्रबल है। उनके खिलाफ अर्जेंटीना की टीम को बच के रहना होगा। कप्तान हैरी केन के साथ साथ जूड बेलिंगम भी हैं, दोनों 6-6 गोल स्कोर कर चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है इंग्लैंड की टीम में वर्ल्ड कप में दो खिलाड़ी 6 गोल स्कोर कर पाए हैं। अटलांटा में ये मैच होगा। अब देखा जाएगा अर्जेंटीना या इंग्लैंड में से एक टीम जाएगी फाइनल में, जहां पर स्पेन पहले से इंतजार कर रहा है। दो महारथी लेकिन जगह सिर्फ एक।
2: विदेश की खबरों में ईरान ने क्षेत्र में अन्य व्यापारिक मार्गों को भी ब्लॉक करने की धमकी दी है क्योंकि अमेरिका ने सैन्य ठिकानों पर हमले की एक नई लहर शुरू की है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि जब तक अमेरिका अपने आक्रामक कृत्यों को बंद नहीं करता तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र के अन्य तेल और गैस निर्यात चैनलों को भी बंद किया जा सकता है। नीतू शाजिहा।
7: ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिकी हमले खत्म नहीं होंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा। तेहरान ने चेतावनी दी कि इस क्षेत्र से तेल और गैस का निर्यात तो या सभी के लिए उपलब्ध होगा या फिर किसी के लिए नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम कागीबाबादी ने मंगलवार शाम को अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी के फिर से लागू किए जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि अमरीका ने दोनों देशों के बीच तय समझौते प्रोटोकॉल को प्रभावी रूप से समाप्त किया है। इस प्रोटोकॉल के तहत अमरीका ने ईरानी तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का वादा किया था। हालांकि पिछले सप्ताह संघर्ष फिर से भड़कने के बाद तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 13 जुलाई सोमवार को ब्रेंट की कीमत 9% से अधिक बढ़ गई थी। इसके बाद जब डोनाल्ड

0: ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में गुजरने वाले जहाजों पर 20% का टैक्स लगाने की योजना वापस लेने की घोषणा की, तब तेल की कीमतों में कुछ कमी देखी गई। ये प्रस्ताव तेहरान की उस योजना से प्रेरित है जिसके तहत वो इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलना चाहता था, जबकि अब तक ये मार्ग निःशुल्क था।
1: और अब अंत में चली जाती है स्थानीय मौसम का हाल।
2: उत्तर पूर्व से पाए जा रहे बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और कभी कभी देश के पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्रांतों पर बारिश होगी। ऊंचाइयों पर कोहरे छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल दोपहर बाद को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 7:45 बजे सूरज उगेगा और शाम 5:46 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम लुडोविक को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय शाम के 6:21 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: NBC Radio.TV.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। नंबर 15 लाक्वाजे वाली दे प्रेत पोटलुई में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री अजय प्रीतम जगलाल, जो लीले नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे कल सुबह 10 बजे उनकी मां श्रीमती किस्मतिया नीनोत के घर नंबर 15 लाक्वाजे वाली दे प्रेत पोटलुई से उठाकर सिपाही भोले की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। एसएसओ लेन मोताबा में 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती फुलबसिया रुतिया नायको, पैदाइशी नाम जिरपिया और जो राधिक नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके घर एसएसओ लेन मोताबा से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। इंग्लैंड में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री ईश्वर दत्त बुस्तुन, जो दत्त नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। वे पहले बुस्तुन लेन लाफलोगा रहते थे। उनकी अर्थी शुक्रवार को सुबह सवा दस बजे उनके घर इंग्लैंड से उठाकर इंग्लैंड की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन ऑन फ्राइडे एट 10:15। रेलवे रोड नोत्रदाम शुमेलागा में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुसमी काली, जो मैनी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके घर रेलवे रोड नोत्रदाम शुमेलागा से उठाकर बामोशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: NBC Radio, 24 hours a day.
1: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल गुरुवार 16 जुलाई 2024 सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक ब्लू बे में और आसपास के इलाकों में जैसे कि एवेन्यू कोडोनिये, एवेन्यू कारोंग और एवेन्यू जेग्रेट में भी बिजली की सप्लाई

में कटौती लाई जाएगी और गुरुवार 16 जुलाई 2024 सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रियांबेल सुरीनाम मोसलमान दनपत और सांली श्यामे रियांबेल में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: नहीं सो। शाम के 6:30 बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। जी हाँ, मैं उषा कौर यहाँ पर और लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए नई सोच कार्यक्रम, और आप लोग जुड़े हुए हैं आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन के साथ। और आज का प्रोग्राम आप लोगों के नाम हम करते हैं, और आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम 7 बजे तक का भावगीत आप लोगों के नाम हम करते हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा। सितमगर फिल्म से लिया गया ये पहला गाना सुनते हैं।

6:55 हुए हैं। जी हाँ, ये गीत सुनते हैं सुषमा श्रेष्ठा, पारमिनी कोल्हापुरे और साथियों की आवाज़ों में। और यही गीत के साथ ये कार्यक्रम नई सोच कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, 7 बजे के बाद तीनों की आवाज़ प्रोग्राम आप सुनेंगे।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: दिलों की आवाज,
4: जी हाँ, 7 बज चुके हैं शाम के और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज प्रोग्राम, जब हम चलाएंगे 80s और 90s के गाने। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है RM Free Radio, रेडियो मनोरंजन पर, और यहाँ पर उषा कौर साथ निभाने के लिए, और हम साथ देंगे 9 बजे तक। 2 घंटे का प्रोग्राम है और उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। नंबर है 4028074028070, और मैसेजेस आप कर सकते हैं ऑन 5250620 आप क्या कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी तो घर पर जा रहे हैं वापस काम से, तो हम आपको कहते हैं तो चलिए ये कार्यक्रम सुनते हैं, गाने सुनते हैं और खूब रिलैक्स करें। और जो लोग अभी किचन में है खाना बना रहे हैं तो उनको भी हम कैसे बोल सकते हैं, तो बोंको आज आपको बस थोड़ा सा प्यार ऐड करो, खाने में खाना और मज़ेदार हो जाएगा। और चलिए 80s का गाना मोहरा फिल्म से लिया गया पंकज उदास और सादा सरगम की आवाज़ों में।

0: की आवाज की आवाज की आवाज
1: 7:20 हुए हैं श्रोताओं, जिंदगी की भाग दौड़ में अगर कुछ पल खोल कर हंस लिया जाए तो थकान भी मुस्कुराहट में बदल जाती है। हंसी सिर्फ होठों की मुस्कान नहीं बल्कि दिल की रोशनी है। जो लोग मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना जानते हैं वो जिंदगी को जीतना भी जानते हैं। एक प्यारी सी हंसी किसी का दिन बदल सकती है। ये ना धन मांगती है ना शोहरत, बस एक सच्चा दिल चाहती है। इसलिए अपनी मुस्कुराहट को कभी मत छुपाइए, क्योंकि हो सकता है कि उदास चेहरे को इसी की ज़रूरत हो। तो चले बढ़ते हैं आगे और अगला गाना हम चलाएंगे रोहित जी के लिए, जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बोबासा, और साथ ही साथ में संगीता जी हैं जो रहती है क्यों पिप, अभी वो साथ दे रही हैं। आपको भी हम कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी हैं जो रहती हैं सुरीनाम, उनके लिए हमारे तमाम सुनने वालों के नाम। अगला गाना सुनते हैं और कभी अपनी मुस्कुराहट भूलिएगा नहीं।

7:40 हो चुके हैं। कहते हैं दोस्तों, मोहब्बत जब दिल की गहराइयों से निकलती है तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहती, एक पवित्र एहसास बन जाती है। हर दुआ में उसका जिक्र होता है, हर सजदे में उसकी खुशी मांगी जाती है, और दिल ने प्यार की पूजा की है, इसीलिए मोहब्बत को कभी सौदे की नज़र से नहीं देखा। तो चलिए अगला गाना हम चलाने जा रहे हैं गिरीश हरलोल के लिए, जो इस समय हमें सुन रहे हैं। साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। फिल्म का नाम है मिस्टर आशिक, अलका आयाग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। आपको याद दिला दें, यहाँ पर हम चला रहे हैं 80s और 90s के गाने। 4028070 आप कॉल कर सकते हैं, और मैसेजेस जो हैं आप भेज रहे हैं 5250620।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: दोस्तों, जन्मदिन सिर्फ उम्र का एक और साल भरने का दिन नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी के अनमोल लम्हों का जश्न होता है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाते हैं। और यहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं श्रावण भाई, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद सुनल की ओर से, उनकी बीवी कीर्ति, अभिनव, कियान, नव्या और तिलक फैमिली और ख़ासकर अंतिश रामशरण उनको प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं हमेशा। और तो चलिए, हमारे ओर से भी बधाई हो आपको पूरे एमबीसी टीम की ओर से, और जो भी लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो आपको हैप्पी बर्थडे।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: आज बजकर 6 मिनट हुए हैं। श्रोताओं कहते हैं हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी प्यार का साया जरूर मिलता है। जो इस साये की कदर करता है उसकी ज़िंदगी खुशियों की महक से भर जाती है, क्योंकि प्यार का साया सिर्फ हिफाजत नहीं देता, वो हौसला भी देता है, उम्मीद भी देता है और जीने की वजह भी जानता है। और यहाँ पर हमें सुन रही हैं सुदेवी जी फ्रॉम वाकवा। जी हाँ, हमेशा साथ देती हैं, थैंक यू सो मच आपको। और आप सुन रही हैं ये कार्यक्रम और प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। गाना आप मांग रही हैं ट्रियोले के दीदी ललिता और कुशल फैमिली के लिए, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, दिव्यना, मालेगा के अनुषा, किरण, राम रतन परिवार और हमारे सभी लिसनर्स के लिए। प्यार का साया फिल्म से लिया गया कुमार शानू की आवाज़ में।

0: RM3 Radio.
1: फिल्म का नाम है पुलिस और मुजरिम और खास कर ये गाना हम चला रहे हैं नंदिनी के लिए. चलिए नंदिनी, आपके नाम ये गाना जाएगा. और साथ ही साथ में गाना हम चला रहे हैं अनीता जी के लिए जो हमें सुन रही है इस समय. धन्यवाद आपको और गाना खास कर उनके सभी दोस्तों और परिवार के लिए.

0: RM Free Radio. Radio. Radio.
1: तो FM का नाम है तहकीकात और ये गाना खासकर चांदनी पुरुषोत्तम जी के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम ब्रिटानिया साथ देने के लिए बहुत

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चलिए ये प्यारी गज़ल सुनते हैं और इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो चला. आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद. दिलों की आवाज़ प्रोग्राम और मैं उषा कौर आप लोगों से विदा लेती हूँ. मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक आप अपना ख्याल रखें. नमस्कार, शुभ रात्रि.

0: कमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
1: सब संगचालक के आज प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम यह और वन पर्सन रेडियो चैनल एमबीसी रेडियो वॉशर्स और रेडियो मनोरंजन आज बुधवार की रात 15 जुलाई 2026 तभी से लेकर रात के 11 बजे प्रस्तुत बातों के पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का मन करता कोनो भोजपुरी गीत मांगे के टेलीफोन करा कर जगो देव जगो बीच और बेशक हमने के साथ नाचब सा गावब सा कमरवा डुलावब सा संगे संगे और है प्रोग्राम से दुगो चैनल पर एक रेडियो मॉरिशस दूसरा का रेडियो मनोरंजन और ऑनलाइन सुनना चाहते हो तो दबाइया www.mbcradio.tv फिर क्लिक करिए लिसन रेडियो मॉरिशस या रेडियो मनोरंजन और अभी शुरू कर दिया जाएगा बहुत ही प्यारा संगीत के साथ उरीद के तकारी बा गीतवा गैले हवन हाँ भाई दूरी गीतवा गैले हवन तो चल एक साथ सुने उरीद के तकारी बा जी हाँ गीत चाहते सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के श्रोतालों के नाम

संगठन लोग हमने के जो मन है बड़ा चंचल है एगो प्लास्ट नहीं रहे लाई बदलती रहे लाता मन के चला काबू में रखे के मन बड़ा ही चंचल है एके काबू में नहीं रख बा तो मन इधर उधर भटकते रही मन के जब काबू में कर ली बात तब सब कोनो काम करी बड़ा ही चंचल है मन कबू हाई बात सोचेला कबू हाउ बात सोचेला सोचते रहेला है मन जुन है तो अपन मन की कंट्रोल करिया हम के साथ दिया रिजमोशस रेडियो मनोरंजन पर अगला गीत सबसे मिल के लोलमन रोहित सिंह गीत वगैरह वन और यह गीत हम चलावते ऐसा खासम खास गीत चित्रा और ज्ञान विश्राम करती रहे लन मॉडल भी है सब विश्राम परिवार के नाम अनिता लाल जी मॉडल भी सेवन अनिता अफ्रीकन फ्लैग से और है गीत चलाओ अब जा सुदेवी जी के नाम सुदेवी जो हवन वाकवा से हमने के साथ देवते वन और है गीत चलाओ अब जा फ्रियोले की दीदी लालिता सब कुशल परिवार आत्माराम भैया दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेंगा के सब राम रतन परिवार के नाम और जितना कोई भी रात के मिलकर सुनाता है गीत तुलो के नाम भी सबसे मिल के लोलमन रोहित सिंह की आवाज़ में

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: कोनो भी बिजनेस लेबा तो बिजनेस में कबो कबो प्रॉफिट होला, कबो कबो हानि होला, एकरे बिजनेस बुलाला। हमेशा प्रॉफिट खोजबा तो नामुमकिन है। हाँ, प्रॉफिट सकबा करे पर कबो लॉसो होला, प्रॉफिट लॉस दोनों होला। एक खातिर जो कोई बिजनेस करे रहा तो लोग जाने न सके हाई बिजनेस कोनो भी प्रकार के बिजनेस रही तो चेहरा सोच समझ के बिजनेस करके कहे कि ओकर में एमबीसी करबा पैसा लगेबा तो ऐसे न को बिजनेस करिए जिनसे थोड़ा और पैसा मिली और आमदनी और बढ़ी। जैसे कि खाए पिए के बिजनेस या लोटो खरीद के बेचे के बिजनेस तो खाए पिए के चीज़ तो हमेशा बेचाए जब ले इंसान रही धरती पर और खाए पिए के तो चहला हो कि नहीं और लोटो तो चहला एगो वाहन जिन है हमने के सगरों घुमाए के दूगो बिजनेस जो खूब चलेगा एगो खाए पिए के बिजनेस और एगो हलुतो के किन के खरीद के बेचे के बिजनेस पर और भी बिजनेस बा है ढेर बिजनेस बा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है सब है तो कोनो भी बिजनेस करब तो सोच समझ के बिजनेस करिए ताकि तोरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिली। अगला गीत डोले डोले डोले रे मना, डोले डोले डोले रे मना। सेकंड सेकंड सुनजी जगह सेंक पर सकब एस एम एस भेजिए, याद दिलावत है सेकंड सेकंड सुनजी।

0: 5 पर तलुक के एसएमएस और फोन करके नंबर का जगोड़े विद जगो विद 5 दोरी दोरी दोरी रे मना है गीत रीता की नाम मोतावा सेवन गर्दुग बहिन रेनुका और अमृता खतीर और है गीतवा हम चलाओ अब जा ये सब संग चलो खतीर जो नबी हम की सुनी कर रहता और जब सुनी कर बच्चा बच्चे या टेलीफोन करके काहे काटे रस बोले है बड़ी बात मानस है ऐसे नहीं करिया जा तो प्रोग्राम सबकी है तो एक अनुशासन एगो डिसिप्लिन से होला सब काम कोई टेलीफोन करके काट दे वेलन सर वेरी बैड वेरी बैड हेलो
1: बेटा
0: हेलो चाची ललिता कैसे समाचार
1: अच्छा बेटा नमस्ते बेटा
0: नमस्ते चाची कैसे हो सब ठीक
1: सब कुशल मंगल
0: आज रीता बड़ी जोरी रहल
1: हाँ हाँ आज बुतो रहल
0: हाँ और बेशक कभी के याद करते हो क्या क्या चीज मांगते हो
1: है सौते वादा लिए बेटा विशानी दीपा के गमत करायला
0: गमत करायला हाँ केकर खातिर
1: बहिन सुदेवी ज्ञानी छोटी दीदी दादी प्रभावती आत्माराम भैया शुक्लाल मौसी खातिन और मालाराम जियावन खातिन
0: हाँ और आज के दिन
1: दोहरो खातिन भाई
0: बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन अच्छा से बिजल ना
1: हाँ बेटा हाँ अच्छा
0: अच्छा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद टेलीफोन कर ल और अगला गीत डोरे डोरे डोले रे मना डोरे डोरे डोले रे मना है गीत हमने चलावती से सब संगतियालो के नाम जो नवी सुनता रिद्धि मोशर से जो मनोरंजन और आफेज अवन सैम्पिया से हाय आफेज है गीत और खातिर मेजबीन प्लेन बेद से हवन और इब्राहिम पोटवी से बाय आबू कैसे बाकवा से बाय आबू कर घरोली और लेकर सब आबू परिवार के नाम दबिशा कर गीत सुना डोरे डोरे डोले रे मना किशोर खिमिया गैले मना और सक बच्चा टेलीफोन करे का जगह दे हुई जगह हुई सैंक पर या एस एम एस करिए सेकंडी सेकंडेन सुनजी जीरो सैंक पर सेकंडी सेकंडेन सुनजीस जीरो सैंक पर

डोले डोले डोले रे मना डोले डोले डोले रे मना हम जो डोला तेज से तलो के संगे संगे अब हम तलो के वो कहानी सुना भी कहानी है तितली और छिपकली की। तितली यानी कि पापियों, छिपकली यानी कि लेजाओ। तो पापियों और लेजाओ की कहानी, तितली और छिपकली की कहानी। एक समय की बात है, एगो सुंदर बगीचा में रंग बिरंगे फूल पर एगो तितली उड़त रहल। वो तितली बड़ी सुंदर रहल, ओकर जोड़ी पंख रहल नीला पीला और लाल, और रोज फजीर के फूल पर मंडरात रहल, मीठा रस पियत और खुशी से उड़त रहल। ओके देख के सब कोई प्रसन्न हो जाता रहल। तो वही जौदेवा में जीवार पर एगो छिपकली एगो लिजाओ रहतल। तो वो पूरा दिन चुपचाप कीड़ा मकोड़ा के इंतजार करत रहल, ओके पकड़ के खात रहल। छिपकली अक्सर तितली के उड़त देख के सोचत रहल, काश हम भी है तितली की तरह सुंदर रहती और हमू शक्ति उड़े तो कितना अच्छा रहता। हम तो उड़े नहीं सके, हम तो खाई ले जाओ, हम ले जाओ खाली मिहाई में रह गया। तो एक दिन छिपकली तितली से बोलक, तू कितनी भाग्यशाली हुआ कि तू इतना सुंदर हुआ और तू सकेला उड़े। तो तितली मुस्कुरा के बोलक, सुंदरता अच्छा है लेकिन हर जीव के अपन अपन विशेषता बा। कोई सकेला उड़े, कोई सकेला घोंची पर चढ़े, जैसे कि तू सकेला दीवार घोंची पर चढ़े पर हम नहीं सकेला इसे दीवार पर चिपकल रहे, पर तू सकेला भगवान हमके दिलक बा एगो क्वालिटी और वह हम सकेला उड़े। और छिपकली जब सुनलक त छिपकली के मन में एगो जालूजी आल कि काश ओके तितली की सुंदरता मिल जाते सकत उड़े। तो का करलक, वो माने करलक, वो खुदलक तितली के पकड़े के। तो तितली तो बड़ी मालिन रहल, तो जैसे देखलक कि छिपकली खोजा के पकड़े के, तो तितली उड़ के भाग गल। और है जो छिपकली है वो मियाई पर से नीचे धराम से धरती पर गिर गल, ओके घाव लगल। तो तितली वापस आके ओकर से बोललक, मित्र दूसरों के अच्छाई से जो आदमी जालू करेला ओकर है ये नतीजा होला। प्रकृति सब कोई के अलग अलग क्वालिटी दिलक बा। ऐ तो तोरा कहे चाहे जालू है कि हम सकीला उड़े, हम सकीला रस पिए, तो जालू काहे करेला। तो उ दिन से जो है छिपकली के एगो लेसों मिलल कि कोई के सुंदरता के देख के नहीं चाह जले कि सब में अपन अपन क्वालिटी बा। और ये कहानी से इस सीख है कि जो आदमी दूसर के जालू करेला वो कब आगे नहीं बढ़ेला। हर जीव के अपन अपन पहचान और महत्व बा, और संतोष और आत्मविश्वास ही सच्चा खुशी के आधार है। तो कहानी बड़ी जुड़ी रहल तितली और छिपकली की। तितली यानी कि पापियों और छिपकली यानी कि लिजार। अभी रात के 9:25 हुआ था और अगला गीत चलाओ अब गमत करे जाए बिस्वानी जी पो आ गई ले वन गीत। और एगो संगत बारा इनको मिल अब जा। हेलो हेलो हेलो, हाँ टेलीफोन नहीं करके बात नहीं कर रहा। मैं ऐसी ब्रावो, इसने कर दिया अच्छा बा। क्या बोल बा भैया। और अगला गीत पूर्णिमा फुकीरा और सब परिवार के नाम से लिए गीत तो आप प्यार से। और है गीत हमने चलावत ऐसा सब संगतियालों के नाम, धर्म गंगू भाई एदू रोसाई रसूल विरापेन दीना प्रतिमा शोभना और सैंटोबै SSS कॉलेज जो दक्षिण में बा वहाँ के सब अध्यापक, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स और रेक्टर मिस्टर रूबेन मुंसा।

इनके नाम भी एक गीत चली गमत करे जाइला हर जितना निकालो कभी इनकी सुना था आई सेमेन डेनियल सेमेन है एग्जाम के मॉक एग्जाम हो जाए तब लेंदी से कौंजे एक महीना के कौंजे में रहा अब सा सब अध्यापक और सुना सभी का दिल बहुत को आज इतना लिखा लोग अभी एग्जाम कर रहा था घाट नेफ घाट थ्रेज घाट नेफ घाट हाँ घाट नेफ घाट ओंस और घाट थ्रेज अभी मॉक एग्जाम कर रहा था वन सा तब बहुत को आज और दो तीन को पापी बा आज रहल काल भी रही बीफे के और सुख के सब पापी

और अब कुछ बॉलीवुड न्यूज़ हो जाए। जी हाँ, कुछ दिन पहले यानी कि 11 जुलाई के मशहूर गायिका एस जानकी के निधन हो गए। वो कर्नाटक में 88 साल की आयु में कर प्राण निकल गए। वो अस्पताल में रहल और उनके कार्डियस आरएस होल और डॉक्टर लोग बचाए कोशिश कर लग पर सफर रहलन कर मृत्यु हो गए। और उनका निधन पर भारत के संगीत और फिल्म जगत से में शोक के लहर दौड़ गल। चारों ओर ढेर मना कलाकार जकर में रजनीकांत, कमल हसन और अन्य प्रमुख हस्ती शामिल रहल। ओके गैलन सर श्रद्धांजलि देवे कर अंतिम संस्कार मैसूर के राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होल। और एस जानकी अपन 6 दशक से अधिक के लंबे कार्य

में हजार गीत गाइले हवन भारतीय संगीत जगत पर अमित छाप छोर गल हवन और बेशक एस जानकी जुन्हा उ एगो बड़ा गायिका रहल फीमेल प्लेबैक सिंगर और कर पुना पुना पूरा नाम रहल शीतला श्रीनामूर्ति जानकी और सबसे महान पार्श्व गायिका में रहल उगर जन्म 23 अप्रैल 1938 के आंध्र प्रदेश में हो रहल और उगर मधुर आवाज भावपूर्ण गायकी और कई भाषा में उ गीत गैले रहन और ओके प्यार से साउस की नाइटिंगेल भी बोलत रहन जा और बचपन से ही जानकी जी को संगीत में गहरी रुचि रहल और कम उम्र से वो गीत कुमोसे कर लग गाय के और एस जानकी अपन लंबी कारियर में 20,000 से अधिक गीत गैले हवन कर में तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ हिंदी ओडिया बंगाली मराठी गुजराती तेलुगु और अन्य भारतीय भाषा में गीत गैले हवन ओकर कारियर लगभग 6 दशक तक चलल और ओकर प्रसिद्ध संगीतकारों और गायकों के साथ काम करलन और के ढेर मना पुरस्कार भी मिलल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में 4 बार के मिलल और विभिन्न राज्य सरकारों से अनेक फिल्म पुरस्कार भी मिलल संगीत जगत में जुन्हा एस जानकी के ढेर मान सम्मान मिलल और अब सुनब जा अगला गाना जी हाँ रेनबो एल्बम से ओ बलमा जी हाँ बहुत ही प्यारा संगीत और है गीत अच्छा लगा तो इससे हमने निशान सिंह चुबा के नाम रहन थी को कर पत्नी को बेटा बेटी और सब चुबा परिवार के नाम उमा जगनायक लू हवन लिस्का जी से कोई बेटी दृष्टि को दामाद चीजों फोन लोग सब बहादुर परिवार के नाम और उमा जगनायक को बेटा और पतु अंगलिया में हवन है गीत लोग के नाम भी बहुत प्यार से और है गीत हम चलाते इस रूबी के नाम रूबी चुनहा ओकर घरोला और दुगोले का लो खातिर डॉक्टर अंजू के से ओकर मंगेतर खातिर और निवेन वेन कहता सामी हमने के सुनत हवन त निवेन में कहता सामी है कि थोड़ो नाम बहुत बहुत प्यार से और जितना कोई ये भी कोशिश करता थोड़ा लाइन ना मिलता तो है कि थोड़ो नाम और एगो ऐसे में सब होता है गीत चलावती नानी दीपा खातिर नाना नंद जो यूके में हवन वाकवा से गुरश्रोता भी SMS कर लन सब यूके में कुछ जो परिवार लोग बा वो लोग खातिर भी एक गीत चली ओ बलमा चला एक साथ सुने

रात की 9:40 हुआ था तू सुनो तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन प्रोग्राम भोजपुरी तड़का रात के 11 बजे ले। और अब हमने थोड़ा सा बात कर अब सब प्याज के बारे में। तब प्याज जो है वो कुछ सब्जी और को फल भी है। भारत में प्याज के लोग फल लिखा खालन सा, जैसे हमने कोई आप खाला सा तो लोग प्याज के फल लिखा खालन सा। और है जो प्याज है कर में ढेर पौष्टिक तत्व बा, विटामिन से बा, विटामिन बेसिस बा, पोटाशियम बा, फाइबर बा, एंटीऑक्सीडेंट बा। और प्याज खैला से हमने के जो शरीर में जितना रोग रहेला वो दूर रहेला और हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हमने के लिखिया खातिर अच्छा है। और प्याज जो है जब प्याज कट बड़े लिखा ऑंक लहरेला तो कर में तत्व है वो जो ऑंक साफ करेला चाहे जो लोड चुएला प्याज जब करवा जब भाई लहर से ऑंक चुएला

लोड चुवेला चांद जी बक्की उतर ओंक नहीं तुआई करे था और डाइजेशन में साथ देवेला जब हमने भात खाया ऐसा या कौन चीज़ खाए के अगर अच्छी तरह से जगह नहीं होला तो जब प्याज खाई बा तो वो तो हर डिजिशन की अच्छी तरह से मदद करेला और प्याज जो है वो हड्डी के लिए भी बहुत लाभदायक है जो आदमी के हड्डी हड्डी में दुले होला और तो वो लोग प्याज खा लें और प्याज जो है वो तरकारी के स्वाद बढ़ावेला अब जो है प्याज जो है ढेर प्रकार से इस्तेमाल होला शायद ढेर कोई खैले हो प्याज के विंदाई हाँ प्याज का अचार भी बनेला प्याज तरकारी में से भी होला सलाद में से भी होला गातो जो जैसा खैले हो ना प्याज के गातो कैसे अच्छी रहेला पकौड़ा रहेला भजिया तो गोल गोल प्याज काट के बेसन में डाल के सब बता रहे या तो ज्वाइयों और ज्वाइयों जो है प्याज जो है सब तरकारी में चल रहा है दाल भाजी कोनो चीज़ में भी डलवा तो वो उपयोगी है तो ढेर लेकर लोग प्याज नहीं खा लें सर पर प्याज अच्छा है स्वास्थ्य खातिर है ज़रूर खाया जा अगला गीत खुशी के दिन नीरज को मधु की तो अगले हो ना गीत हम चाहते सीवेज पोस के उदय धनी राम के नाम प्रीतम राज्य मिला सब बच्चन परिवार के नाम किशन गुरिया हेलो गीत दोहरो नाम इंदिरा चिंताराम मोटाइलोंग सेवन और बेटा बाल गोपाल और अजय और पूनम चिंताराम उस खाली में होन सर दीपा और केविन दुखित हवन कहाँ दाम है तुलो के नाम तुलो के लेका के नाम और सब तिवारी परिवार और सब दुखित परिवार के नाम रंबा हवन स्विट्जरलैंड से गीत और खाते तोर बेटी लोग तोर घरोला और जानकी परिवार जो गुड लेंस रहे लंजा और है गीत हमने चलावते सा आशा जानू के नाम आप रहेलन को तेज बहुत बहुत प्यार से माँ कुमारी फिर दीदी आरती जीजाजी शुभम और है गीत सब औजे फैमिली के सदस्य के नाम खुशी के दिन

संगतिया लोग बोला सर कि जैसे जैसे हमने के उम्र बढ़ते जा रहा वैसे वैसे हमने के जो मेंटल कैपेसिटी है वो कमती होते जा रहा हमने के जो कैपेसिटी मोटाल हो कमती हो जा रहा और हमने के जो शरीर में शक्ति है वो भी धीरे धीरे कमती हो जा रहा और जैसे याद करा जब तो जीवता रहा कि कितना शक्ति रहा तो लोग के शरीर में और आज देखा कितना शक्ति रह गलबा हो कि नहीं तो ये सब समझमा होला है जब छोटा रह कैसे उनके शरीर हल्का फुल्का रह रहा फिर जब बर्फ से ऐसे उनके लिए को डेवलप होला पर समय के साथ जैसे बोली कि जब लाज में आओ से कहते कहते लाज मोटे हो ही जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मोटे होला और जैसे बोली हमने की मेंटल कैपेसिटी पागल नहीं रह रहा जैसे कि एगो लेकर एगो जन जो जन ओंस कैंसों सीजों बा और हमने की लाज भी वो कहाँ से कौन में जा ढेर अंतर बा हो कि नहीं तो उम्र चाहे कितना भी बड़ी पड़ती हो जो है अच्छा काम करिया और हमने के साथ देते या एमबीसी रेडियो मॉरिशस और एमबीसी रेडियो मनोरंजन पर अगला गीत समझी के लगल हिचकी गीत सब संगत यारों के नाम जो हम की सुना जाए बखत रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर खासकर राधा राधा आज के नाम राधा की ओर से सूरज खतेर और ये लोग कनाडा में हमने के सुनतवन बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना कोई अभी भी रेडियो सेट ऑन कर लग बा और सोचता कौन प्रोग्राम आता बता दे रहा था प्रोग्राम अब ट्विटर का अजय प्रताप सिंह के साथ रात के 11 बजे रे चल अगला गीत सुने समझी के लगल हिचकी

देखो मेहनत इंसान खातिर कोनो भी चीज डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल नहीं बा। अगर तोहर में मेहनत और लगन से तू काम करब तो तू हर परीक्षा में सकब सफल होई। तो मेहनत और लगन से काम करते रहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और अब सुनब जा सुम्बावती दुमन के अवल गीत ओ बलमा। और एक गीत चाहते इस रतन निहाल के नाम गाँव बी से कर पापा का पत्नी करुणा और सब निहाल परिवार के नाम। और है गीत हम चाहते इस जितना कोई भी नाइट शिफ्ट करता है नाइट शिफ्ट में काम करता है वनसा वो चाहे अस्पताल विभाग में हो स्वास्थ्य विभाग में मृत्यु स्टेशन में पुलिस विभाग में फायर सर्विसेज में कॉल सेंटर में जहाँ कहीं भी काम करता है हम किस तो फिर लोग हमने की सुना जाता है गीत तोहरो नाम। चल एक साथ सुने हैं गीतवा और सुमावती दुमन गई लेन गीतवा के शीर्षक है ओ बलमा।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।
0: भोजपुरी तड़का तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा भोजपुरी तड़का
2: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

टन टन टन टन टन टन बजेला थरिया। और जब शादी होला त दिमाग के जन दुल्हा दुल्हन आग के साथ फेरा लेवलन सब के सतपति बुलाला। तो एगो महत्वपूर्ण एगो एगो विधि है कि दुल्हा दुल्हन आग के साक्षी मान के अग्नि भगवान के कि हर जन्म में वो लोग वादा करेला कि वो लोग के जीवन साथी हो व्यक्ति बनी जेकर से वो लोग शादी करता। तो शादी जो है खेल नहीं है, को बाजीनाथ नहीं है। शादी जो है गुजाफे से ये है तो अभी ढेर कोई जो शादी नहीं कर लगभग घर सोचे तो कि अगला साल या आने वाले साल में शादी करे के तो सोच समझ के शादी कर या कह के शादी जीवन भर के साथ है। तो जब शादी करवा को व्यक्ति से तो थोड़ा छा आपका साथ निभाए के जीवन भर। हाँ तो हमेशा याद रखिए सुभेला दोनों के जोड़ी जैसे श्री राम और सीता। तो सजे पात हरी भाई गीत हरी हरी पारस कहानक के गावल गीत आई और एक गीत चरावती शोभना खातिर। शोभना बहुत बहुत प्यार के साथ एक गीत और नाम और तुम्हारे सब परिवार के लिए। और अभी है ये गीत चली मिंता के नाम। हेलो मिंता, मिंता गीत और घरोला तो डुगो लड़का खातिर भी बीना भैरव भगीत और घरोला तो डुगो बेटा और सब भैरव परिवार के नाम। और चलक साथ सुने सुबेला दोनों के जोड़ी जैसे श्री राम और सीता।

हमने अक्सर भुला जाए सर कि हमने के शरीर जो है एक रोज सर्विसिंग होला। सर्विसिंग के मतलब कि हर एक महीना के अंत में अगर एक बार तो डॉक्टर लगे जाइब जाके गो एक्स कराइब या डॉक्टर से एग्जामिन कराइब तो वो अच्छा है क्या कि सकब जाने के कोनो बीमारी भी हो तो सकब वो बीमारी के नियंत्रण में लाए पर ढेर कोई डॉक्टर लगे नहीं जाला और क्या सुनी जा सक कि फलना व्यक्ति गिरल तो ऐसे होगल तो उसे होगल इस खातिर चाहेला अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दे कि छोटा लोग जाए तो काम करिए सर पर महीना में कम से एक दिन निकलिए अपन स्वास्थ्य खातिर डॉक्टर लगे जाइए जाके दिखाइए कि कोई ना प्रॉब्लम सांस के लिए कि नहीं ये अच्छा थी इसी जनब कि हमके आसान तो कैसे होगा कहे कि हमके जो है लाश बढ़ते जा रहा और जब लाश मोते हो जा रहा तो हर प्रकार की बीमारी भी आवेला अब थी को बीमारी खाई में आवेला अब ढेर लागस की चीज़ खाई बात औते बुसी हो जाए है ये सब ना तो एक ऐसी बोल ऐसा कि है बोल ऐसा कि जब तू भोजन करता हुआ तेरे को बैलेंस डाइट के भोजन करिए संतुलित आहार रात के 10:26 चल लगी सुनमजा फुलिया ललिता जलसा ग्रुप के साथ और है गीत हम चलावती से विशाल की ओर से घरोली और दुगो तीन गो लड़का और सब परिवार के नाम और है गीत चलावती से पूनम के नाम पूनम और रक्षा के नाम जो हमके साथ जुड़ल हवन आशा बहनी है गीत और खातिर तुहार घर वाला तुहार लड़का लोग खातिर और सब बहनी परिवार के नाम फुलिया

रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन के श्रोता लोग साजन और साजन माया राम जी के गावर हई गीत के संगे भोजपीता का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हुआ था। कुछ ही सेकंड में रात के 11 बज जाए, ठीक 11 बजे सुन बजा सुनहरे पल प्रोग्राम और रात के 12 बजे से हर फजीर के 6 बजे रे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की दोनों की मुलाकात हुई शाम के फजीर के 6 बजे से 9 बजे रे MBC रेडियो मॉरिशस पर। और एक मुलाकात तक हमने की इजाजत दे और जी प्रताप सिंह की ओर से सबको के प्यार भरा नमस्ते और सलाम, शुभ रात्रि, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: A very good evening to all of you. Namaskar और गिनिशा का प्रणाम हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स और दिल से स्वागत है आप सभी का सुनहरे पल में सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। मैं हूँ आपकी ये दोस्त आपकी आजे गिनिशा जो साथ निभाने आई हूँ रात के 12 बजे तक। वैसे दोस्तों कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें किसी तस्वीर में नहीं बल्कि किसी पुराने गीत में छुपी होती हैं। एक धुन सुनते ही बचपन याद आ जाता है, माँ की आवाज़, पापा की मुस्कान, दोस्तों की शरारत और वो सुकून भरे दिन। जी हाँ, आज के अगले देखिए एक घंटे में चलिए फिर से उन यादों को जीते हैं। तो चाय का प्याला ले लीजिए आप अपने हाथ में, दिल को आराम दीजिए और तैयार हो जाइए पुराने बॉलीवुड के हसीन नगमों के साथ एक खूबसूरत सी सफर के लिए।

0: वैसे देखा जाए जिंदगी में हर गाना सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते हैं, उसके साथ जुड़ी होती है एक कहानी, शायद किसी की पहली मोहब्बत, किसी की पहली मोहब्बत की या किसी की पहली मुलाकात की, या फिर वो दिन जो आज भी दिल के किसी कोने में हमने दबा के रखा है लेकिन फिर भी जिंदा है। और आज हम वही यादें दोबारा महसूस करेंगे। दोस्तों, दिल को हल्का कर लीजिए, हम तो चाहते हैं कि आप बस मुस्कुराइए और पुराने बॉलीवुड के उन अनमोल गीतों के साथ जुड़ जाइए जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गया है।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

कैसा लगा ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन सर जो आप लोगों के लिए हम पेश कर रहे हैं सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर। हम तो बस चाहते हैं कि आप सुकून से हमारा साथ दीजिए इस खूबसूरत सी सफर में, क्योंकि आज की भागदौड़ की जिंदगी में अगर कहीं सुकून मिलता है तो वो है पुराने गीतों की मधुर धुनों में। इन गीतों में एक अलग ही जादू होती है जो दिल को छू जाते हैं और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आता है। तो बस दिल से सुनिए, महसूस कीजिए और इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनिए सिर्फ और सिर्फ किनिशा के।

0: लगता है कोई आया।
1: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ गीत कभी पुराने क्यों नहीं होते हैं? कुछ गीत कभी पुराने क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनमें सिर्फ संगीत नहीं होता है, उनमें जज्बात होते हैं। हर लफ्ज़ की कहानी होता है, हर सुर किसी की याद दिलाती है। और आज सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं वही अमर नगमे जो हर जनरेशन को पसंद है। गिनेश आपका साथ दे रहे हैं और ये सफ़र सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो घर का एक हिस्सा हुआ करता था। क्या आपको याद है, बिल्कुल दोस्तों, शाम होते ही पूरा परिवार रेडियो के पास बैठ जाता था और हर गीत के साथ एक नई याद बन जाती थी। आज रेडियो मॉरिशस पर हम वही एहसास दोबारा जिंदा करेंगे। बिल्कुल जी, सुनहरे पल में जहां हर गीत दिल से निकलकर दिल तक पहुंचा देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हर एक गाने को आप दिल से महसूस कर रहे हो।

कैसा लगा आज का ये खूबसूरत सुनहरे पल जो बड़े टाइम लगाकर कीमती समय निकालकर चुन चुन कर लेकर आते हैं हर एक नगमे आपके लिए। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, हम वापस जरूर आएंगे एक और सुनहरे पल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना, प्यार बांटते रहना और बस शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
2: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।